0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty. Feel the musty. The
4: musty. A very good morning आप सभी को सुप्रभात। आज पहली अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी में लाते चलिए ठीक 5:02।
5: Chillax with Radio Musty,
0: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात और एक बहुत ही प्यारी सी सुबह पर रेडियो मस्ती पर आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया और हाँ, एक महीने की छुट्टी के बाद अब फिर से लौट आई हूँ अपने घर, अपने स्टूडियो और सबसे ज़रूरी अपनी रेडियो मस्ती परिवार के पास। सच कहूँ, माइक के सामने बैठने का जो एहसास है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। ये सिर्फ एक स्टूडियो नहीं, एक रिश्ता है जो रोज़ सुबह हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। आज सैटरडे है, 1 अगस्त 2026, सुबह की 5:08 हो रहे हैं। बाहर हल्की सी ठंड है, सर्दी की वो मीठी सी हवा जो चादर से बाहर निकलने का मन तो नहीं करती, लेकिन एक गर्म चाय की प्याली और रेडियो मस्ती के साथ सुबह वैसे ही खूबसूरत बन ही जाती है। और देखिए ना, वीकेंड भी है, नए महीने की पहली तारीख भी है, 8वां महीना शुरू हो चुका है। कहते हैं ना कि कभी कभी कैलेंडर की एक नई तारीख भी दिल में एक नई उम्मीद भर देती है। लगता है जैसे जिंदगी कह रही हो, जो कल नहीं हुआ शायद आज हो जाए। तो आज के दिन को मुस्कुराहट के साथ आप शुरू कीजिए। इस पहले घंटे में बजेंगे वो सदाबहार गाने जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल तक पहुंचते हैं। तो चाय आप तैयार रखिए, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी तैयार रखिए, कंबल आप थोड़ा और संभाल लीजिए और बस चिलैक्स कीजिए, क्योंकि ये है आपका चिलैक्स शो रिया के साथ। और सुकून के नाम, मस्ती भरे पलों के नाम ये आवर हम डेडिकेट करते हैं। चलिए, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस ऑन दिस ब्यूटिफुल सैटरडे मॉर्निंग। आई होप कि आपका ये दिन बहुत ही अच्छे से कटे और आप अपनों के इर्द गिर्द हो और बहुत ही खूबसूरत गाने आपको छू जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं नेक्स्ट ट्रैक, रफी साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना, हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है। विशिंग यू अ वंडरफुल सैटरडे और नॉट टू फॉरगेट, आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं 5499-1294।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: कभी सोच रहा है हम सब नए साल पर बहुत सारे रेजोल्यूशन बना लेते हैं, लेकिन हर नया महीना भी तो एक छोटा सा नया साल ही होता है। आज अगस्त का पहला दिन है, पिछले 7 महीने कैसे गुजरे उसका हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सोचिए आज एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है। वैसे इट्स नॉट रियली दैट कि हम कह रहे कि नया महीना ही आएगा तभी आप नई शुरुआत करेंगे, नया दिन आता है, नया घंटा आता है, आप नई शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। तो आप से कहेंगे कि अगर आप किसी से नाराज़ है तो शायद माफ़ करने का दिन है आज, अगर कोई सपना बीच में छोड़ दिया था तो उसे फिर से उठाने का दिन है आज, और अगर ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही थी तो आज वीकेंड पर थोड़ा रुक कर खुद से मिलने का दिन है। हर नई सुबह हमें यही याद दिलाती है कि ज़िंदगी तब तक नहीं रहती, तब तक नहीं रहती है जब तक उम्मीद जिंदा रहती है। इसी उम्मीद के साथ चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, एंड इसी के साथ लेट मी टेल यू दैट 5:20 हो चला है, एंड ये टाइम रोज़ क्या जल्दी जल्दी दौड़ता है, कट ही जाता है ऐसे तैसे, बस जिंदगी छोटी है, ये तो नहीं कहेंगे कि लंबी है, छोटी है, बड़ी है, बट जिंदगी आपको पता है कैसी है, बस ये गुजर ही जाती है, तो इसे आप ही खूबसूरत बनाइए। एंड कैसे खूबसूरत बनाते हैं तो हम ज़रूर मदद करते हैं, एंड ये खूबसूरत गाने आपके नाम हम ज़रूर

0: लेकर आती है रोज। जैसे कि ये नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: चलिए जी, हमारी सबसे फेवरेट सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं और ये है आपके मैसेजेस। जी हाँ, हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाट्सअप की ओर बढ़ते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर जैशन जी ने मैसेज भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग आपको जैशन जी, आप कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक। और अगला गाना आप अपने दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं? तीन बार जीवन, उमरन, दानू, अंगुतिया, आकाश, शर्वन, रामदेवर, मेविन और सभी के नाम आज वेल, तो हम जरूर उनके नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करते हैं। थनेश्वर जी, कैसे हैं आप? बॉम्बू से हैं और अपनी प्यारी पत्नी सुनीता साथ में रेखा, निशा और दावे दोस्त परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करती है। एंड ऑल्सो सारा बानो जी हमारे साथ कनेक्टेड है, अब्दुल के नाम और आपकी दोस्त नसरीन के नाम भी आप गाना डेडिकेट करना चाहती है और सभी को विश करती है टू हैव अ नाइस डे। तो हम आपको भी विश करते हैं हैव अ वंडरफुल सैटरडे। आज का ये दिन बहुत ही प्यारा रहेगा, ये आप मानकर चलिए और ऐसा ही होगा। एंड यस, वी हैव हमारे साथ सरोजिनी नाइगी, ओजोल नायडू, प्रीति, विवेश, योवेश और अपादु परिवार जो इस समय हमारे साथ है, कनेक्टेड है। एंड नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम भी जाता है। एंड यहाँ पर एक बर्थडे मैसेज है, आज भांजी किशन गाजादर का जन्मदिन है, सो आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी गुड विशेज, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एंड यहाँ पर बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम आरती, अजय, शिवम, हीना, माँ हेलालिता, पापा विद्यानंद, धीरन, निष्ठा, मयूर, लक्ष और खुशबू भी है साथ में। विशिंग यू अ हैप्पी हैप्पी बर्थडे। एंड यहाँ पर माला सुमारू जी है कैथोबोन से, शुभ दिन सभी को विश करती है। शुभ दिन आपको भी, ये सैटरडे बहुत ही अच्छा जाए सभी के लिए, बस हम यही चाहते हैं। और कैथोबोन से सरोज जी हमारे साथ है, कनेक्टेड है। नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करती है टू राजीन, मोनिका, उमेश, पूनम, अर्षी एंड सभी को जो इस समय रेडियो सुन रही है और एंजॉय कर रही है गाने। तो हम नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं। और यहाँ पर सरिता जी है गुडलैंड से और शुभ दिन सभी को विश करती है, शुभ दिन आपको भी। और बहुत सारे अन्य गुड मॉर्निंग मैसेजेस यहाँ पर है जिन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन दिल से हम आपको विश करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हैप्पी हैप्पी सैटरडे। और नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है, विल बी बैक विद योर नॉर्मल मैसेजेस एज वेल थोड़ी ही देर में। बोली

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हाँ, क्या कहा?

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए अभी आप घर मिलाते चलिए 5:44 और अभी समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा. इट्स योर राशि टाइम. शुरू हम करते हैं.
2: रेडियो मस्ती सुनते रहो.
3: एरीज मेष राशि.
1: आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा. जो काम रुक गया था उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. घर के किसी बड़े का साथ आपको मिलेगा. गुस्से से बचकर बात कीजिए, मुस्कान बनाए रखिए. लकी नंबर है आज आपका 9.
3: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी. जल्दी में कोई फैसला ना लीजिए. परिवार के साथ समय क्या अच्छा बीतेगा. पुराने दोस्त से बात हो सकती है. दिन सुकून भरा रहेगा. लकी नंबर है आज आपका 6.
3: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज मन में नए विचार आएंगे. छोटी सी मेहनत भी अच्छा फल दे सकती है. किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर कीजिए. हर काम सोच समझ कर कीजिए. लकी नंबर है आज आपका 5.
3: कैंसर कर्क राशि.
1: आज घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. अपनों के साथ बैठकर बात करने से मन हल्का होगा. काम धीरे धीरे पूरे होंगे. सेहत का भी ध्यान रखिए. लकी नंबर है आज आपका 2.
3: लियो सिंह राशि.
1: आज आपका हौसला सबका ध्यान खींच सकता है. नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. अपनी बात प्यार से कहिए. हर कदम पर विश्वास रखिए. लेकिन नंबर है आज आपका 1.
3: वर्गो कन्या राशि.
1: आज छोटी बातों की चिंता छोड़ दीजिए. मेहनत रंग लाएगी. घर और काम के बीच अच्छा संतुलन बना रहेगा. दिन शांत और अच्छा गुजरेगा. लेकिन नंबर है आज आपका 4.
3: लिब्रा तुला राशि.
1: आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है. हर काम दिल से कीजिए. खुशी बांटने से और बढ़ेगी. लकी नंबर है आज आपका 7.
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए. मेहनत का फल जरूर मिलेगा. बिना वजह की बहस से दूर ही आप रहिए. शाम तक अच्छी

0: अब बैठ मिल सकती है लेकिन नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज का दिन नए उत्साह के साथ शुरू होगा। यात्रा का योग बन सकता है, परिवार का प्यार और सहयोग मिलेगा। हर काम में धैर्य आप रखिए, लेकिन नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगी। किसी पुरानी बात का हल मिल सकता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ रहेगा, दिन सफल रहेगा, लेकिन नंबर है आज आपका 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सोच सकारात्मक रखिए। छोटी खुशी को भी दिल से महसूस आप कीजिए, दिल हल्का और सुखद रहेगा, लेकिन नंबर है आज आपका 6।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज दिल की बात सुनने का दिन है। जो काम प्यार से करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। घर का माहौल खुश रहेगा और खुद पर भरोसा बनाए रखिए, लेकिन नंबर है आज आपका 5। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन, दिन अच्छा ही कटेगा। चलिए तो रिया की ओर से आपको शुभ शनिवार और शुभ दिन। हैव अ वंडरफुल सैटरडे और हमारे साथ ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
6: A very good morning, aap sabhi ko suprabhat. Ghar mein laate chaliye, subah ke theek 6 baj rahe hain. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
7: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में संशोधन किए गए। पेंशन रिफॉर्म से जुड़े संशोधनों पर सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष नेता जो लेशोंगा उन्हें

0: उत्तराखंड डिवीजन की मांग की। पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। राष्ट्रसभा के कार्य मंगलवार 4 अगस्त सुबह 11:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन की टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। और पेंशन की राशि पर अब हर साल जीवन के खर्च के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी महीने से लागू होगी। ये व्यवस्था कानून में शामिल की जाएगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल रात राज्यसभा में बहस के दौरान इसकी जानकारी दी। और कोविड-19 महामारी के समय खरीदे गए वेंटिलेटर लेकिन कभी नहीं मिले वेंटिलेटर मशीनों के मामले में सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कल कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 कंपनियों के खिलाफ स्पेन के कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये 2 कंपनियां हैं पैक एंड ब्लिस्टर और मेडिटेरेनियन हेल्थ केयर सप्लाई नेटवर्क SL। ये फैसला एक स्पेन की एक लॉ फर्म की शुरुआती जाँच के बाद लिया गया। इस फर्म का मानना है कि 2020 में वेंटिलेटर मशीनों की खरीद के लिए खर्च किए गए करीब 103 मिलियन रुपये वापस प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि ये मशीनें कभी पहुंचाई ही नहीं गई। और विदेश में मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेयुता में गुरुवार को हजारों प्रवासी घुस गए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बार तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर दिया जिसके दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। अब स्पेन ने इलाके में मोरक्को के साथ लगी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला लिया है। और अंत में मौसम का हाल। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज दिन भर बादल ही रहेंगे, खासकर देश के पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल बादल पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर रात्रि के समय। सूर्योदय आज 6:39 पर और सूर्यास्त शाम के 5:52 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti।
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Once again, a very good morning.

आप सभी को सुप्रभात। रेडियो मस्ती पर चलाक से जारी है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया। देखते ही देखते सुबह का दूसरा घंटा भी शुरू हो चुका है। घड़ी में अभी बज रहे हैं 6:11। बाहर अभी भी हल्का सा अंधेरा है। सर्दी की सुबह अपनी रफ्तार से

0: भी शायद सबसे मीठी होगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस समय यह तैयारी करके घर से निकल चुके हैं, बस पकड़नी है, ड्यूटी पर पहुंचना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं, वीकेंड के दिन भी काम करते हैं, तो उनको हम वो खुआश कहते हैं। और अगर आप इस समय या सफर में हैं तो रेडियो मस्ती आपका साथी बना रहेगा। और हाँ, पहला घंटा था सिर्फ सदाबहार नगमों के नाम, अब थोड़ा सा रंग बदलते हैं। अब हम मिक्स गाने लेकर आए हैं आपके नाम, पुरानी भी है नए भी है, सब के लिए हम गाने लेकर आए हैं। हर गाना कुछ इसी प्रकार है जो दिल को छू जाए, तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और रिलैक्स के साथ इस सैटरडे की सुबह को और भी खूबसूरत बनाइए। चलिए, नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है जो हमारे साथ कनेक्टेड है, और आई एम श्योर कि आपको ये नेक्स्ट ट्रैक बहुत ही पसंद आएगा।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: आज अगस्त का पहला दिन है और पहला वीकेंड भी. सोचिए पूरा महीना अभी हमारे सामने है. हो सकता है इस महीने कोई नई खुशी मिले, कोई नया दोस्त बने, कोई सपना पूरा हो जाए, या बस फिर इतना हो कि हर दिन चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहे. कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़े कदम नहीं चाहिए होते, बस हर सुबह एक अच्छी सोच काफ़ी होती है. इसी अच्छी सोच के साथ चिलैक्स जारी है और अब समय है एक और भी बहुत ही खूबसूरत गाने का जो हम आपके नाम ज़रूर डेडिकेट करेंगे. एंड आई होप दैट आपका ये शनिवार बहुत ही प्यारा रहे. वेल विल बी हियर टिल 8 और बहुत सारे अच्छे अच्छे गानों के साथ. लेट मी टेल यू दैट इस गाने के बाद जो हम चलाने वाले हैं, इसके बाद आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन. सो स्टे राइट कनेक्टेड और एन्जॉय द ट्रैक.

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के तहत प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा, पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। इस बीच फाइनेंस बिल संशोधनों के साथ पारित हो गया है। कैबिनेट ने मॉरिशस और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर की तैयारी को मंजूरी दी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस इस शनिवार विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर पहली वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। विदेश में स्पेन के सेयुता क्षेत्र में मोरक्को सीमा से हजारों प्रवासी घुस आए, इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई है। अरब समाचार विस्तार से। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। उनको सुनते हैं।
1: These bills are about putting in place a modern, fair and future-ready fiscal and regulatory

0: framework,
1: which will support growth,
0: but also protect the vulnerable.
1: The amendment before the House will help to consolidate our public finances while safeguarding critical social spending. It will enhance transparency and compliance in our tax and financial systems, and it will support investment, innovation, job creation across all sectors, while also reinforcing our reputation as a clean, well-regulated international financial center.
2: और कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में संशोधन किए गए। पेंशन रिफॉर्म से जुड़े संशोधनों पर सदन में तीखी बहस हुई। विपक्ष नेता जो लिजोंगाओ ने वोट पर बाय डिवीजन की मांग की। पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। राष्ट्रीय सभा के कार्य वैसे अब मंगलवार 4 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। और पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर को उनके पद से हटा दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री ने कल रात लिया। राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने नेशनल पेंशन एक्ट में किए गए संशोधनों के खिलाफ मतदान किया, जो सरकार की नीति के विपरीत था। सिडनी पियर को पद से हटाने की घोषणा स्टेट हाउस के एक आधिकारिक बयान में की गई। पेंशन की राशि अब हर साल जीवन के खर्च के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी महीने से लागू होगी। ये व्यवस्था कानून में शामिल की जाएगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल रात राज्यसभा में बहस के दौरान इसकी जानकारी दी। उनको सुनते हैं।
3: एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री पेंशनर्स पेंशन विल बी रीएडजस्टेड व्हेन every January, taking into consideration the cost of living. Of course, cost of living is measured with the CPI. I've heard some of the opposition people saying that it should not have been cost of living. This is semantic. And so it will be adjusted. And the principle of the increase is legally enshrined in the law now, every January. And this is not very different from workers' compensation.
2: दूसरी तरफ विपक्ष नेता बलबीर होंगे ने इस बदलाव में स्पष्टता की कमी होने की बात कही। आइए उनको सुनते हैं।
4: Dans le finance bill, il était proposé que les pensions may be increased chaque année en se basant sur le taux d'inflation de l'année précédente, mais à la discrétion du gouvernement. Un amendement est devant nous. Je souhaite que ça ne va pas changer entre temps parce que j'ai entendu un ministre dire qu'il y aura d'autres amendements. Nous ne sommes toujours pas en présence de ces amendements. Mais en tous les cas, un amendement est devant nous qui a été circulé mardi dernier, qui propose que les pensions shall increase by a chiffre that may be prescribed.
2: और कोविड 19 महामारी के समय खरीदे गए लेकिन कभी नहीं मिले वेंटिलेटर मशीनों के मामले में सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कल कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2 कंपनियों के खिलाफ स्पेन के कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये 2 कंपनियां हैं पैक एंड ब्लिस्टर SL और मेडिटेरियन हेल्थ केयर सप्लाई नेटवर्क SL। ये फैसला एक स्पेन की लो फर्म की शुरुआती जांच के बाद लिया गया। इस लो फर्म का मानना है कि 2020 में वेंटिलेटर मशीनों की खरीद के लिए खर्च किए गए करीब 103 मिलियन रुपये वापस प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मशीनें कभी पहुंचाई ही नहीं गई। मॉरिशस और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर करने की तैयारी हो रही है। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। ये समझौता दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रालयों के बीच सहयोग का एक ढांचा तैयार करेगा, जिससे अनुभव, जानकारी और अच्छी कार्य पद्धतियाँ पद्धतियों का आदान प्रदान बढ़े।

0: रहेगा। इसके तहत पेट्रोलियम गैस नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा और इस एमओयू में क्लाइमेट चेंज से निपटने से जुड़ी तकनीकों सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग शामिल है। कैबिनेट ने ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ा नया कानून तैयार करने को भी मंजूरी दे दी है जिनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। इस पर जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय काम करेगा। इस प्रस्ताव में विशेष रूप से शुरुआती स्तर पर सहायता, चिल्ड्रंस कोर्ट द्वारा निगरानी, माता पिता को मार्गदर्शन तथा आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को किसी विशेष संस्थान में रखने का प्रावधान शामिल है और विशेष संस्थान का संचालन पालन करने के लिए एक अलग संस्था भी बनाई जाएगी। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस शनिवार अपनी पहली वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी मॉरिशस के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही है। इस दौरान बिजनेस की दुनिया में ह्यूमन राइट्स और अतीत में हुए अन्याय के लिए न्याय और उचित मुआवजे पर चर्चा होगी। ये चर्चा हाल ही में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पारित उस रिजोल्यूशन के संदर्भ में होगी जिसमें ट्रांस अटलांटिक अफ्रीकी लोगों की ट्रैफिकिंग को मान्यता के खिलाफ अपराध माना गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डेप्यूटी चेयरपर्सन नाजा अहमद को सुनते हैं जिनसे जेनी येलापान ने बातचीत की।
1: L'objectif de notre conférence, c'est d'amener autour d'une même table des universités.
2: हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, सार्वजनिक उच्च अधिकारियों, सिविल सोसाइटी आदि को एक साथ लाना ताकि गंभीरता के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। हम वर्तमान कानूनी ढांचों का अध्ययन करना चाहते हैं, उद्योगों की जिम्मेदारियों के स्तर को जानना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन पर विचार करना चाहते हैं। साथ में ठोस समाधान ढूंढना चाहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति के अधिकारों की बेहतर रक्षा की जा सके।
0: और जेल से बाहर आने के बाद हर व्यक्ति को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, इसी सोच के साथ महिला जेल की लगभग 40 कैदियों को बाल काटने, सिलाई, बेकरी और कृषि जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पहल किन्वेटी एसोसिएशन की ओर से शुरू की गई है। इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग का शुभारंभ समारोह शुक्रवार 31 जुलाई को महिला जेल में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम MITD के सहयोग से किया गया। प्रिजन कमिश्नर रशीद अली बिकन ने बताया कि इन ट्रेनिंग्स से कैदियों को समाज में दोबारा शामिल होने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कौशल प्राप्त होंगे। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: C'est vraiment impressionnant dans le sens qui permet d'être bien ce qu'on appelle un skill.
4: प्रिजन्स कमिश्नर रशीद अली बिकन कहते हैं ये एक सराहनीय परियोजना है जिसके तहत इन महिलाओं को अपनी प्रतिभाएं विकसित करने का मौका मिल रहा है ताकि जब वे कैद से छूटे तो वे बाहर इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, जैसे वे परिवार वालों की बाल काट सकेंगी और शुरुआती तौर पर किसी सलून में भी काम कर सकेंगी, जबकि आगे चलकर वे अपना खुद का सलून भी खोल सकेंगी। हम देखते हैं कि आज इस काम की कितनी मांगे हैं। इस सहयोग और समर्थन के लिए मैं गैर सरकारी संगठन किन्वेटे का आभार प्रकट करता हूं, चाहे वो महिला कैद खाना हो या पुरुषों का। ये संगठन कैदियों के पुनर्वास के लिए अथक प्रयास करता है।
3: Que ce soit dans des prisons femmes et prisons hommes aussi, ok, ils sont là dans un programme de réhabilitation.
0: विदेश में मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में गुरुवार को हजारों प्रवासी घुस आए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बार तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर लिया, जिसके बाद कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। अब स्पेन ने इलाके में मोरक्को के साथ लगी सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला लिया है। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वान

तापमान आज दिन भर बादल के रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर देश के आधे हिस्से में, पूर्वी इलाकों में और ऊंचे इलाकों पर। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। और सूर्योदय वैसे आज 6:39 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:52 पर होगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के बाद आइए आज की प्रमुख खबरों को दोहराती है। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के तहत प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा, पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। इस बीच फाइनेंस बिल संशोधनों के साथ पारित हो गया। कैबिनेट ने मॉरिशस और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर की तैयारी को मंजूरी दी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी मॉरिशस इस शनिवार विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर पहली वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। विदेश में स्पेन के सेउटा क्षेत्र में मोरक्को सीमा से हजारों प्रवासी घुस आए, इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई है। तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और कपिल का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: Jagannath Road, Rivière du Rempormé, Jagannath Road, Rivière du Rempormé. 67 साल की 67 years old की श्रीमती अंजनी शिचम पैदाइश नाम गणपत और जो चंद्रानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे श्री हेमंत कुमार शिवचम के घर जगन्नाथ रोधवीय चौंपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंतिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पीटियो में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नंदनी देवी सिंह पैदाइशी नाम दुबोरी और जो सीमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके पिता श्री रमेश दुबोरी के घर नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पीटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबॉक की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। रिजर्वोयर रोड कॉन्फुकोमी 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल रफीक चिकोरी जो रफीक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के दस बजे उनके मकान रिजर्वोयर रोड कॉन्फुको से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कॉन्फुको की ताइबा मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स के कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। अटलास रोड गुडलैंड्स में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आकामा नारायडू पैदाइशी नाम चिन्या

या पैदाइशी नाम चिनिया और जो पिनम चिंता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्रीराज नहाई ड्यू के घर आतास्रोत गुदलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रॉय रोड भुजे व्याजामी 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद काशीराम जो जुपा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हम की अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर रॉयरोड भिजे व्याजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। लंदन में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद काशीराम जो जुपा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले रॉयरोड भिजे व्याजिया रहते थे कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर साउथगेट लंदन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए साउथगेट लंदन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। सेवोक लेन सेबास्तोपोल में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिल कुमार सेवक का जो लेविस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती गीता सेवक के घर सेवक लेन सेबास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रमिशन टुडे एट 3 PM। रॉय रोड ब्रह्मस्थान में वासुदेव रोशनी स्कूल के पास 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री रामानंद देवी जो प्यों रामानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके घर रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रमिशन टुडे एट 10 AM। सुमंदर लेन पायोत में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती शंकर जो तारामती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो रजनी शंकर की माँ थी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के बारह बजे उनके घर समंदर लेन पायोत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पार्मा की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रमिशन टुडे एट नोन। नंबर सत्तर मोसलमो रामफल प्लेंडी पापा एमी 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रामा कृष्णा नारायणा रेड्डी जो आया देवन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती पेचाय नारायणा रेड्डी के घर नंबर 70 मोसलमो रामफल पंडित पापा से उठाकर दफनाने के लिए पंडित पापा की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रमिशन टुडे एट 1:30 PM। अली मोंग पुस्त द फ्लाक में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री जमन लाल गंगू जो देव की शुफाबिस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके घर आली मॉन्ग पजफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पजफ्लाक की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रमिशन टुडे एट 10 AM। रिश्मा फ्लाक में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती रामजावन पैदाशी नाम फ़ाकीरा जो इंद्रावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के नौ बजे उनकी बेटी श्रीमती प्रेमिता गजाधर के घर रिश्मा फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रमिशन टुडे एट 9 AM। KGW Lane Le Rouge Terre Rouge में 80

0: साल के एक टीयर्स ओल्ड के श्री मानिको मुताई जो मानिको नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके घर के जी डब्ल्यू लेन लियो शेत्यागोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वालिद फैद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 AM A01-22-NHDC La Tour Kenik me A01-22-NHDC La Tour Kenik me Asi sal ki ek tiyez or ki shmati palambal upya shmati palambal upya जो याया तौंसी नाबुचिक नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती शास्त्री अप्या के घर A01-22-NHDC लातो के नेक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिद फैद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM एवेन्यू ड्रापे बेल रोज में 83 साल की एक टी 3 years old की श्रीमती भाग्या बुलका जो भाग्या फाबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी कल रविवार को सपहर तीन बजे उनके घर आवेन्यू ड्रापे बेल रोज से उठाकर अंतिम संस्कार की थी कोरी गौर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM और फॉरेस्ट पार्क हेनोल्ट रोड आईफोर्ड आईजीसिक 3HP इंग्लैंड में फॉरेस्ट पार्क हेनोल्ट रोड आईफोर्ड आईजीसिक 3HP इंग्लैंड में 63 साल की 63 years ओल्ड की श्रीमती रूपा मंगरो जो गोबिंद मंगरो की बेटी थी मृत्यु हो गई है और जो पहले वैसे बैलेंस ही नाम रहती थी उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज मर्शन समय अनुसार दिन के 3:30 बजे मर्शन समय अनुसार सुपहर 3:30 बजे इंग्लैंड से उठाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM2, a radio must see.

0: Chris Thodica.
1: RM2.
2: और दोस्तों अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार हर म्यूजिकल लवर करता है. टाइम फॉर टाइमलेस तड़का 7:05. वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात. आज है सैटरडे का दिन, 1st of August. जी हाँ, अगस्त महीने में हम कदम रख चुके हैं. नया महीना, पहला वीकेंड और सर्दी की एक खूबसूरत सुबह. एंड अभी तो आई एम श्योर कि आपको सूरज की रोशनी दिख ही चुकी है. सो आज की हवा में भी एक सुकून सा है और का अपना ही एहसास है ना. ना उतनी भाग दौड़ होती है, ना उतनी जल्दी, बस थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी मुस्कान और बहुत सारा खूबसूरत, बहुत सारे खूबसूरत गाने. और जब वीकेंड हो तो गानों का रंग भी थोड़ा अलग होना चाहिए ना. इस घंटे में हम लेकर आए हैं वो गाने जो सुनते ही पैर थरकने लगे, कभी होठों पर मुस्कान आ जाए और कभी पुरानी यादें ताज़ा हो जाए. सो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, हम मिक्स गाने लेकर आए हैं आपके नाम और गाने साथ निभाते चलेंगे, हम भी साथ निभाएंगे. तो चाहे आप घर पर है, चाय का कप हाथ में लीजिए या कॉफ़ी लीजिए, जो भी आपको पसंद है. एंड अगर सफ़र में हैं आप तो रेडियो मस्ती को अपना हम सफ़र बनाएं. और अगर काम पर जा रहे हैं तो इस सुबह को हल्का और हंसी बना ही देते हैं आपके लिए. वीकेंड है, दिल खोल कर जीने का दिन है और टाइमलेस तड़का बस अब शुरू हो ही रहा है. वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स और एक दो गेम्स भी हम लेकर आए हैं आपके नाम से. स्टे राइट कनेक्टेड. नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti. Timeless Tadka.
1: RM2.
2: चलिए जी, जैसे हमने आपको बताया था दैट वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू और स्पेशल गेम्स. जी हाँ, हम गेम्स लेकर आए वीकेंड है, इसलिए कुछ स्पेशल तो बनता है. एंड इसके चलते हम एक दो गेम्स लाए हैं आपके नाम. सो चलिए पहला गेम हम खेलते हैं. एंड लेट मी टेल यू दैट अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है गिफ्ट वाउचर 500 rupees ऑफर टू यू बाय योर विनर्स. और क्वेश्चन बहुत ही सरल है आज. सो tell me that on 1st of August only, on 1st of August only, what is the normal price and the promotional price of Le Roi Lessive Liquid Machine 3 litres? On 1st of August only, what is the normal price and the promotional price of Le Roi Lessive Liquid Machine 3 litres? बस यही आपको हमें बताना है. और अगर आप जीत जाते हैं तो 500 rupees का gift voucher आप तक पहुंचाया जा सकता है. सो सही जवाब ऑन 54991294 और भेजेगा पूरे नाम और पूरे पते के साथ. गुड लक टू ऑल ऑफ यू. और फटाफट फोन उठाइए और भेजिए अपना सही जवाब.
0: टाइमलेस तड़का.
1: RM2.
0: टाइमलेस तड़का.

0: Bez तड़का
1: RM2।
2: अच्छा जी, एक सवाल हमने पूछा था दैट ऑन 1st of August ओनली व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ ले रॉय लिसी वेलिकिड मशीन 3 लीटर, और नॉर्मल प्राइस है 199 रुपीज़, जबकि प्रमोशनल प्राइस है 99 रुपीज़ 95 सेंट। और यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब मिले हमें, दो गलत जवाब भी मिले, बट कोई बात नहीं, सही जवाब पर कंसंट्रेट करते हैं। और लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गई है हमारी लकी विनर, सो बिग कंग्रेचुलेशन गोज आउट टू मीनाक्षी दुमा, आप है फ्लोरियाल से और आपने दिया है सही जवाब। एंड इसी के चलते आपको मिल रहा है 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय योर विनर्स। और ये वाउचर आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये हम आपसे संपर्क करेंगे, सो नॉट टू वरी। और जो लोग नहीं जीते कोई बात नहीं, एक और गेम है जो हम थोड़ी देर में जरूर खेलेंगे आपके साथ।
1: RM2 Radio Musti।

0: Business
1: 떨까 RM2
2: गेम यहाँ पर आपके नाम सो अगर आपको इंडियन खाना पसंद है तो आपको मिल सकता है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर एट सैफ्रन ग्रिल. जी हाँ, अभी आप खेलिए हमारे साथ और जीत सकते हैं एक डिलिशियस इंडियन मील. सो आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रा वैगेंस सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इज बैक विद एक्साइटमेंट फॉर इट्स viewers in partnership with Indian Oil Reserve and co-sponsored by Mayop. Starting from 1st August at SSR National Cricket Ground Mappu, where six teams will participate: Continental, Cheetahs, AMG Panthers, Campus Abroad Lions, APP Leopards, One Health Jaguars and Thomas Cook Tigers. Visit aap kar sakte hai ground mein to support your team. Matches play kiyenge on Saturday afternoon and Sunday morning and afternoon. Ek question hum yahan par lekar aaye hai. Bollywood question bahut hi saral hai. So aap hame bataiye. Film Dilwale Dulhaniya Le Jayenge mein Raj ka kirdaar kis actor ne nibhaya tha? फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज का किरदार किस एक्टर ने निभाया था? सही जवाब ऑन 5499-1294 और पूरे नाम और पूरे पति के साथ है.
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: राइट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था एक बॉलीवुड क्वेश्चन और ये सवाल पूछा था कि फिल्म दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगी में राज का किरदार किस एक्टर ने निभाया था और सही जवाब है शाहरुख खान। यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब मिले हमें लेकिन लकी ड्रॉ के बाद हमारे लकी विनर बन चुके हैं अरविंद राघुबर। आप है हविया जुआपा से और आपने दिया है सही जवाब। सो इसी के चलते आपको मिल रहा है 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर एट सैफ्रन ग्रिल। एंड ये वाउचर आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा ये हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। सो यस आप जीत चुके हैं और जो लोग नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, आप दिल छोटा कतई ना करें क्योंकि बारी तो आपकी ज़रूर आएगी एंड अभी तो आपकी बारी नहीं है लेकिन आ ही जाएगी। सो थोड़ी आप पेशेंस रखिए और देखते चलिए कि आपकी बारी ज़रूर आएगी।
3: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: RM2.
1: Radio Musti.
5: Histoire gagnante du loto. 21 janvier 2026, ticket gagnant 53 millions, Floréal.
6: Étudiant, un piège, oui. Et encore il y a un gros jackpot. Parce que quoi? Crier faux, oui. T'as vu quoi? Maman, papa. On veut venir sur quoi ingénieur. Mais j'ai de la sensi car pour goûter jusqu'à gagner.
5: Des histoires gagnantes, des histoires vraies. Ferez-vous partie de la prochaine histoire gagnante du loto? Ceci est un communiqué de l'Autotech, le jeu peut créer une dépendance, jouez responsablement.
4: RM2
1: Radio Musti.
0: Timeless Tadka.
1: RM2
0: Timeless Tadka.
7: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
2: घर में लाते चलिए 7:23 और अभी स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी। चलिए उनसे हम सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स दुनिया में क्या हो रहा है, बताइए हमें। गुड मॉर्निंग आपको।
8: गुड मॉर्निंग रिया, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। ये बिल्टिन शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ। राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे एथलीटों ने ग्लासगो में मॉरिशस राष्ट्र का नाम ऊंचा किया, तो उधर फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो ने विश्व फुटबॉल का नाम नीचा किया। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्हम ने इन्फांटिनो को फीफा को लीड करने वाला रॉन्ग मैन बताया है। तमाम विरोध के चलते आज सुबह ही, अभी से कुछ ही घंटे पहले, इन्फांटिनो ने अपना प्रस्ताव खारिज किया, वापस लिया। पर सबसे पहले द राइट मैन एंड वुमेन की बात करें, नोएमी अल्फोंस ने जीता मुर्शिद

इसके लिए सिल्वर मेडल यानी रजत का पदक तो मेवें क्लेयर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पाया। अब तक मॉरिशस ने दो मेडल हासिल किए हैं इन राष्ट्रमंडल खेलों में। सो इन दो पदकों के बल पर कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में मॉरिशस भी शामिल हो गया है। हम 27वें स्थान पर हैं और आज भी पदक जीतने की बड़ी उम्मीद है। इन खेलों में वैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकल गया है 51 गोल्ड मेडल्स के साथ। लगता है उसे कॉमनवेल्थ गेम से ही बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड केवल 17 गोल्ड मेडल्स, कनाडा 17 स्वर्ण पदक, मेजबान स्कॉटलैंड ने अब तक 10 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो भारत 10वें स्थान पर आ गया है कुल 23 मेडल्स के साथ, जिनमें 5 स्वर्ण, 12 चांदी के और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। अस्मिता दे ने जूडो में गोल्ड मेडल हासिल किया और वो इस खेल में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली प्रथम भारतीय बन गई है। लड़कों में भी हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। हमारी अपनी नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर रेस में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया। तो बॉक्सिंग में मेवें क्लेयर सेमीफाइनल में जाकर कल हार गया। वेल्स की होली सुतोमी के सामने उसे मिला अंततः ब्रॉन्ज मेडल। उल्लेखनीय है कि जूडो में और एथलेटिक्स में आज जूडो में हमारे कुछ खिलाड़ी आज फिर ततामी पे उतरेंगे और एथलेटिक्स में भी। सो आज का प्रोग्राम इस प्रकार है, काफ़ी भारी भरकम। आज दिन के 10 बजे से ही हमारे पैरा एथलीट सिड्रिक बेना मेंस शॉटपुट के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएगा। तो सिड्रिक रावे 1500 मीटर के फाइनल में रेस दौड़ेगा। क्रिस्टोफर सोफी मेंस डिस्कस थ्रो के फाइनल में होगा दिन के 10 बजे से ही। जबकि जूडो में नोएमी एवनो लड़कियों में और लड़कों में रेमी फिये दिन के 10 बजे से अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। फिर लगभग 1 बजे से 4x100 मीटर रेस का पहला राउंड निर्धारित है, जिसमें हमारे क्वाचियो नोआ बीबी, जेरेमी लारा रोडेज, ओफे टोपीज और जोशान वैन कतासामी देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे 4x100 मीटर रेस में। रात के 7:25 पर सेव द टाइम, रात के 7:25 पर मॉरिशस की सारी उम्मीदें पैरा एथलेटिक की 400 मीटर T54 रेस पर होगी, जिसमें नोएमी अल्फोंस के साथ ब्रांडी पेरिन भी मेडल लाने का प्रयास करेंगे। इतना सब कुछ राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर, जिसका समापन समारोह कल संडे को ग्लासगो में होगा। और ये सारी घटनाएं, ये सारे इवेंट्स लाइव एमबीसी 11 पर दिखाई जा रही है। इसलिए कम ऑन मॉरिशस, चले चलो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता जनार्दन कंट्रोवर्शियल प्लान फाइनली स्क्रैप्ड। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा में आग लग गई है, हाहाकार मच गया। अज्ञानी इन्फांटिनो को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि ये प्लान फुटबॉल को डिवाइड करता है। गुरुवार से जब से फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो ने ऐलान किया कि संस्था की प्रमुख घटनाओं, जिनमें वर्ल्ड कप भी है, का आयोजन एक कमर्शियल सब्सिडियरी कंपनी को दिया जाएगा, तब से विश्व भर के फुटबॉल राष्ट्रों में भूचाल आ गया। इस प्रस्ताव को यदि बहुमत यानी मेजोरिटी वोट्स के बाद ही पारित किया जा सकता था, तो 211 में से 136 देशों ने इसका खुलकर विरोध किया। यूएफ यानी यूरोप के 55 देश, कोंकाकाफ इलाके के 35 और एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के 46 फुटबॉल राष्ट्रों ने भी इसका विरोध किया। बाकी जो अफ्रीका और ओशियानिया के फुटबॉल फेडरेशन हैं, वे अगस्त महीने में इस प्लान पर बातचीत करते और सब ने खुलकर विरोध किया, ये कहते हुए कि फीफा इज सेलिंग फुटबॉल, कि फीफा फुटबॉल से धंधा कर रहा है। नो टू फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज, जिसका मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दामाद बताया जा रहा है। थ्राइव इटर्नल इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला है, जिसका फाउंडर है जोशुआ कुशनेया, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेद का भाई है। यानी बहुत करप्शन है, इसीलिए सबसे पहले यूएफए ने, कोंकाकाफ और एएफसी ने इस प्लान का खंडन किया। फिर ज्ञानी इन्फांटिनो के वरिष्ठ सलाहकार
सीनियर एडवाइजर कार्लोस कोइडेरो ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तत्पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जनेब

जले पर नमक छिड़कते हुए इन्फांटिनो के रेजिग्नेशन, उसके त्याग पत्र की मांग की। बर्नहम के मुताबिक ऐसा बेहुदा ख्याल लाना ही साबित करता है कि इन्फांटिनो इज द रॉन्ग मैन। और कल रात फीफा के एक और एग्जीक्यूटिव मेंबर केविन लामू ने फुटबॉल के प्रति अपना प्रेम जताते हुए इसे एक आदमी का प्रोजेक्ट बताया। अब चाहे मेरी नौकरी ही क्यों न चली जाए, कम से कम मुझे चैन की नींद तो आएगी, कहा केविन लामू ने। लामू यानी प्रेम तो प्यार तो हमें इंग्लिश फुटबॉल से भी है, जिसका नया प्रीमियर लीग सीजन 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इस बीच यदि फिर पैसे बहाकर कई खिलाड़ियों को आकर्षित किया तो उधर उसका पुराना विंग यूक्रेन का 25 वर्षीय मिखाइलो मुड्रिक फिर से खेलने के लिए आज़ाद है। ये बात अलग है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब को 10 मिलियन पाउंड का जुर्माना भरना पड़ेगा ट्रांसफर नियमों का उल्लंघन करने के लिए बिटवीन 2009 एंड 2022। किंतु अच्छी बात यह है कि मुड्रिक फिर से खेल पाएगा। अक्टूबर 2024 में 2024 में यूक्रेन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी के दौरान डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ मेल्डोनियम की कम मात्रा पाए जाने के बाद उसे 5 सालों के लिए सस्पेंड किया गया था। बाद में मुड्रिक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कैस से अपील की। अब एफए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा और मुड्रिक के बीच समझौते के बाद मामला सुलझ गया है। एफए ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार यदि यही जांच आज होती तो कोई बुरा नतीजा या एडवर्स फाइंडिंग्स सामने नहीं आता। सो मिखाइलो मुड्रिक ने इसे अपनी करियर का सबसे कठिन दौर बताते हुए अपनी वापसी पर खुशी और चेल्सी फुटबॉल क्लब के प्रति आभार प्रकट किया। द ब्लूज ने भी मुड्रिक के फिटनेस बहाल कर टीम में शामिल करने और प्री सीजन 2 में उतारने की पुष्टि की है। इसलिए वेलकम बैक मिखाइलो मुड्रिक। चेल्सी आज ही खेलेगा टोटेनहम हॉटस्पर के खिलाफ सिडनी सुपर कप के फाइनल में। सो फ्रेंडली मैचों की बात हुई तो द रेड्स लिवरपूल के लाल कल संडे की रात 12 बजे अपने यूएस 2 का आखिरी मैच खेलेंगे लीड्स यूनाइटेड के विरुद्ध। ब्रैडली बाकुला का ट्रांसफर सौदा अभी तक टंगा हुआ है और फ्रेंडली मैचों में ही कल रात यूवेंटुस ने निस को 2-0 से हराया तो बर्मिंगहम सिटी और एफसी बार्सिलोना ने मैच ड्रॉ किया 2-2। फिर पेनाल्टी शूटआउट के बाद बर्मिंगहम की जीत हुई 3-2 से। बार्सिलोना के दोनों ही गोल इजिप्ट के 18 वर्षीय नए वनडे किड हमजा अब्दुल करीम ने स्कोर किए। सो बर्मिंगहम की अंततः जीत हुई 3-2 से पेनाल्टी शूटआउट पर। आज रात मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला इंटर मिलान से, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड का मुकाबला फ्योरेंटिना से होगा। लिवरपूल बता दें कि लीड्स यूनाइटेड कल रात 12 बजे, फिर रविवार 9 अगस्त को लिवरपूल वर्सेस मोनाको, 16 अगस्त को आखिरी फ्रेंडली मैच अगेंस्ट कुमू एफसी, फिर प्रीमियर लीग की शुरुआत। किंतु एंटोनी इराउला ने जो बदलाव लाए हैं उनसे टीम की स्पिरिट थोड़ा बहुत टूट गई है। रेक्साम को 1-0 से रैक करने के बाद डोमिनिक जोबोस्लाई, कर्टिस जोन्स और कोस्टा सिमिकास के बीच मैदान पे ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स की खबर आ रही है। वास्तव में मैदान से निकलते समय जोबोस्लाई ने अपना आर्मबैंड, कप्तान का आर्मबैंड निकालकर सिमिकास को दिया, जो रिपोर्टों के मुताबिक जोन्स को अच्छा न लगा। अब जोबोस्लाई खुद अंतरिम कप्तान था क्योंकि असली कप्तान तो वर्जिल वन डाइक है जो अभी तक छुट्टियों पे है। उस बीच ब्रैडली बाकुला वाला ट्रांसफर मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि हर तरफ से अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, पर क्या लिवरपूल पेरिस सेंट जर्मेन के 140 मिलियन यूरो का डिमांड पूरा कर पाएगा, सुनते रहिए। इस बीच न्यूकासल यूनाइटेड ने अपने कोच एडी हाउ के त्याग पत्र देने की पुष्टि की है। इट्स कन्फर्म्ड, सेंट जेम्स पार्क में लगभग 5 साल बिताने के बाद एडी हाउ सब कुछ छोड़कर जा रहा है। उसकी जगह पर जर्मन कोच मैथियास जेसले फेवरेट है। इटली और एसी मिलान का ऑल टाइम ग्रेट फ्रांको बारेसी 66 की आयु में चल बसे। इन्होंने साल 1977 से 1997 तक अपने पूरे 20 साल का फुटबॉल करियर एसी मिलान में बिताया, विनिंग 6 सीरिया टाइटल्स एंड 3 यूरोपियन कप, यूरोपियन चैंपियंस लीग। वे इटली और एसी मिलान के ग्रेटेस्ट डिफेंडर माने जाते हैं। फ्रांको बारेसी ने 15 सीजन तक एसी मिलान की कप्तानी

0: किसलिए अलविदा फ्रांको बारेसी। बोर्नमुथ ने बेनफिका के 22 वर्षीय पोर्टुगीज डिफेंडर अंटोनियो सिल्वा को 26 मिलियन पाउंड में साइन किया है और मैनचेस्टर सिटी का इंग्लैंड डिफेंडर जॉन स्टोन्स इंटर मिलान में एक फ्री ट्रांसफर सौदे पर चला गया है, जबकि आर्सेनल ने न्यूकासल यूनाइटेड और ब्राजील के मिडफील्डर ब्रूनो गिमारेस को अपना परम टारगेट बना रखा है। दाम 77 मिलियन पाउंड। लेकिन अखबार के मुताबिक आज रात तक ये सौदा संपन्न हो जाना चाहिए। रियल मैड्रिड का फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर भी द गनर्स के रडार में है और फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप का वर्तमान सीजन यूरोप में ही संपन्न हो सकता है यदि मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व में युद्ध बरकरार रहा तो, ऐसा कहा फॉर्मूला वन के बॉस स्टेफानो डोमिनिकाली ने। सितंबर महीने में एक अंतिम फैसला लिया जाएगा। एंड फाइनली क्षेत्रीय स्तर पर मॉरिशस में आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागांजा आईसीई का सीजन 4 आज से ही शुरू हो रहा है। पहला मैच आज दिन के 1 बजे एसएसआर क्रिकेट ग्राउंड मापू में बिटवीन कैंपस अब्रोड लायंस एंड एएमजी पैंथर्स और कल संडे की सुबह 9 बजे मैच नंबर 2 बिटवीन कॉन्टिनेंटल चीतास एंड एपीपी लेपर्ड्स। रोशनोवा फुटबॉल मैदान पे आज शाम 3:30 बजे से द दुदला बीमा सुवेनियर कप का 22वां एडिशन जारी रखा जा रहा है। आज शाम प्लेन दे रोश और थ्रियोले कैडेट्स के बीच जबरदस्त मुकाबला। रोड टू ग्लासगो आज पूर्वांतिम दिन है, सो कम ऑन मॉरिशस, चले चलो। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Mob des pieds par 100 roupies, des pieds par 4 pieds à potier 295 roupies.

चलिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ कि ये म्यूजिकल सफर आपको पसंद आया और हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी, कल सवेरे होगी। तब तक यू टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल सैटरडे।

सबको नमस्ते। भोजपुरी में समाचार सुना जा। काल रात के राष्ट्रीय सभा में द फाइनेंस बिल पर बहस होल, किंतु एकर समापन यानी समिंग अप के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बोलन की पेंशन के टारगेटिंग के हटाइला से जन कमी आल बाते ओकरा पूरा करे खातिन सरकार के चाहेला 6.2 बिलियन रुपया के अतिरिक्त इंतजाम करे के सरकार के परी। उ बतैलन की टारगेटिंग के जन मकसद है उ सबसे कमजोर जना के जस्ती सहायता दे के बाते प्रधानमंत्री बोलन की आर्थिक विकास के बढ़ावा दे खातिन और ई कमी के पूरा करे खातिन दूसर उपाय चाहेला लागू करे के। कल रात 10 बजे से तनी सुन समय आगे एक थोड़े से बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसिलानियस प्रोविजन बिल सुधार के बाद पारित कर देवल गल है। दोनों बिल्स विधेयक के जरिए 19 जून के जन बजट 2026-2027 पेश करल गल रहल ओकर घोषणा के कानूनी रूप देवल गल बा। है दौरान नेशनल पेंशन एक्ट के संगे चार कोरी से जस्ती कानून में सुधार लावल गल, पेंशन रिफॉर्म से जन सुधार जुड़ल बातें ओकर पर सदन में तीखा बहस होल। विपक्ष नेता जोली जाऊंगा वोट बाय डिवीजन के मांग करलन। पर्यटन जूनियर मंत्री सिडनी पिया सरकार के अकेला सदस्य रहलन जन है विधेयक के खिलाफ वोट देलन। होजे परी विपक्ष के 5 सांसद भी एकर खिलाफ वोट देलन जा। राष्ट्रीय सभा के कार्य अब आवत मंगलवार 4 अगस्त को के दिन के 11:30 पर जारी रखल जाए एक स्थगित कर देवल गल बा। सिडनी पिया के कल रात के पर्यटन जूनियर मंत्री के पद से हटा देवल गल। हाई फैसला प्रधानमंत्री लेलन जा।

0: कहे कि नेशनल पेंशन एक्ट में संशोधन के मुद्दा पर फाइनेंस बिल के चर्चा के दौरान सांसद सिद ने पिया सरकार के नीति के खिलाफ जाके अमेंडमेंट के विरुद्ध वोट दिलन जा। जॉन सिद ने पिया के पद से रद्द करला के बाद यानी उनका रेवोकेशन के बाद स्टेट हाउस देने से जारी गो कम्युनिके के माध्यम से आधिकारिक रूप से हाई घोषित कर देवल गल। पेंशन के राशि अब हर बरिस जीवन खर्च यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बढ़ावल जाए। हई बढ़ोतरी हर बरिस जनवरी महीना में लागू हो। ई जन इंतजाम है कानून में शामिल करल गलबा हई व्यवस्था। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों काल रात के राष्ट्रीय सभा में बहस के दौरान एकर जानकारी दिलन जा। दूसर दिन ने विपक्ष नेता पुल बिहोजे हई बदलाव में क्लारिफिकेशन यानी स्पष्टता के कमी होला पर बात करलन जा। मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा लेनेजी के क्षेत्र में सहयोग के और मजबूत बनाई खातिन एगो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर करे के तैयारी होवत बा। हई फैसला काल कैबिनेट के बैठक में एकरा मंजूरी देवल गल। हई समझौता दोनों देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच सहयोग के एगो ढांचा तैयार करी जेकर अनुभव जानकारी जन से अनुभव जानकारी और अच्छा काम के आदान प्रदान एक्सचेंज बढ़ी। दूसर खबर में जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक लेगोविन के पति गुलशन गोविन के रेनियन टापू में लगभग 100 किलो जमाल जब्ती मामला के जांच के सिलसिला में काल गिरफ्तार करल गल। हई बड़ा घटनाक्रम से हई मामला के राजनीतिक और न्यायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ मिल गल बाते। अब सांसद के पति से पुलिस और जांच एजेंसी जन है वो लोग पूछताछ करत हवन जा। राष्ट्रमंडल खेम गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस दुगो पदक जीत ले बा। नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल कर लन जा और मे वैक्लेया बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल कल रात के जीतलक। अब आज भी ग्लासगो में ढेर खेल इवेंट्स रखल गलबा। खास तौर पे आज रात के 7:25 पर मॉरिशस के जितना उम्मीद बाते वो पारा एथलेटिक के 400 मीटर T54 रेस पर रही जिनमें नोएमी अल्फोंस संगे ब्रांडी पेरिन भी मेडल जीते के कोशिश करियन जा। फिर सेड्रिक रावे पारा एथलीट सेड्रिक बैनर क्रिस्टोफर सोफी मेंस डिस्कस थ्रो के फाइनल में रही। रेमी फेयर नोएमी एवनो जूडो में ये सब आज ई खेल के लगभग आखिरी दिन है। कल ग्लासगो में एकर समापन समारोह रही। और दूसर देश में मोरक्को के सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र स्यूटा में बीफे के हजारन की संख्या में प्रवासी घुस गैलन जा। प्रवासी लोग बॉर्डर के भीरी उकरा दीवार तोड़ के स्पेन में प्रवेश कर लन जा जेकर दौरान कमती से कमती 41 जना के मौत हो गल बाते। अब स्पेन इलाका में मोरक्को संगे जन सीमा लगल गल बा ओकर शांति बनाए रखे का दिन ओकर फैसला ले लेबा। ई रहल भोजपुरी में समाचार। ये बखत फजर के 8:05 होल बाते हमने संगे जुड़ल रहिए।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Timeless Tarka. RM2. Timeless Tarka.

0: Podcast Tadka.
1: RM2.
2: गुड मॉर्निंग, 8:11 हो चुके हैं। उम्मीद है आपकी सुबह शानदार रही होगी। सुबह 5 बजे से रिया ने माहौल बना दिया और अब मेरा बात है, क्योंकि उसने तड़का ऐसा लगाया है कि मुझे उस तड़के को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 3 घंटे होंगे उस खाने की जो डिश आपके लिए बनाई जाएगी, जिस डिश के अंदर हमारे इन्ग्रीडियंट्स होंगे, बहुत सारे गाने, बहुत सारी यादें और बहुत सारे गिफ्ट्स। तो भाई आप शुरू हो जाए हमारे साथ, यानी कि टाइमलेस तड़का के साथ और RM2 रेडियो मस्ती के साथ। अभी टाइम है थोड़ा सिर्फ जानने का कि आज सुबह से लेके शाम तक मौसम कैसा रहेगा। तो चलते हैं टीना की ओर, जिन्होंने मिस कर दिया आज का मौसम। टीना हमें बताएगी कि कैसा रहेगा आज का मौसम।

पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज दिन भर बादल ही रहेंगे, खासकर देश की

0: अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर रात्रि के समय। सूर्योदय आज 6:39 पर और सूर्यास्त शाम के 5:52 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Mustique.

0: एक्सप्रेस तड़का
1: RM2
2: 8:26 हो चुके हैं दोस्तों और तैयार हो जाइए क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान स्वर्क लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए मॉरिशियस शॉपिंग फेस्टिवल की शानदार गेम. द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान स्वर्क लिमिटेड. तो आपके पास एक मौका है जीतने का 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया की तरफ से एक शाही थाली यानी कि फूड कूपन और फिर पूरे परिवार के साथ पहुँचिए 12 से 16 अगस्त 2026 SBICC पाए जहां सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका इंतजार रहेगा. उत्सव इंडिया मॉरिशियस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. वहां मिलेगा इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, इंडियन सिंगर्स, लाइव परफॉर्मेंस, बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर की स्पेशल अपियरेंस और कानमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप और स्वाद से भरपूर फूड फेस्टिवल. तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम भी अपनी गेम को. सब तैयार हैं? मुझे पता है, उम्मीद है, क्योंकि सबको जीतना होता है और ये जीत जो है ना सुबह सुबह अगर आ जाए तो फिर पूरा दिन बहुत हैप्पी हैप्पी रहता है. तो चलिए भाई आपको हमें सिर्फ इतना बताना है कि 12 से 16 अगस्त तक होने वाले उत्सव इंडियन मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल में इंडियन आइडल से जुड़े किसी गायक की लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है, उनका नाम क्या है. फिर से हम बता देते हैं, 12 से 16 अगस्त तक होने वाले उत्सव इंडियन मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल में इंडियन आइडल से जुड़े किसी गायक की लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है, उनका नाम क्या है. उसमें से हम आपको कोई ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ आपको डिसाइड करना

और आपको बताना है 5499124 पर। इस गाने के बाद हम ढूंढेंगे अपना वो विनर जिसने राइट आंसर दिया होगा, साथ में अपना नाम पूरा दिया होगा और अपने एड्रेस के साथ।

0: एस तड़का
1: और एम टू
2: 8:34 हो चुके हैं दोस्तों, और हमने आपके साथ गेम खेली थी आर एम टू रेडियो मस्ती, और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए थे आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का शानदार गेम। आज आपके पास था मौका जीतने का 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया के 1 फूड कूपन, शाही थाली और पूरे परिवार के लिए आप पहुंच सकते थे 12-16 अगस्त 2026 को SBICC पाए स्पेशली इन टिकट्स के साथ। पर आप वैसे भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। यहां पर आके आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। सुबह 10 बजे से लेके रात को 9 बजे तक इंतज़ार रहेगा आपका उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI NLIC। वहां मिलने वाला है आपको इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, इंडियन सिंगर लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बॉलीवुड कोरियोग्राफ आने वाले हैं, ग्राफर मिस्टर धर्मेश सर की स्पेशल अपीयरेंस रहेगी, कानमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप और स्वाद से भरपूर फेस्टिवल रहने वाला है। आपको घर में खाना नहीं बनाना है, सिर्फ वहां पे आना है और इंजॉय करना है अपना पूरा डे, अपने जो भी आपने शॉपिंग करनी है, जो भी अपने खाना पीना है, बच्चों को इंजॉय कराना है। बट हमने आपके साथ गेम बहुत ही सिंपल और छोटी सी खेली थी कि 16 अगस्त तक होने वाले उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल में इंडियन आइडल से जुड़े किसी एक गायक का नाम जो होगा, वो एक परफॉर्मेंस देने वाले थे, उनका नाम क्या है जो स्पेशल आएंगे, तो हमारे को बताया बहुत सारे लोगों ने। बट कई जनों ने रॉन्ग आंसर दिया, कईयों ने राइट दिया, कईयों ने एड्रेस नहीं लिखा, कईयों ने पूरा नाम नहीं लिखा। तो हम क्या करें, हमारा तो जो ड्रॉ होता है उसमें स्पेशली एक ही चीज़ होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका नाम पूरा होना चाहिए, आपका टेलीफोन नंबर होना चाहिए और आपका एड्रेस होना चाहिए और आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। जहाँ पर ये चारों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं फिर हम उसका ड्रॉ निकालते हैं, तो उसमें से कोई किसी ने तो जीता है ना। यस, जीता है, तो हम बताते हैं उसका नाम क्या है। तो जीतने वाली हैं तो चलिए पहले तो हम ये आपको बता देते हैं कि जो इंडियन आइडल से जुड़े गायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस होने वाली है उनका नाम है प्रणय जैन। यस, और जीता है निष्ठा बहादुर जो कि कात्रबोन से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है 4 एंट्री टिकट्स और एक शाही थाली हमारी प्यारी सी राजस्थान लिमिटेड के द्वारा। और हम आपको इतना ही कहते हैं कि हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा, इंजॉय कीजिए गाने।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: एक कम्युनिके सुन लीजिए. द कम्युनिके सेंट्रल वाटर अथॉरिटी एंड द वाटर रिसोर्सेज कमीशन की तरफ से है. द सिचुएशन ऑफ अवर रिजर्वायर हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू बिलो एवरेज रेनफॉल. मावाक्वा द कंट्री मेन रिजर्वायर इज करेंटली एट 41% ऑफ इट्स कैपेसिटी. इफ रेनफॉल्स रिमेन्स बिलो एवरेज एंड इनसफिशियंट ओवर द कमिंग वीक्स मावाक्वा कुड रन ड्राई एज अर्ली एज सेप्टेम्बर. द सिचुएशन इज ऑल्सो कंसर्निंग फॉर ला निकोले which supplies water to the large part of the northern region of the island. At the current rate, this reservoir could run dry by October 2026. The rainfall deficit will seriously affect the country's strategy water reservoir as the summer seasons approaches a period of high water consumption. Main stringent water demand management has therefore become essential to preserve the available water stocks and ensure they last as long as possible. In this context, the authorities are currently working on restrictions regarding the use of potable water. Further communique will be issued to provide additional details on the measures that will be implemented.

0: ठीक 9 बजे हैं और समय हुआ है संक्षिप्त समाचारों का। समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं टीना बुदना। टीना जी नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलिनियस प्रोविजंस बिल सुधार के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है और इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में सुधार किए गए। और पेंशन रिफॉर्म से जुड़े सुधार पर सदन में तीखी बहस भी हुई। विपक्ष नेता जो लेजोंगाओ ने वोट बाय डिवीजन की मांग की। पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया। वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। राज्यसभा के कार्य अब मंगलवार 4 अगस्त को दिन के 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। सिडनी पियर को कल शाम पर्यटन जूनियर मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पियर ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था। दूसरी खबर में जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक लुगोविन के पति गुलशन गोविन को रेनियन टापू में लगभग 100 किलो जमाल जब्ती मामले की

0: जांच के सिलसिले में कल गिरफ्तार किया गया। इस बड़ी घटनाक्रम से इस मामले को राजनीतिक और न्यायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ मिल गया है। अब सांसद के पति से पुलिस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। और कोविड 19 महामारी के समय खरीदी गई लेकिन कभी नहीं मिले वेंटिलेटर मशीनों के मामले में सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कल कैबिनेट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को दो कंपनियों के खिलाफ स्पेन के कोर्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये दो कंपनियां हैं पैक एंड ब्लिस्टर और मेडिटेरेनियन हेल्थ केयर सप्लाई नेटवर्क SL। और आज कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने दो मेडल्स जीते। नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया जबकि मेयावेन क्लेया ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आज मॉरिशस समय अनुसार रात के 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और रांडी पेरिन 400 मीटर की रेस में भाग लेंगे। और आज की चर्चा कार्यक्रम में आज CEB द्वारा प्रस्तावित न्यू फोटोवोल्टाइक स्कीम 2026 पर चर्चा की जाएगी। और आज किरण जानकी के मेहमान होंगे CEB के कस्टमर सर्विस ऑफिसर धर्मराज जूतन जी और CEB के इंजीनियर भूमेश नरसिंह जी। तो किरण जानकी के साथ आज की चर्चा कार्यक्रम सुबह 9 बजे के समाचारों के बाद दिन के 10 बजे तक। विदेश में मोरक्को की सीमा से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा में गुरुवार को हजारों प्रवासी घुस आए। प्रवासियों ने बॉर्डर की बाहर तोड़कर स्पेन में प्रवेश कर लिया जिसके दौरान कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: Timeless Tarka. RM2. Timeless Tarka.

0: एस तड़का
1: RM2
2: चलती है क्या 9 से 12 भाई आप भी बताइए 9 से 12 कहीं घूमने का कुछ प्लान कर रहे हैं बीच में कहीं रुकने का कोई प्लान है कोई रेस्टोरेंट जाने का प्लान है कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुछ बनाने या खाने का प्लान है हमें बताइए 5499124 पर जहां भी जाइए RM2 रेडियो मस्ती को अपने साथ जरूर रख लिए क्योंकि हमारा तो कोई खर्चा भी नहीं है बस हम चुपके से आपकी गाड़ी में बैठकर आपके साथ आपके सफर पे निकल पड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप जहां भी रुकेंगे जहां भी जाएंगे हम आपके साथ हैं ये पुराने गाने तो कहते हैं ना जो टाइमलेस वाले गाने हैं ना ये बहुत ही मस्त होते हैं इससे थोड़ा सा मूड भी बन जाता है और जो थकान होती है बच्चों का मुंह देख के ऐसा लगता है कि अरे चलो भाई कहीं चलते हैं कुछ समुद्र चले जाते हैं या कहीं घूम के आ जाते हैं यही चीज़ें होती हैं और अगर आप खुद बच्चे हैं तो बस मम्मी पापा को पटाओ बोलो कहीं हमें लेके जाओ अगर वो नहीं लेके जा रहे हैं तो कोई किसी दोस्त को फोन करो बोलो कुछ प्लान है 9 से 12 कहीं चले चलो इंजॉय कीजिए अपने गानों को और साथ में हम इतना ही आपको बोलेंगे स्माइल को बिल्कुल अपने कहीं पे छोड़ के मत आइएगा अपने चेहरे पर चिपका के लेके जाइए मैं हूँ आपके साथ पूनम इंजॉय कीजिए ये ट्रैक
0: टाइमलेस तड़का RM2 टाइमलेस तड़का

0: way.
1: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द

0: एक्सप्रेस दरगाह
1: RM2
2: 9:23 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम टाइमलेस तड़का के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्लानिंग बताई है हमें, यहाँ पे हम यहाँ जा रहे हैं, वो प्लान किया है, ये प्लान किया है, बट कई लोग हैं कि कुछ बोल रहे हैं कि बताओ हम क्या प्लान करें, तो हम भी आपको बोल रहे हैं क्यों घर में बैठे हो, अरे इतनी मुश्किल से तो वीकेंड मिलता है इंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा दिमाग भी रिफ्रेश होता है और उसके साथ में ऐसा लगता है कि भाई नहीं आज घर पर नहीं रहना, ना घर का कुछ खाना है ना पीना है, क्योंकि पूरा वीक हम लोग काम में स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, अगर आज आपके पास गाड़ी है या आपके पास कोई प्लानिंग है, दोस्त को फोन करो और बोलो चलो भाई चलते हैं ब्लू बे की तरफ, जहां पे आज हमारी नीतू शाह यानी कि आरजे नीतू शाह भी साथ होंगी और वहां पर होने जा रहा है ब्लू वे एरिना में स्पोर्ट्स एंड फन डे। तो भाई फन डे वाली बात आ गई और स्पोर्ट्स की बात होगी, तो जिनको स्पोर्ट्स से प्यार है, जिनको फन करने से प्यार है, तो वहाँ पर क्यों नहीं जाते, प्लान कीजिए, एंजॉय कीजिए और आप जुड़ेंगे 10 बजे से लेके 12 बजे तक लाइव नीतू शाह की तरफ से, वहाँ पर होंगी साइट पर और हम होंगे यहाँ पर, इंजॉय करेंगे गानों के साथ में, आपको वहाँ के माहौल भी बताएंगे, वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी बताएंगे, पर हम आपको कह रहे हैं कि घर में बिल्कुल मत बैठिए, थोड़ा सा टाइम है एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, थोड़ा सा स्मूथ बनाइए, बहुत सारे काम है और गर्मी भी है, तो चलो भाई ये टाइम तो थोड़ा सा गर्मी का हो जाता है, एंजॉय करने के दिन भी हैं, तो क्यों ना किया जाए। तो चलिए गानों के साथ साथ ये भी हमने आपको बता दिया है कि कहीं पे भी बैठे हो तो चले जाइए ब्लू बे एरिना, जहां पे होने वाला है स्पोर्ट्स एंड फन डे, एंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: टाइमलेस तड़का RM2 टाइमलेस तड़का

0: एस तड़का
1: RM2
2: 9:35 हो चुके हैं। मुस्कुराइए, थोड़ा सा गुनगुनाइए और दिल करे तो दो चार स्टेप्स हमारे साथ भी कर लीजिए। नाचना बहुत ज़रूरी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, मूड के लिए बहुत अच्छा रहता है। और साथ में अगर गा सकते हैं गाइए, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। RM2 रेडियो मस्ती हमेशा 24 आवर्स आपके साथ है, इंजॉय भी कराने के लिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी, और साथ में वही आपके मैसेजेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं यलेश जी, साथ दे रहे हैं साज हॉस्पिटल से जयशन तिकोरी, श्रवण आकाश सुखना ओकोन जीतू जी साथ में जुड़े हुए हैं, ललित जी यूएसए से साथ दे रहे हैं, रवि खिलावन जी भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, नूतन जी थैंक यू सो मच नूतन जी हमारा साथ देने के लिए, यशवंत जी, अनिला, अनिष्ठा, आशा, सूरज शर्मा, साजदा जी अपने बेटे को ड्रॉप करने गए थे और कह रहे थे बहुत पहले मैसेज उन्होंने भेजा था, अब तो ड्रॉप करके वापस भी आ गए होंगे, मॉर्निंग में कुछ खाने पीने की भी तैयारी चल रही होगी, खाते रहो। शीतल जी भी जुड़ी हुई हैं और अपने परिवार के साथ में इंजॉय कर रही हैं। अनु, सुधा, मानती, प्रीति, राकेश, रिया एंड श्रिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है अनीता जी का फ्रिकॉन फ्लाक से, और कह रही हैं आज मेरी भतीजी अंजू यूके से आई है हॉलीडे के लिए और पिकनिक के लिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई मेरा सैटरडे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं सभी लिसनर्स को बोलती हूँ कि अपना सैटरडे और संडे भी बहुत ब्यूटीफुल बनाइए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं तो कहती हूँ ऐसे मैसेजेस बहुत सारे आने चाहिए, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। इस समय विष्णु जी जो कि अपनी वाइफ धीमा जी के लिए एक गाना सुनाना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारी हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज रेडियो से तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। मैं ऐसा काम करता तो नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि आज अगर तुम्हारा नाम यहाँ से होगा, गुनगुनाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है भाई, हम भी एक चाहेंगे, अगर आपने हमें चुना है उनके बर्थडे के लिए विश करवाने के लिए, तो हम क्यों ना विश करें। मैम आपको बहुत बहुत अपने जन्मदिन की बधाई हो हमारी पूरी टीम की तरफ से भी। और हम जब तक हमारा रिचुअल है भाई, हम जब तक ये नहीं चलाते, हमारा किसी का बर्थडे पूरा नहीं होता, तो ये आपके लिए स्पेशली और गाने भी आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए अपने गानों को।

0: एस तड़का
1: RM2
2: 9:54 हो चुके हैं दोस्तों, और घर के अंदर बस ऐसा एक खुशबू फैल रही होगी। कोई नाश्ता तैयार कर रहा होगा, कोई बोल रहा होगा चिपे दे दो, अरे गातो पीमा फ्राई कर लो, साथ साथ कुछ ना कुछ चाय वाय अब शुरू हो गई होगी। क्योंकि कई लोग बहुत कहते हैं कि भाई वीकेंड है तो थोड़ा सा आराम से उठते हैं, पर बहुत सारे लोग काम पर भी जाते हैं, चाहे आप कह लीजिए कि एक्स्ट्रा काम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे उनकी आगे की जो लाइफ है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको चाहिए होता है थोड़ा सा टाइम अपने लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे वीक बहुत काम किया होता है। तो बस हम तो यही कहेंगे, जो भी आपने प्लानिंग की है बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट की होगी, पर अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि आप अलाइन नहीं हो पा रहे हैं जिंदगी के साथ, तो किसी बड़े के साथ बैठिए, किसी दोस्तों के साथ बैठिए, किसी को बस शेक कीजिए और कहिए अरे भाई मैं भी अपने उस ट्रैक में आ जाऊँ जहाँ पर तुम चल रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ये जानने के लिए कि भाई कौन कौन किसको सपोर्ट करता है। तो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, बस किसी को भी फ़ोन खटकाट के बोल दीजिए कि हाँ भाई मुझे भी बता लो, मुझे भी ऐड कर लो अपने इस वाले ग्रुप के अंदर जहाँ पर वो कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो अगर आपने भी अभी तक कोई प्लानिंग किया है तो प्लान कीजिए। और आज तो वैसे भी हमारा जो पूरा MBC की टीम है इस समय ब्लू बे एरिना में जुड़ी हुई है, जहाँ पर स्पोर्ट्स एंड फन डे होने वाला है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो वहीं चले जाओ, वहाँ पर आपको मिलेंगी हमारी टीम और साथ में आरजे नितुषा, और साथ में हम आपको इतना ही बोलेंगे, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद डायरेक्ट मिलेगा लाइव आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन नितुषा के थ्रू। तो ये है गाने आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए।
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check. सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से. टीना आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. सिडनी पिया को कल शाम पर्यटन जूनियर मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया. ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पिया ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था. जॉन सिडनी पिया की रिवोकेशन को स्टेट हाउस द्वारा जारी एक कम्युनिकेट के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित किया गया. फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी. उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे. कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राज्यसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजन बिल सुधार के साथ पारित कर दिए गए. इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है. इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में सुधार किए गए. पेंशन की राशि अब हर साल जीवन के खर्च के हिसाब से बढ़ाई जाएगी. ये बढ़ोतरी हर साल जनवरी महीने से लागू होगी. ये व्यवस्था कानून में शामिल की जाएगी. समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुपो ने कल रात राज्यसभा में बहस के दौरान इसकी जानकारी दी. दूसरी तरफ विपक्ष में शामिल पल बिहोंजे ने इस बदलाव में स्पष्टता की कमी होने की बात कही. कैबिनेट ने ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ा नया कानून तैयार करने को भी मंजूरी दे दी है जिनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं. इस पर जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय काम करेगा. इस प्रस्ताव में विशेष रूप से शुरुआती स्तर पर सहायता, चिल्ड्रंस कोर्ट द्वारा निगरानी, माता पिता को मार्गदर्शन तथा आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को किसी विशेष संस्थान में रखने का प्रावधान शामिल है. विदेश में शांति योजना के द्वितीय चरण को लागू करने के लिए पिछले कई दिनों से मिस्र की राजधानी काहिरा में मध्यस्थों और हमास प्रतिनिधियों के बीच वार्ता चल रही थी. वार्ता के बीच गाजा में इसराइल के हमलों में 2 बच्चों समेत 6 लोग मारे गए हैं. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई. थोड़ी देर में शोक समाचार. Mon Salman VOS Plein Magnomé, 75 साल के 75 years old के श्री विट्ठल कुमार तोता, जो विट्ठल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके घर मों सलमान वी ओ एस प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 3 p.m.

0: Jam. Fabriklin modalbemi, fabriklin modalbemi. Bayasi sal ke ikti 2 years old ke shri nardev guduri jo suvesh naam se ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री वीरेन गुदोरी के घर फैब्रिक लेन मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमशन टुमोरो एट 10 एएम Avenue Vauxhall, Saint-Pierre-Mi, Avenue Vauxhall, Saint-Pierre-Mi, Terrasse Salle, qui est 83 years old, qui Mrs. Safia Bibi Badel, Pedaginam Osenbucks, or just Safia Nam, c'est sa dajani jatiti, Kantakal Hugaya Hunka Janaza, Aj. सुबह 10 बजे यानी इसी समय आज सुबह 10 बजे उनके दामाद जनाब नूरुद्दीन रामजान के मकान अवेन्यू वोहोल सियाकोंस्टांस सैंपियर से निकालकर दफनाने के लिए सियाकोंस्टांस सैंपियर के कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 10 एएम International Street, Rivière du Rempormi, International Street, Rivière du Rempormi, Pachan Bissal, qui 95 years old, qui, Shemati Durpatia Dubori, Jo Durpatia, nam, si zada jani jati ti, krimiti hogei, un kirti, a sham charbaji, un kibeti, shisunil jetu ki kar, International Street, Rivière du Rempormi, se utakar, dafnani kilie, point de la score, ki shmashan bhumi le jai jagi, funeral today at 4 pm. Shok mudi bin sabi parivaron ke prati hamari gehri samvedna hai.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Frame 2.
1: Radio Musti.
2: दस बज के 6 मिनट हो चुके हैं और अब सीधा रुक करते हैं ब्लू बे का, जहां हमारी आरजे नीतू शाह इस समय लाइव है। चलिए उनसे ही जानते हैं वहां क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग नीतू, आपके साथ ही हम हैं यहां पर रेडियो मस्ती के, ये है हमारी नीतू।
3: It's a very good morning to you too, Poonam, और जितने भी हमारे लिस्टनर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं to Radio Musti. Let me tell you कि हम स्टूडियो से बाहर आ गए हैं ब्लू बे। आपने कहा ब्लू बे, हम हैं आज ब्लू बे बीच, नॉट एग्जैक्टली ब्लू बे बीच, लेकिन ब्लू बे बीच के बगल में जो ब्लू बे बीच अरेना है, यहाँ पर आप देखोगे बालू वगैरह होते हैं, तो यहीं पर है हम, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है, हो चुका है, शुरू हो चुका है, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स एंड फन डे। ये है क्या? इट्स ऑर्गेनाइज बाय द टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल। और आज ये जो टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड है, इसके बारे में हम बाद में आपको बताते चलेंगे, लेकिन जितने भी सेक्टर्स है, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए होटल है या फिर ऑपरेटर्स टू ऑपरेटर्स, जितने भी लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वे सब यानी कि मेंबर्स है ये जो टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड। और आज इनके सौजन्य से, इनके कोलैबोरेशन से विद द मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल इन्होंने आयोजित किया है, हमेशा कहते हैं अंडर वन रूफ, आज तो एक ही एरेना में, यहाँ पर ये जो बीच है कह सकते हैं, यहाँ पर बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, एयर बैडमिंटन एंड टग ऑफ वॉर, यानी कि जितने भी मेंबर्स इससे एसोसिएटेड हैं, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं टू हैव फन, टू प्ले, टू हैव फन, टू लव, टू यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एंड शुरुआत हो चुकी है लाइक 9:15 और शाम के 5 तक ये जो है कंपटिशंस एंड गेम्स हो रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट कि यहाँ पर एक किड्स कोना भी है, तो जितने बच्चे इस समय आप हमें सुन रहे हैं, फैमिलीज दोस्तों के साथ निकलने वाले हैं, बीच जाना चाहते हैं, तो आ जाइएगा एट ब्लू बे बीच।

0: जो बस बगल में जो एरेना है यहाँ पर आप लोग आ सकती हैं, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए किड्स कॉर्नर है और यहाँ पर ये लोग गेम्स कर सकती हैं, विन कर सकती हैं, बहुत सारी जो गिफ्ट्स है। और हमारे सामने क्योंकि हम बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने हैं, बगल में है, तो हवाई जहाज जो है एकदम आसान से हम लोग देख पा रहे हैं इस नज़ारे को खूबसूरती से। सो इट्स अ फन डे, इट्स नॉट संडे, इट्स सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग को खूबसूरत बनाते चलिए विद आवर M2 रेडियो मस्ती।
1: तो इसका मतलब आप बहुत सारा तड़का देने वाले हैं,
0: वॉलीबॉल, एयर बैडमिंटन, ये सब एक ही अरेना में सब कुछ हो रहा है। सो यू कैन प्ले, यू मूव एंड यू एंजॉय। सो केटरिंग फॉर द एम्प्लॉयज, जो होटल सेक्टर और जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हमारी टीम जो है रेडियो मस्ती अप टिल नून दिन के 12 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहने वाली है विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, ऑफ कोर्स हरी बारी आपको अपडेट्स देते रहेंगे।
1: थैंक यू।

0: FM2
1: Radio Musti
2: RM2
3: Radio Musti
2: Feel the Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: सुनते रहो।
3: All right, thank you so much. We are live from Blue Bay Beach Arena, जहाँ पर Tourism Employees Welfare Fund in collaboration with Mauritius Recreational Council की तरफ से आयोजित किया गया है Sports and Fun Day. And जैसे कि हमने आपको बताया कि सुबह से शुरू हो चुका है up till 5 PM by the way, beach soccer, beach volleyball, air badminton and last में होने वाला है tug of war. And यहाँ पर आंखों का नजारा जो है, सामने का जो नजारा है एकदम खूबसूरत। कड़ी धूप है भाई, छाता लिए हुए लोग आए हुए हैं, लेकिन जो जोश है, जो मस्ती है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक तरफ बीच सॉकर, एक तरफ वॉलीबॉल, और बच्चे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ बगल में बैडमिंटन खेल रहे हैं। यानी कि टीम्स आए हुए हैं, जितने भी मेंबर्स हैं टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में, वो सब भाग ले रहे हैं। बीट बच्चे लोग, उनके बच्चे, उनके जो बड़े हैं, फ्रेंड्स, एवरीवन रिलेटेड टू दिस वेलफेयर फंड यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट टू प्ले, मूव एंड एन्जॉय, क्योंकि ये जो दे एकदम स्पेशल है, और स्पेशल बनाने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वी कैन सी लोड्स ऑफ पीपल, कई कलाकारों से भी मुलाकात हो चुकी है, और ये जो जोश देख रहे हैं, ये जो नज़ारा है, इतना खूबसूरत है। क्योंकि मौका तो हमको सब मिलता है, लेकिन ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते हैं। सो बस थोड़ी देर में हम और भी गेम्स की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने कहा, इस अरेना में इट्स नॉट ओनली अबाउट वन गेम, लेकिन जितने भी गेम्स हैं खेले जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बच्चे हो, बड़े हो, सब एंजॉय, मस्ती कर रही है। तो जितने भी बच्चे लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फन डे, स्पोर्ट्स फन डे, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं अपने बड़ों के साथ। एंड गेम्स होंगे, प्राइजेस होंगे, वाई यू कैन विन हार्ट्स, नॉट ओनली गेम्स एंड गिफ्ट्स, बट यू कैन विन हार्ट्स ऑफ पीपल। और यहाँ पर स्पेशल कोना बनाया गया है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर आइए, उनके लिए भी थोड़ा सा वक्त हो जाएगा, मस्ती करने वाले हैं। एंड एनकरेज करना चाहेंगे अपने बच्चों को, ताकि ये जो फन डे है इसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सके। सो काफ़ी लोग आप, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम भी आ सकते हैं खेलने के लिए, लेट मी टेल यू, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी बहुत पहले से हो चुका है, एंड बस जो नाम रजिस्टर हुए हैं वही लोग खेल पा रहे हैं इस कंपटीशन में। एंड देयर इज नो एज लिमिट, जी हाँ, उम्र की कोई सीमा नहीं है, एंड एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, जैसे कि हमने कहा। एंड ऑफ कोर्स जो मेंबर्स हैं इन एसोसिएशंस हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो व्हाटएवर यू माइट बी, अगर आप बस देखना चाहते हैं, आप ब्लू बे बीच में हैं, तो थोड़ा आप चल कर आ जाएगा, बस बगल में ही है, यहाँ पर आराम से आप लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एंड मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल की तरफ से जो स्पोर्ट्स एंड फन डे आयोजित किया गया है।
4: सजन मैनू लुट लै गया,
1: रेडियो मस्ती।
0: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
1: Radio Musty.

0: fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. Timeless Tadka.
1: RM2.
2: 10:27 हो चुके हैं। देखिए स्टूडियो से बाहर आपके साथ इस समय जुड़ी हुई हैं नीतू शाह और स्टूडियो के इनसाइड मैं हूँ यानी कि पूनम। तो चलिए भाई बात करते हैं एक प्यारे से फैशन टिप की। इससे आपका लुक जो है ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं बाहर जाना है या आप रेगुलर डेज में भी आपको लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, ये मेल के लिए भी हो सकता है और फीमेल के लिए भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, तो सिर से पैर तक आपको एक ही कलर फैमिली के कपड़े पहनने हैं। जैसे अगर आपने ब्राउन डाला है तो आपके जो अपर है और डाउन दोनों साइड्स में आपके पास अगर ब्राउन शेड से ही रिलेटेड कपड़े होंगे तो ये क्या होता है कि इससे आपका जो हाइट है वो तो बैलेंस्ड हो जाती है, कपड़ों का एक ही टेक्सचर एक ही स्टाइल होता है, उससे आप थोड़े से लंबे लगते हैं। और अगर आपकी जो स्लीव्स हैं बहुत लंबे ना पहन के थोड़ा सा मतलब थोड़े से छोटे रखिए जिससे आपकी जो रिस्ट है आपकी नज़र आनी चाहिए, इससे भी आपकी जो हाइट है थोड़ी सी लंबी लगती है, तो इससे स्मार्ट लुक भी लगता है। और कलर्स अगर आपका डार्क थोड़ा सा फेस है तो आप थोड़े से लाइटर कलर पे जाइए जिससे जो कपड़े की जो लाइट है वो आपके चेहरे पे पड़ती है, तो एक तो स्मार्ट लगता है, ब्यूटीफुल लुक आता है। और कलर कैसा भी हो आपके स्किन का हमेशा पर्सनालिटी मैटर करती है। आप अगर आप चलने का आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया है

0: तो फिर और क्या चाहिए। तो बस थोड़ी सी छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: तुषार कपूर की आवाज में।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Alala ki zoli zoli, ou pa konnen ki zoli zoli. Alala ki zoli zoli, oui King Savers ki zoli.
3: Uniquement chez King Savers, du 24 juillet au 24 août, les 24 rouleaux de papier blancheur sont à 279,80 roupies. La lessive liquide blancheur de 3 litres est à 149,80 roupies.
2: Alala ki zoli zoli, oui King Savers ki zoli zoli. Cadeau King Savers ki zoli zoli.
0: Timeless
1: Tadka RM2
4: 10:30 हो चुके हैं दोस्तों, तो तैयार हो जाइए क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार गेम। चलिए भाई तैयार हो जाइए, आज आपके पास है एक मौका जीतने का 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया का 1 फूड कूपन, यानी कि उसे हम बोल सकते हैं शाही थाली, और पूरे परिवार के लिए पहुँचने के लिए 12 से 16 अगस्त आपको जाना है SVICC पाई, जहाँ आपका इंतजार कर रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC।

वहां मिलेगा आपको इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शो इंडियन आइडल से जुड़े हुए गायक आ रहे हैं प्रणय जैन और लाइव परफॉर्मेंस देंगे बॉलीवुड के कोरियोग्राफर धर्मेश सर की स्पेशल अपीयरेंस कानमा शो ब्लड डोनेशन कैंप और स्वाद से भरपूर फेस्टिवल होगा जहां पर आपको कुछ और ज़्यादा नहीं करना है घर पे जो बना है बस उसको खा के आ जाना है और वहां पे पूरे दिन इंजॉय करना है और आपको अगर कोई हमारे बुज़ुर्ग हैं तो बस आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है आप वहां पे इंजॉय कीजिए रेस्ट कीजिए खाइए पिए यही टाइम होता है। तो चलिए भाई गेम जो है हमारी शुरू होती है द गेम इज़ पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। आज का आसान सा सवाल है आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे अपने पते के साथ यानी कि अपने एड्रेस के साथ नाम के साथ टेलीफोन नंबर के साथ में ही भेजना है क्योंकि एक्साइटमेंट में फटाफट से क्वेश्चन का आंसर तो दे देते हैं बट पूरी डिटेल्स देना भूल जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल किस समय शुरू हो रहा है। उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल किस समय से शुरू हो रहा है। ए सुबह 8 बजे से, बी सुबह 10 बजे से, सी दोपहर 12 बजे से। ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड ये गेम है तो आपको ये गाने के बाद आपको बताना है कि ये कितने बजे शुरू हो रहा है। एंजॉय कीजिए अपना शो।

0: वी आर लाइव फ्रॉम ब्लू बे बीच अरेना, जहां पर टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल की तरफ से आयोजित किया गया है स्पोर्ट्स एंड फन डे। कितना मजा आ रहा है, कोई बैठे बैठे, कोई खड़े खड़े। और यहां पर वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड, आप है मिसेज प्रतिमा रामकरण। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको।
1: गुड मॉर्निंग नीतिशा।
0: जितना मजा हमको आ रहा है आपको भी आ रहा है?
1: हाँ, बहुत मजा आ रहा है।
0: डेफिनेटली आपको आएगा क्योंकि आप लोगों ने तो ऑर्गेनाइज किया है। सो टेल मी अबाउट दिस स्पोर्ट्स एंड फन डे।
1: टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड 2002 में स्थापित हुआ था
0: जी,
1: और 2005 में हमने शुरुआत की चार कर्मचारियों के साथ
0: जी। अच्छा,
1: तो आज हमारे पास मॉरिशस में 13 कर्मचारी हैं और रोड्रिग में एक। तो आज हमने अपने मेंबर्स के लिए जो मॉरिशस के टूरिज्म सेक्टर से हैं, तो उनके लिए हमने और उनके परिवार के लिए एक TWF स्पोर्ट्स एंड फन डे ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारे कर्मचारी जो यहाँ सुबह सुबह से हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर और एयर बैडमिंटन में
0: जी।
1: और उनके बच्चों के लिए हमने दो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किया है, जो है सक रेस और फन फिशिंग। तो इन सब गेम के साथ पुरस्कार भी हैं, यानी कि ट्रॉफीज, कैश प्राइज, और बच्चों के लिए भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। इवन पार्टिसिपेशन और फर्स्ट और विनर के लिए दूसरा पुरस्कार। तो लगभग 3 बजे हमारा प्रोग्राम एक टग ऑफ वॉर के साथ
0: समाप्त
1: होगा,
0: प्राइज गिविंग सेरेमनी।
1: एग्जैक्टली।
0: ऑलराइट, टेल मी प्रतिमा जी,

0: जैसे कि आपने कहा 2002 से यहाँ पर शुरू हुआ, तो हर साल आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर कैसे?
1: हर साल नहीं, नॉर्मली हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन डिफरेंट होटल्स में और अच्छा। फाइनल होता है, जो होटल ने फाइनल तक आए उसके लिए। अभी तो ये एक रियूनियन है
0: जी,
1: काफ़ी सालों के बाद ये हुआ है और हम आशा करते हैं कि गट्स
0: नेक्स्ट ईयर
1: भी ऑर्गेनाइज हो पाएगा ऐसा एक्टिविटीज, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है पोर्टलिस में है
0: जी,
1: और अभी तो हम साउथ में आए हैं, नेक्स्ट टाइम मे बी ईस्ट
0: और वेस्ट।
1: यस, वी आर ट्राइंग टू गो ए बिट अराउंड मॉरिशस फॉर आवर मेंबर्स। सो
0: ये सही बात कही है आपने कि ये जो टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड है इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल, यानी कि आप लोग अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में, ना सिर्फ काम काम तो लगता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो फन मोमेंट होती है, ये जो प्लेजर है बच्चों के साथ, फैमिलीज, दोस्तों के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक हेल्दी वर्क प्लेस के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड बोन कुराज एंड कीप गोइंग, ऐसे ही आप लोग ऑर्गेनाइज करते रहे एंड सबको खुश करते रहे।
1: Thank you
0: so much.
1: Thank you, Nitisha, and thank you to your team.
0: Thank you so much. So we are live from Blue Bay Beach Arena, जहाँ पर Tourism Employees Welfare Fund in collaboration with the Mauritius Recreational Council एक स्पोर्ट्स एंड फन डे आयोजित किया गया है। सो आंखों देखा हाल, अभी भी छाता हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कड़ी धूप है भाई, और हमको बड़ा मजा आ रहा है। लाइक हम भी एक फैमिली की तरह बन गए हैं, यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं विद दिस पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जितने भी यहाँ पर यंगस्टर्स हम देख रहे हैं। हमेशा कहते हैं जो यंगस्टर्स हैं आजकल भटक रहे हैं, इट्स बेटर कि ये लोग यहाँ पर आए, फैमिलीज, दोस्तों के साथ आए, थोड़ी सी मस्ती करें, गेम्स हो जाए, प्ले करें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्ले, मूव एंड एंजॉय, तभी लाइफ को आप एंजॉय कर पाएंगे। सो वंस अगेन बीच सॉकर है, बीच वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड लास्ट में होगा टग ऑफ वॉर। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो पता नहीं, गिफ्ट सबको मिलेंगे, लेकिन आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड वी आर लाइव फ्रॉम ब्लू बे बीच अरेना विद रेडियो मस्ती टीम।
2: Radio Musti.
3: RM2.
4: Radio Musti.
5: Alala ki zoli zoli, upa kone ki zoli zoli. Alala ki zoli zoli, we King Sever's ki zoli.
3: Uniquement chez King Sever's, du 24 juillet au 24 août, les 24 rouleaux de papier blancheur sont à 279,80 roupies. La lessive liquide blancheur de 3 litres est à 149,80 roupies.
5: Alala ki zoli zoli, we King Sever's ki zoli zoli. Kado King Sever's ki zoli zoli.
2: RM2
4: Radio Musti.
2: Timeless Tadka.
4: RM2
6: 10:47 हो चुके हैं और हमने आपके साथ गेम खेली थी। द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड, और ये क्या कहते हैं, जो बहुत ही लोगों के सवालों के जो जवाब आपने दिए, क्या बात है, मतलब पूरी स्क्रीन हिल रही थी, मुझे लग रहा था कि क्या करूं, किसको चुनूं, पर कोई बात नहीं, आपके एक को तो चुनना ही पड़ता है ना। तो दोस्तों आपने हमारे साथ खेला था RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड की तरफ से मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार गेम। आज आपके पास था मौका जीतने का 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया का 1 फूड कूपन, जिसके अंदर थी शाही थाली, और पूरे परिवार के साथ आप पहुंच सकते हैं 12 से 16 अगस्त SVICC पाए, जहां आपका इंतजार होगा उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। वहां पर आपको मिलेगा इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, इंडियन आइडल से जुड़े हुए गायक जो है हमारे प्रणय जैन जो आएंगे लाइव परफॉर्मेंस देने, बॉलीवुड कोरियोग्राफ धर्मेश सर की स्पेशल अपीयरेंस रहेगी, कानमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप और स्वाद से भरपूर जो फेस्टिवल है, बस होने वाला है मजेदार। तो भाई क्या कह सकते हैं, जो टाइम है ये है विनर का। तो हम आपके लिए जो हमने आपके साथ गेम खेली थी बहुत ही प्यारी और छोटी सी थी, हमने आपसे पूछा था आज का जो आसान सवाल था, उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल किस समय शुरू होगा, हमने पूछा था ए सुबह 8 बजे, बी सुबह 10 बजे, सी दोपहर 12 बजे। तो ये गेम जो थी हमारे साथ खेली, हमने जो खेली थी पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड और ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड की तरफ से थी, और आंसर भी बहुत ही प्यारा मिल गया, हमें विनर भी मिल गया, और

विनर तो हम बताएंगे, पहले तो आंसर दे दें भाई, हाँ जी हाँ जी ये है, विनर के साथ ही बताते हैं। चलो आंसर था सुबह 10 बजे, यस। और ये जीता है हमारी प्यारी सी दीप्ति रामसरन, जो कि बना कैसे हैं, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, आपने जीता है प्यारा सा 4 entry tickets और 1 शाही थाली, 1 coupon food का। और हम तो यही बस आपको बोलेंगे एंजॉय कीजिए, हमारी तरफ से कॉल आएगा आपको और खेलते रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। RM2 रेडियो मस्ती 24 hours आपके साथ है और आपने बिल्कुल मतलब हर चीज़ परफेक्ट बताई थी, तो इसलिए आपको हम बस इतना ही कहेंगे, जुड़े रहिए RM2 के साथ में और रेडियो मस्ती आपके साथ हमेशा है।

0: बस ये जो घंटा कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, इतना फन इतना मजा आ रहा है। बस हम लोग खेल तो नहीं रहे खेल, लेकिन देखते ही देखते आंखों को सेक रहे यहाँ पर, कितना मजा आ रहा है। गर्ल्स हो, बॉयज हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सबको, क्योंकि इट्स अ फैमिली एंड यस आई कैन से इट फैमिली फन डे, स्पोर्ट्स डे, वेयर यू कैन लव, वेयर यू कैन प्ले, वेयर यू कैन मूव एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पर अपने स्ट्रेस को भुलाकर, बस एक दिन के लिए भाई स्ट्रेस को भुलाकर आप लोग मस्ती कीजिएगा दिल खोल के, जैसे कहते हैं। सो वी आर लाइव अगेन फ्रॉम ब्लू बे बीच अरेना। अगर आप सोच रहे ये है कहाँ भाई, तो अगर आप ब्लू बे बीच को पता है ना, ये जो है बस बिल्कुल बाजू में ही है, जहाँ पर आप देखोगे बालू बालू जो है, रेत जो है, यहाँ पर ही हो रहा है ये जो ब्लू बे बीच अरेना है। एंड बीच सॉकर हो, बीच वॉलीबॉल, एयर बैडमिंटन, ना धूप ना बारिश, किसी चीज की ये टेंशन है नहीं, क्योंकि जब मस्ती की बात आती है, जब फन की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तो यहाँ पर दिल खोल के खेले जा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कंपटीशन, बट इट्स ओनली अबाउट पार्टिसिपेटिंग एंड हैविंग फन। एंड वंस अगेन इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। एंड लगभग 500 लोग यहाँ पर मैंने सुना है अभी टाइम है, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, और भी लोग आते रहेंगे। सो बच्चों के लिए स्पेशली एक किड्स कोना है, जहां पर उनके लिए एक्टिविटीज जो है यानी कि आयोजित किए गए हैं। सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप अपने बच्चों को लेकर आए, और टग ऑफ वॉर होगा। सो बस आप पार्टिसिपेट करो, और बच्चों को पार्टिसिपेट कराने का मौका दो, और वो लोग भी, क्योंकि अभी छुट्टी का मौका है, तो वो लोग भी एंजॉय करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किड्स के साथ, बाकी किड्स के साथ, तभी तो सोशलाइज कर पाएंगे। सो इट्स बहाना, जैसे कहते हैं, यहाँ पर लोगों से मिलने का, और ये जो रिश्ता है और मजबूत कराने का स्पोर्ट्स के जरिए, टूरिज्म के जरिए, म्यूजिक के जरिए, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक तो हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। सो स्टे वेल ट्यून, दिन के 12 बजे तक रेडियो मस्ती आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर घूमने आ रही है, मेक इट अ मस्ट कि आप ब्लू बे बीच आकर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं विद आवर टीम एंड विद द होल मॉरिशन फैमिली।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। सिडनी पियर को कल रात पर्यटन जूनियर मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पियर ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था। जॉन सिडनी पियर की रिवोकेशन को स्टेट हाउस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि टारगेटिंग का उद्देश्य सबसे कमजोर लोगों को अधिक सहायता देना था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। वैसे कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राज्यसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए। इन दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है। इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में सुधार किए गए और राज्यसभा के कार्य अब मंगलवार 4 अगस्त दिन के 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस शनिवार अपनी पहली वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस मिडल सेक्स यूनिवर्सिटी मॉरिशस के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही है। इस दौरान बिजनेस की दुनिया में ह्यूमन राइट्स और अतीत में हुए अन्याय के लिए न्याय और उचित मुआवजे पर चर्चा होगी। ये चर्चा हाल ही में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पारित उस रेजोल्यूशन के संदर्भ में होगी जिसमें ट्रांस अटलांटिक अफ्रीकी लोगों की ट्रैफिकिंग को मानवता के खिलाफ अपराध माना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने 2 मेडल्स जीते हैं। नोमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया जबकि मेवन क्लेयर ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और आज मॉरिशस समय अनुसार रात के 10:28 पर नोमी अल्फोंस और ब्रांडी पेरिन 400 मीटर की रेस में भाग लेंगी। विदेश में जापान में कुदरत का कहर थम नहीं रहा है। आज उत्तरी जापान में आओमोरी प्रांत के पास 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और जापान मौसम विज्ञान के अनुसार ये भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:48 पर आओमोरी के प्रशांत तट से लगभग 80 किलोमीटर की गहराई में आया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। इंटरनेशनल स्ट्रीट ऑफ जोंपा में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुर्पत्या दुबोरी जो दुर्पत्या नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके बेटे श्री सुनील जेतू के घर इंटरनेशनल स्ट्रीट ऑफ जोंपा से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट इलास्को की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। फैब्रिक लेन मोदालबिया में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री नरदेव गुदुरी जो सुरेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे

0: कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री वीरेन गुदोही के घर फैब्रिकलिन मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 एएम मोंसलमान वीओ एस प्लेन मान्यों में मोंसलमान वीओ एस प्लेन मान्यों में 75 साल के 75 इयर्स ओल्ड के श्री विट्टल कुमार टूटा श्री विट्टल कुमार टूटा जो विट्टल नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर मोंसलमान वीओ एस प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टूडे एट 3 पीएम शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: आप लोग शांति की बात करें, इधर तो बिल्कुल शांति नहीं, इधर तो इतना शोर है, माय गॉड। यस, टूरिज्म एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड एंड मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल की ओर से एक स्पोर्ट्स एंड फंड का आयोजन किया गया है एट द ब्लू बे बीच अरेना। एंड यहां पर जो जोश है वो बढ़ता चला जा रहा है, जस्ट टेल यू की करी धूप भी बढ़ती चली जा रही है, नियरली 11:10 होने वाले हैं, लेकिन जोश यहाँ पर कम बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि इट्स फन डे विद फैमिलीज फ्रेंड्स एंड बच्चों के साथ। सो हर पल हम लोग हर रोज काम करते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इस टूरिज्म एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड में रोज तो काम ही करते हैं, एक दिन इनको मौका मिला है, ऑलमोस्ट 500 पीपल, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं एंड इन लोगों को देखकर इतना मजा आ रहा है, काश हम भी उतर जाते हैं मैदान जंग में और इनके साथ फन किया जाए, क्योंकि कहीं पे बीच सॉकर, कहीं पे बीच वॉलीबॉल, कहीं पे एयर बैडमिंटन, यहाँ पर टीम के साथ जो है सिंगल डबल ये सब होता चला जा रहा है, बस सबके चेहरे पर जो सुकून मिल रहा है, सैटिस्फैक्शन जैसे कहते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड एंड मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल। यही तो है मकसद कि ये लोग अपने दिन के थोड़े से पल जो है एक साथ, यस एक साथ जो बहाना इनको मिल रहा है वे लोग सेलिब्रेट कर सके अपनों के साथ, और ये जो मौका है हर साल इनको मिलता है, आज हम हैं आज टब्लू बे बीच अरेना, नेक्स्ट ईयर कहीं और होंगे, नेक्स्ट ईयर कहीं और होंगे, और ऐसा करते करते ये जो रिश्ता होता है काम में, जितने भी कॉलीग्स होते हैं इनको और मजबूत बना सकते हैं, हेल्दी वर्क प्लेस करते हैं, तो हेल्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए ये जो फंडे है बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस वो भी कम हो जाए, दूर हो जाए, एंड दे कैन हैव मेमोरेबल जो पल है वो लोग जिंदगी भर इनको याद कर सके। सो बच्चे लोग यहाँ पर एक्टिविटीज आपके लिए भी है, सो जितने भी बड़े हैं मॉम डैड हैं आपसे मांग करेंगे बच्चों को लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए एक्टिविटीज है, गेम्स है, गिफ्ट्स है, कादो है, सब कुछ है यहाँ पर इनके लिए, इनको पैम्पर करने के लिए। सो जगह एक बार फिर आपको बता देते हैं, जो वेन्यू है ब्लू बे बीच अरेना, एंड हमारी टीम रहेगी 12 बजे तक रेडियो मस्ती, उसके बाद RM1 टीम आ जाएंगी, लेकिन 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक पर आप लोग आ सकते हैं, हैव फन, एंजॉय, एंड ऑफ कोर्स यू कैन प्ले वेयर यू कैन मूव एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Alala ki zoli zoli, ou pa konnen ki zoli zoli. Alala ki zoli zoli, pri King Savers ki zoli.
3: Uniquement chez King Savers, du 24 juillet au 24 août, les 24 rouleaux de papier blancheur sont à 279,80 roupies. La lessive liquide blancheur de 3 litres est à 149,80 roupies.
2: Alala ki zoli zoli, pri King Savers ki zoli zoli. Kado King Savers ki zoli zoli.
4: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio

0: RM2
1: Radio Musti.
2: भाई हम तो प्यारी कर रहे हैं इन गेम्स के साथ, इन गीतों के साथ. यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, वी आर स्टिल लाइव फ्रॉम ब्लू बे बीच अरेना, जहाँ पर टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया है सुबह से, यानी कि लगभग 9:15 से जो प्ले मूव एंड एन्जॉय, यानी कि आई मीन स्पोर्ट्स एंड फन डे, एंड इट्स गोइंग टू एंड लगभग 3 बजे तो और भी गेम्स होंगे, प्राइज गिविंग सेरेमनी एंड टग ऑफ वॉर. लेकिन अभी बच्चों के लिए स्पेशली जो एक्टिविटीज़

है फिशिंग। कौन सी फिशिंग भाई? वो इंटरनेट वाली फिशिंग नहीं, लेकिन हाँ बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज है, यानी कि कुछ तो होगा, उनको फिश करना पड़ेगा, लैंग्वेज जैसे कहते हैं, उनको दिया जाएगा आमसो दिया जाएगा और वे लोग फिश करेंगे कुछ ना कुछ। और जब फिशिंग के बाद उनको गिफ्ट्स मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी उनको और पेरेंट्स को भी कितनी खुशी होगी। तो मैं मांग करूंगी जितने भी पेरेंट्स अभी हैं इधर, अपने बच्चों को गादा कीजिएगा और बस थोड़ी देर में जो एक्टिविटी है फिशिंग एक्टिविटी वो शुरू होगी। एंड यहाँ पर मस्ती जो है जारी है, जोश जो है एकदम बरोबर है। एंड बीच सोका कहीं पर बीच वोले एयर बैडमिंटन एंड टग ऑफ वॉर वो होगा लगभग 3 बजे। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हमने टूरिस्ट भी देखे हुए हैं, क्योंकि इट्स अ टूरिस्टिक प्लेस, लोग आते जाते रहते हैं क्या हो रहा है, और लोग आ रहे हैं देख रहे हैं बिना यानी कि फिक्र किए हुए कि भाई इतनी कड़ी धूप है, हम भी भाग रहे हैं धूप से कभी इधर कभी उधर। लेकिन बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमने कहा ना कि ये जो बहाना होता है शायद बार बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तो इसका फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए। सो खाना पीना ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन जो फन है, जो मस्ती है, जो टुगेदरनेस है, ये जो एक साथ पूरे परिवार लाइक है वी कैन से टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एंड दे आर हैविंग सो मच ऑफ गुड टाइम्स, गुड वाइब्स, कोजी टाइम, और खेल रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई वहाँ पर कूद रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है अपनी टीम को। यही तो है मकसद इस फन एंड स्पोर्ट्स डे का। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोग प्ले कर रहे हैं उनके साथ हम सब, शायद आप घर पर होंगे बैठ रहे होंगे, लेकिन यू कैन रिलेट टू दिस पीपल जो यहाँ पर खेल रहे हैं। क्या पता शायद आप अपने घर में हैं, आपके बच्चे यहाँ पर हैं जो काम करते हैं टूरिज्म सेक्टर में। तो हैव फन एंड इस पल को खूबसूरत बनाते हुए इसको और यादगार बनाते हैं विद रेडियो मास्टर टीम।

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Well, thank you so much once again हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. Of course, to Radio Musti team and specially those जो यहाँ पर आ रही है, हमको सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं, Blue Baby Arena and of course यहाँ पर Tourism Employees Welfare Fund and Mauritius Recreational Council के collaboration में आयोजित किया गया है एक Sports and Fun Day. बस हम लोग भी देख रहे हैं, we have a good time. Avi है, Dominic है, अमर है, साथ में रोशन है, हमारी पूरी टीम है यहाँ पर और हम लोग जुड़े हुए हैं. बस थोड़ी देर में ये हमारा जो आपका साथ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाद में 12 बजे से यानी कि RM1 टीम आपके साथ रहेंगे. लेकिन अगर आप लोग इधर उधर आस पड़ोस रहते हैं, कोई काम नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगी काम नहीं है, इस सैटरडे मॉर्निंग को अभी थोड़ी देर में आफ्टरनून ही हो जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि इसको और मज़ेदार फन बनाया जाए तो फैमिलीज दोस्तों के साथ आप तो निकलते ही हैं, तो व्हाई नॉट यहाँ पर आ जाएगा भर आप ब्लू बे बीच अरेना एंड यू कैन हैव फन. एंड लाइक आई सेड, थोड़ी देर में जो फिशिंग गेम होने वाला है ये बच्चों के लिए है, उनको आमसों दिया जाएगा. ये बहुत ही नेचुरल है, ओरिजिनल है और इनको कहेंगे कि भाई कुछ तो फिश करो और इन सबको दिए जाएंगे गिफ्ट्स एंड जली जली काडो जैसे कहते हैं. सो व्हाई नॉट इस खूबसूरत पल को और आप यादगार बनाते चलो, हमेशा याद रहोगे कि यस इस सैटरडे को फर्स्ट

0: फर्स्ट ऑफ अगस्त है, ओहो ऑलरेडी देखिए आठवां महीना चल रहा है एंड यहाँ पर जो है इस खूबसूरत महीने की शुरुआत आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं विद स्पोर्ट्स एंड फन डे विद योर डियर वंस। तो चलिए और भी म्यूजिक के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे एंड थोड़ी देर में बच्चों के लिए फिशिंग गेम होंगे एंड ऑफ भी है बीच सॉकर, ये लगातार चल रहा है बीच वॉलीबॉल, साथ में एयर बैडमिंटन एंड लगभग 3 बजे होगा टग ऑफ वॉर।
1: प्ले करो स्माइल करो बॉलीवुड के साथ चल करो दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्त।

0: RM2
1: Radio Masti.
2: हम भी तो ये कह रहे भाई, दिलदार मिला दे, दोस्तों से मिला दे, अपनों से मिला दे, उसके लिए आपको आना पड़ेगा एट ब्लू बे बीच अरेना फॉर द स्पोर्ट्स एंड फंड ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल। बस धूप बढ़ती जा रही है, एकदम कड़ी होती चली जा रही है, लेकिन जो जोश है, वो जो हिम्मत है, वो टूट नहीं रही है। कड़ी धूप में बस सब पसीने पसीने, हाय हाय गर्मी हो रही है, लेकिन कितना मजा आ रहा है लोगों को देखकर, बच्चे हो बड़े हो। अभी हम बाहर चलकर, अभी तो बाहर ही है, लेकिन थोड़े दूर चलकर गए तो बच्चे हो बड़े हो सब खेल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फिशिंग। हमने देखा एक बॉटल है और उनके हाथ में जैसे आमसों जैसे कहते हैं ना, तो उनको फिश करना पड़ रहा है, जो बुशों हैं, जो कैप्सूल है वगैरह, ये सब कर रहे हैं। तो बस ये जो फन है, पहले के जो गेम्स हुआ करते थे, आज भी वापस आ रहे हैं और सब मिलजुल कर खेल रहे हैं। दैट्स द फन। बच्चे लोग अपने पेरेंट्स के साथ, पापा बेटे को या फिर बेटी को एनकरेज कर रहे हैं। ये तो है बात अबाउट दिस स्पोर्ट्स एंड फन डे बाय टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एंड मॉरिशस रिक्रिएशनल काउंसिल। तो बस आप लोग भी आ जाएगा, और भी गेम्स है, आई एम टोल्ड कि और भी गेम्स है। अभी है फिशिंग गेम, बाद में और भी गेम होंगे, रेस आई थिंक होगा, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो खेलेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और मज़ा तो सबको आ रहा है, स्पेशली जो लोग बीच सोका हो या फिर बीच वॉलीबॉल या बैडमिंटन या फिर बाद में ठगा हुआ होगा, ये तो और भी मज़ेदार होगा। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लेकिन जीत सबकी होगी क्योंकि सब पार्टिसिपेट कर रही है। ये नहीं कि इस टीम को, यानी कि जितने भी सेक्टर्स हैं टूरिज्म से जुड़े, होटल सेक्टर्स, जितने भी ऑपरेटर्स, जो भी लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सब इधर है, मोस्टली लाइक 500 पीपल, और यहाँ पर सबको बड़ा मजा आ रहा है। एक टीम, ये जो टीम है, दूसरी टीम को एनकरेज कर रही है, दूसरी टीम इस टीम को एनकरेज कर रही है, पता भी नहीं चला, क्योंकि इट्स अ फैमिली डे, इट्स अ फन डे, इट्स अ स्पोर्ट्स डे। तो यहाँ पर हमारे जाने का टाइम थोड़ी देर में होंगे, बस आप म्यूजिक को एंजॉय करते रहें, वापस आएंगे चलने के लिए।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: चाची साकवा मोविन को तू गए बों पफ एंजुरी बिरयानी पुलाव की सा बों जिरी ला सा।
2: अरे बेटी मोपे सेवी जिरी इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस सेट एंजुरी 11-21 एक्स्ट्रा लॉन्ग की पा कासे सुरनमेंट एक्स्ट्रा बों ली एन नेचुरली एज्ड राइस पा बिजे दिया तो सो पफ एला डेपी दान बूट चमे जी मोन विन देमान मोआ की जिरी सा बेटी वो ला पेन टोल रोड ली सा इंडिया गेट एक्सेल बासमती राइस।
1: Merci Chachi. Moi aussi ma pou servi. Jure India Gate Excel Basmati Rice.
0: RM2 Radio Musti.

0: cote uniquement. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
1: On est tous winners.
2: एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड के जितने भी स्टाफ है यहाँ पर, थैंक यू सो मच. एंड बड़ा साथ मिला आपका भी. एंड इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशियस रिक्रिएशनल काउंसिल फॉर द स्पोर्ट्स एंड फन डे आयोजित किया गया है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑल द मेंबर्स टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड के. और सुबह से कहते आ रहे हैं यहाँ पर एक ही अरेना में यहाँ पर गेम्स हो रहे, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, एयर बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर होगा बाद में. अभी फिशिंग चल रही है बच्चों की, बड़ों की. एंड बस बड़ा मज़ा आया. रियली होप कि आप और भी आएंगे यहाँ पर और बच्चों के लिए गेम्स भी होंगे. पार्टिसिपेट कीजिए. हार जीत तो होती रहती है लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे एंड इस मेमोरेबल स्पेशल मोमेंट को और खास बनाने की कोशिश करेंगे. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टाफ ऑफ टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एंड मॉरिशियस रिक्रिएशनल काउंसिल. बस हमारे जाने का टाइम आ गया है. थैंक यू सो मच अवि, थैंक यू डोमिनिक, थैंक यू अमर एंड रोशन. हमारे जितने भी स्टाफ है अविनाश को भी थैंक यू सो मच. पूनम एंड प्यारी से मनीषमा, थैंक यू टू यू टू माय डियर. सो बैक टू यू मोका एंड वापस मिलेंगे वेरी सून. टेक केयर, स्टे सेफ. Such

0: South
1: 103.5,
0: East West
1: 96.4,
0: Center
1: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check din ke 12 baje hai. आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ थी ना. नमस्कार आपको.
5: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. कापमालो में आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई. 20 साल की एक युवती की मौत हो गई जिसे कथित रूप से उसके प्रेमी की गाड़ी ने टक्कर मारी. पुलिस ने युवती को उसकी मोटरसाइकिल के पास घायल हालत में पाया. उसे तुरंत एसएसओ हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी. इलाके के सेफ सिटी कैमरों की जांच में कथित तौर पर दिखाई दिया कि एक कार युवती की मोटरसाइकिल का पीछा कर रही थी. जिस वाहन से टक्कर होने का संदेह है उसे कापमालो के एनएचडीसी पावियों इलाके में छोड़ी हुई हालत में बरामद किया गया. मृतका के 22 वर्षीय प्रेमी लुई डामियन अलेक्सांड को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. उसने जांच अधिकारियों को बताया कि वो वाहन चला रहा था और अपनी प्रेमिका का पीछा कर रहा था. उसका अल्कोहल टेस्ट निगेटिव आया लेकिन ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया. दूसरी खबर में जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक ले गोविन के पति गुलशन गोविंद को रेनियन में लगभग 100 किलो जमाज जब्ती मामले की जांच के सिलसिले में कल गिरफ्तार किया गया. उसे आज शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किया जा रहा है. इस बड़े घटनाक्रम से इस मामले को राजनीतिक और न्यायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ मिल गया है. अब सांसद के पति से पुलिस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है. इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस में विश्वास रखते हैं. फिलहाल जूनियर मिनिस्टर के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है. उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इस मामले में कोई भी कवर अप नहीं होगा. और कल रात 10 बजे के कुछ देर बाद राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल संशोधनों के साथ पारित कर दिए गए. दोनों विधेयकों के जरिए 19 जून को पेश किए गए बजट 2026-2027 की घोषणाओं को कानूनी रूप दिया गया है. इस दौरान नेशनल पेंशन एक्ट सहित 80 से अधिक कानूनों में सुधार किए गए हैं. पेंशन रिफॉर्म से जुड़े संशोधनों पर सदन में तीखी बहस हुई. विपक्ष नेता जो लेजोंगा ने वोट बाय डिवीजन की मांग की और पार्टियां पर्यटन जूनियर मिनिस्टर सिडनी पियर सरकार के एकमात्र सदस्य रहे जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया. वहीं विपक्ष के 5 सांसदों ने भी इसके खिलाफ वोट दिया. राष्ट्रसभा के कार्य मंगलवार 4 अगस्त को दिन के 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. सिडनी पियर को कल रात पर्यटन जूनियर मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया. ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पियर ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था. शॉन सिडनी पियर की रिवोकेशन को स्टेट हाउस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित किया गया. फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन के टारगेटिंग को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपये की व्यवस्था करनी होगी. कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने 2 मेडल्स जीते हैं. नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया जबकि मेवन क्लेयर ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता. और आज मॉरिशस समय अनुसार रात के 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और रांडी पेरी ने 400 मीटर की रेस में भाग लेंगी. विदेश में शांति योजना के द्वितीय चरण को लागू करने के लिए पिछले कई दिनों से मिस्र की राजधानी काहिरा में मध्यस्थों और हमास प्रतिनिधियों के बीच वार्ता चल रही थी. वार्ता के बीच गाजा पर इजरायल के हमलों में 2 बच्चों समेत 6 लोग मारे गए हैं. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
6: Body Brunch RM2 Radio Mike.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: कुछ नए गाने, कुछ पुराने गाने और कुछ रिमेक गाने आपके लिए. पन्ना की तमन्ना 2.0 वर्जन फॉर यू. 12:18 है बन्ना पे जी. वैसे ड्राइव भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, देरी हो गई खाने के लिए. अब

0: Family Brunch RM2 Radio Masti.
1: चलिए जोर मूवी से लिया गया ये गाना जस्ट टू कंटिन्यू इन व्हाटएवर यू डूइंग राइट नाउ. चलिए बताइए हमें ऐसा कौन सा प्लान है सैटरडे 1st of August 2026 को. 12:24 हुए हैं. चलिए अपने घर के काम के साथ साथ साथ निभाते रहिएगा हमारा RM2 रेडियो मस्ती का साथ.

0: गुड लिल बट हाउडी शाड़ी तेरी स्पेशल फॉर दी आज जो की ड्राइव भी कर रही है अपने शॉपिंग के लिए जा रही है इंडीड टू योर अलबर्ट विश कर 32 मिनट छह भी गए मैं अलबली
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: मिल गया कुछ कुछ होता है मूवीज ले आ गया ये गाना आपके वीकेंड मोड को ऑन करने के लिए, घर पर फैमिली के साथ हो, शॉपिंग के लिए निकले हो या फिर दोस्तों के साथ बस सिंपल ड्राइव के लिए एंजॉय कर रहे हो हमारे सॉन्ग सिलेक्शंस को, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अगला गाना आपके दिल कुछ हो ही लेगा, वैसे एक ये गाना स्पेशली गुजरात टू दीप शिखा जो कि हमारे साथ दे रहे हैं तक्षक मूवी से आशा भोसले की आवाज में, रंग दे फॉर यू राइट अवे राइट नाउ।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time Che, it's 1 p.m. संक्षिप्त समाचार के साथ उपस्थित है स्टूडियो में गीता जी. नमस्कार आपको.
4: नमस्कार मनीष मां, सभी को हमारा नमस्कार.

0: काप मालेरू में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 20 साल की एक युवती की मौत हो गई, जिसे कथित रूप से उसके प्रेमी की गाड़ी ने टक्कर मारी। पुलिस ने युवती को उसकी मोटरसाइकिल के पास घायल हालत में पाया। उसे तुरंत SSON अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। युवती के 22 वर्षीय प्रेमी लुई डामिया अलेक्जेंड्रो को बाद में गिरफ्तार किया गया। उसने जांच अधिकारियों को बताया कि वो गाड़ी चला रहा था और अपनी प्रेमिका का पीछा कर रहा था। उसका अल्को टेस्ट निगेटिव आया, लेकिन ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। जूनियर मिनिस्टर और सांसद वेरोनिक ले गोविंद के पति गुलशन गोविंद को रीयूनियन में लगभग 100 किलो गांजा जब्ती मामले की जांच के सिलसिले में कल गिरफ्तार किया गया। उसे आज वीकेंड अदालत में पेश किया जा रहा है। सिडनी पियर को कल रात जूनियर पर्यटन मंत्री के पद से हटा दिया गया। ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया क्योंकि नेशनल पेंशन एक्ट में सुधार के मुद्दे पर फाइनेंस बिल की चर्चा के दौरान सांसद सिडनी पियर ने सरकार की नीति के खिलाफ जाकर सुधार के विरुद्ध वोट किया था। फाइनेंस बिल पर बहस के समापन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन को हटाने से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 6.2 बिलियन रुपए की व्यवस्था करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इस कमी को पूरा करने के लिए अन्य उपाय लागू करने होंगे। और विदेशी खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल वाली शांति योजना के अनुसार हमास कुछ शर्तों के साथ हथियार डालने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसराइल ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: चूड़िया फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी से लिया गया ये गाना है इन द वॉइसेस ऑफ सोनू निगम एंड अजीज को। आशा करती हूँ कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं आप हफ्ते और नून को। जी हाँ, 1:11 हुए हैं, इट्स हार्ड टू रेडियो मस्ती, थोड़ा सा नाचे गाइए और आपके जो दिन में और भी खूबसूरती लाने के लिए और भी वाइब्स लाने के लिए हम तो है ही मनीष मैम के साथ टिल 2 PM।
1: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: OKG out of 549-9124 but itne sare messages aa rahe hain. Good afternoon, lovely sister Manish Ma, kaise ho aap? Say I'm Lalita Jeetan, enjoying your program. Society on se laare, kya baat hai? Baba program to program hota hai aapke liye, full volume ke saath. All my friends Reena hai saath mein, Leena, Reena, Seema, Pinky, Lavina, Priya, Lalita and Jeetan parivar aur aap pahunche ke liye bhi dedicate kijiyega agla gana. Okay ji, good afternoon lovely behna. Sham the bichin, enjoying your program at home with hot hot elaichi wali chai. Full volume radio masti ke saath hai. Amazing, aap enjoy kijiyega apne afternoon ko bhi. And aap thoda sa relax kijiyega, enjoy your afternoon, your Saturday, your weekend. Kuch log to aadha din bhi kaam karke wapas ghar चल पड़े हैं, तो आपको कहूंगी कि एंजॉय कीजिएगा अपने जो बचे कुछ टाइम है इन दी आफ्टरनून. जो समेटना है, जो कुछ भी समेटना, घर के काम है, पकाना है, घर पर कोई आ रहे हैं, तो दिल खोल कर आप अपने दिन को भी एंजॉय कीजिएगा. यहाँ पर हेलो अरविंद हलकुरी, कैसे आप जी? वंडरफुल आफ्टरनून गोज़ आउट टू ऑल दोस.
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, वैसे जो बीत गया सो बीत गया, वैसे पीछे देख कर क्या फायदा, अगर पीछे देख कर ही आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ेगा। पीछे अगर देखना है तो खूबसूरत यादों को याद करके देखिएगा, देखना कितने जैसे पीसफुल आप हैं, अपने आप को महसूस कर पाएंगे।
1: Bolly Branch, RM2, Radio Mastery.
0: 1:28 हुए हैं, we go for your messages. Hi, I'm Vishnu. Can you please dedicate the next song, Hey Shona, for my wife, Dheema. Birthday है आज उनकी, और dedication from me, Vishnu, and then the Vish. Happy birthday to you, my dear Dheema. Wish you all the very best in life. And also, यहाँ पर न सिर्फ आपका जन्मदिन है, यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी 28 साल की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं निर्मला और हस्बैंड रमेश, दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो वेल फ्रांस के रहने वाले हैं, आप सेलिब्रेट कीजिएगा हमेशा लंबी उम्र आपकी शादी के लिए। हेलो डिया, आई एम कामना अभी लिखिया बेजुक आपसे। अगला गाना मेरी मम्मी रीवीना, पापा विनोद है, भाई संदीप, भाभी विश्नियन और मेरे हैंडसम मिस्टर अखिलेश के लिए डेडिकेट करती हूँ मैं। ओके जी, तो आपके लिए ऑल दोज ट्यूनिंग टू आर एम टू रेडियो मस्ती, यहाँ पर हेलो जी, आई एम भावना हियर विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू खाला मधब, ऑल्सो नोन एज बेबी जो, जो 50 years के हुए हैं और दिखते भी है 16 साल की, क्या बात है। एवरग्रीन सॉन्ग हो जाए उसके लिए। ओके, मैं चुनती हूँ एक अच्छा सा गाना, उनके लिए भी डेडिकेट करेंगे भावना जी। वैसे ये जो अगर आप हमेशा दिमाग से जवान रहते हैं तो दिखना भी शुरू हो जाता है, यू नो। रेडियो मस्ती रॉक्स, क्या बात है, नरेन, श्वेता, रवेश, प्रशा, लवेश एंड आप द फैमिलीज ऑफ वैष्णो भी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो जी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर ऑल दोस ट्यूनिंग टू आवर टू रेडियो मस्ती। ओके जी, हे शोना सबसे पहले आपके लिए, और एक एवरग्रीन सॉन्ग आ रहा है आफ्टर Hey Shona.
1: Bolly Branch, RM2, Radio Masti.

0: एक्चुअली हे सुना स्पेशली फॉर कामना एंड मिस्टर अक्षय के लिए भी, साथ में मम्मी देवी ना, पापा विनोद भाई है, संदीप भाभी, विष्णी एंड टू ऑल परिवार ट्यूनिंग टू आर इनटू रेडियो मस्ती. हाय विश मिंता हियर एंड कोमल, 20 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर, स्टे ब्लेस्ड फ्रॉम कच मिलिटिया. वैसे आप एंजॉय कीजिएगा, साथ में बात ही रहेगा 5491294 पर योर मैसेजेस डेडिकेशंस. यहाँ पर आगे चाहिए द नेक्स्ट वन, बार बार देखो फॉर द एवरग्रीन हिट्स. हियर वी गो.
1: RM2 रेडियो मस्ती. Baby girl.

0: यादों के दरवाजे को खोल दिया हमने ना, वो चली फॉल दोज जो इस गाने को भी रिलेट कर पाते हैं अपनी जिंदगी के साथ. वैसे कुछ प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग, दिस वन स्पेशली फॉर द ओकेजन ऑफ द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ सूरज एंड प्रिया जंगर. एंड प्रिया जंगर एंड सूरज फ्रॉम होल जगर फैमिली ऑफ बनाके ऑल्सो. हाई सिस्टर, प्लीज एड माई नेम हियर इन योर डेडिकेशन लिस्ट सिस्टर भादत बिदेसी टू एनी सॉन्ग. यहाँ पर अरवी जो कि हमारे साथ है, हेलो हेलो हाउ आर यू. बस हे हेलो हाय यही कहते हो आप, वेरी नाइस. अब मैं जानती हूँ कि आप इंजॉय भी कर रहे हैं हमारी जो प्लेलिस्ट है, सिलेक्शन है. और यहाँ पर बस 15 मिनट बाकी हमारा और आपका साथ का. RM2 रेडियो मस्ती, बस आप जुड़े रहिए. सेंड अस योर मैसेजेस, डेडिकेशंस इन दिस 15 मिनट. आई विल डू माय बेस्ट जस्ट टू मेक यू फील बेटर एंड हैप्पी एंड गुड.
1: Body Brunch, RM2, Radio Masti.
0: चलिए आरवी जी ये गाना चल पड़ा आपके लिए. खुश रहो.

0: RM2 Radio Musti.
1: देर से ही सही दिल तुझमें खोने लगा, क्या बात है। ऑसम ब्यूटीफुल सॉन्ग, यहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग्स का सिलसिला तो है ही। RM2 रेडियो मस्ती, चाहे कोई भी गाना चल पड़ा आपके लिए तो बस रोमांटिक सॉन्ग्स आपके दिल को छुले ही देता है। अगर दिस वन प्यारी लगी फॉर यू, टेक इट फ्रॉम द मूवी बॉर्डर 2 एंड दिस वन गोज आउट टू ऑल दोस ट्यूनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती, जो कि बस कूल सूदिंग रोमांटिक सॉन्ग्स के चाहने वाले हैं। हमारे बाद लेकर आ रही कितने सारे गाने हैंसनी, उनके साथ ही भाइएगा जरूर। इट जस्ट बी गुड 5491294 पर ये है मैसेजेस का टाइम, ये नंबर और आपका टाइम जो है। बस एक छोटी सी दरख्वास्त है टू ऑल द लेडीज, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल दो, ज़्यादा थक मत जाओ घर के काम में। आज सैटरडे है, आपका दिन भी है, ब्रीथ Sit down a bit. अपने पैर का ख्याल रखिएगा, हाथ का ख्याल रखिएगा, अपने चेहरे का ख्याल रखिएगा और सबसे ज्यादा अपने मेंटल पीस का ध्यान रखिएगा। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप का ख्याल रखिएगा और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इवन लेडीज एंड जेंटलमैन। हैव फन, एंजॉय कीजिए लाइफ को। आज है सैटरडे और कोई भी प्लान है मना मत करना। टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड एंजॉय कीजिए अपने फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ और हमारा जाने का समय। यू टेक केयर गाइस, आई एम गोना सी यू ऑन ट्यूसडे 9 से 12 के बीच सुबह का टाइम रहेगा और हमारी मुलाकात भी हो जाएगा।

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Wish you all a very good afternoon. Check your time. It's the 2 p.m. संक्षिप्त समाचार सुनते हैं गीता जी के साथ. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार. दशकों तक मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विशेष पहुंच, अनुकूल कर व्यवस्था और कम लागत वाले श्रम बल पर आधारित रही, लेकिन अब ये सभी फायदे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं.

0: इस चुनौती से निपटने के लिए विजन 2050 परियोजना ने मॉरिशस में अब तक कम विकसित दो क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया है, ब्लू इकोनॉमी और जीवन विज्ञान तथा फार्मास्यूटिकल उद्योग। लक्ष्य है साल 2050 तक मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का आकार 15.2 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक करना। एनजीओ एंड एंड्रेल की पहल पर आज आयोजित एक वनरोपण अभियान में स्वयंसेवकों, छात्रों, परिवारों और युवा आर्थिक सदन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक असाधारण खोज भी सामने आई। इस स्थल पर माकाक नाम का एक दुर्लभ स्थानीय पेड़ हाल ही में पहचाना गया है। ये प्रजाति केवल मॉरिशस में पाई जाती है और अत्यंत ही दुर्लभ मानी जाती है। स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन कल रात हुआ। मॉरिशस की आखिरी प्रतिनिधि मेवेन क्लेयर ने इन खेलों का अंत ब्रॉन्ज पदक जीतकर किया। वे कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले दूसरे मॉरिशन खिलाड़ी बन गए हैं। कल रात खेले गए सेमीफाइनल में मेवेन क्लेयर को वेल्स के ओलांडो हॉली सुटोमी ने हरा दिया। स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे सेउटा सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से हुई। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: यार शिकाना दिल प्लस कुछ धमाकेदार गाने यहाँ पर इक्वेशन बिल्कुल सही है टू एंजॉय आज का प्लग एंड प्ले. वेलकम इन द म्यूजिकल वर्ल्ड, वेलकम ऑन द रेडियो मस्ती. कैसे हैं हमारे फ्रेंड्स? रियली होप कि सब अच्छा है. यहाँ पर ऊपर वाले की मेहरबानी से सब ठीक से जा रहा है. तो यहाँ पर गुड विशेस हम लेकर आए हैं अप टिल 4 PM. मुलाकात तो हमारी बस होने वाली है प्यार के इस दुनिया में, म्यूजिक के इस जहान में जो है हमारा और आज का प्लग एंड प्ले. सभी का वेलकम. यहाँ पर आ गई है और जो हंसनी सब से मिलने के लिए, कुछ बातें शेयर करने के लिए. अच्छा लगता है आप लोगों का साथ जो यहाँ पर मिल जाता है. सो जहाँ पर भी आप सुन रहे हो, इट्स अ वार्म वेलकम ऑन द वे टू मस्ती. काम करते समय इट्स अ बॉन कुराज टू एवरीवन. और मे बी लंच के बाद फीलिंग अ बिट हैवी, यहाँ पे बैठना आप चाहते हो, कुछ आराम फरमाना चाहते हो, ये भी चलेगा. वी हैव गॉट म्यूजिक टू एंटरटेन यू. एंड फाइनली यहाँ पर जुलाई महीना खत्म हो गया और हमने वेलकम किया है एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा महीना जो है बढ़िया ऑसम अगस्त जो शुरू हो गया है. तो ये जो नया महीना आया है, आपने क्या सोचा है? आप क्या करेंगे कुछ नया, या फिर ऐसे में आपने कुछ सोचा है शुरू करने के लिए? ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस आप सबके लिए है, ताकि जो अगस्त आया है वो बने सबके लिए एकदम ऑसम. सो ब्रिंगिंग सम पॉजिटिविटी, ब्रिंगिंग सम हैप्पीनेस, दिल का ये सुकून हम एंजॉय करने वाले हैं हमारे म्यूजिक द्वारा. और कुछ कहना आप चाहेंगे, मे बी समथिंग स्पेशल जो शेयर करने से बहुत ही यू नो प्रेशियस हो जाएगा आपके प्यार के लिए, अपनों के लिए कोई है मैसेज, तो जस्ट जॉइन अस एंड मेक इट स्पेशल ऑन 549-1294 पर करेंगे आप लोगों का इंतजार.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: हमें तो चाहिए वो बहाना प्यार के साथ चलाने के लिए वो स्पेशल सॉन्ग्स मे बी इस समय यू आर इन मूड टू स्टे म्यूजिकल तो यही कोशिश बस जारी हम रखेंगे ऑन नरेटर मस्ती और गेम के साथ साथ यहाँ पर म्यूजिक और म्यूजिक के साथ साथ गेम ये तो सिलसिला चलता रहता है जहाँ पर हम आपको देते रहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स या फिर लेटेस्ट गाने हम लेकर आते हैं ओल्डीज नाइंटीज टाइम टू टाइम यहाँ पर लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट भी होता है सो ये जो स्पेशल संगम होता है आप लोगों से ही होता है और अभी इट्स अ गेम टाइम यहाँ पर शकों को की तरफ हम बढ़ेंगे जहाँ पर यू स्टैंड अ चांस यहाँ पर हम आपको दे रही है मौका टू बी द लकी विनर्स द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड और आप एमबीसी के साथ खेलेंगे ना राजस्थान वर्क्स के साथ खेलेंगे एंड यू विन एक्साइटिंग प्राइजेस यहाँ पे चांस है टू विन अ चार एंट्री टिकट्स एंड वन फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC शुरू होगा वो उत्सव आज फ्रॉम 12 अगस्त और चलेगा 16th of अगस्त तक एट SBI CCPI शुरू होगा आज फ्रॉम 10 AM टू 9 PM 5 दिन जो होने वाला है एकदम जबरदस्त जहाँ पे शॉपिंग होंगी एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ फैमिली फन इट विल इंक्लूड इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शो लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर खानमा शो ब्लड डोनेशन कैंप एंड एकदम लजीज वाला जो इवेंट होता है फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड तो ये सब जो इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट है बस ये आपका टर्न हो सकता है टू बी देयर यू स्टैंड द चांस टू विन द एंट्री टिकट्स तो यहाँ पर रिलेटेड वी हैड अ क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन टाइम के साथ बस आप रेडी हो जाइए सही जवाबों को आप लेकर आएंगे ऑन 5499 1294 सिंपल रखेंगे आज एकदम सिंपल एकदम रिलैक्सिंग मूड में आप होना सो इजी क्वेश्चन ही रखेंगे आपके लिए अगला गाना जो हमने पसंद किया है बस सुनकर आपको बताना है मूवी का क्या नाम वेरी इजी वन मूवी का नाम बताकर आप अपना जो पूरा नाम है पता है ये सब प्लीज आप लिखें इन योर मैसेजेस ताकि आप इन हो जाए फॉर द लकी ड्रॉ सो यहाँ पे हंसनी और पूरी टीम आए हैं आप सभी को गुड लक विश करने के लिए
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: That was a dupatta wala song. और यही तो है हमारा सवाल. ये जो गाना अभी चल रहा था, किस मूवी से था ये स्पेशल सॉन्ग? कई से जवाब मिले हैं. स्पेशल थैंक यू आप सभी को टू पार्टिसिपेट इन आवर गेम. दैट वॉज अ पार्टनर मूवी जहाँ पर नजर आए थे स्टार्स लाइक सलमान खान, गोविंदा, वी हैड लारा दत्ता एंड कैटरीना कैफ. दैट वॉज अ पार्टनर मूवी का गाना. और लकी ड्रॉ द्वारा जो नाम यहाँ पर आया है, चलिए लेट्स गो एंड चेक आउट. यहाँ पर जो जीतने वाला है, जीतने वाली है, उनका नाम क्या रहेगा? लेट्स गो.

यहाँ पे जीतने वाला है और वो तो रहते हैं सेप हियर, नाम है उनका गिरीश राज तिलकधारी. कंग्रेचुलेशंस टू यू जी, आपकी जीत हो गई है. एंड आपका जो चांस है बिल्कुल लकी था आपके लिए टू पार्टिसिपेट. और आप ले जा रहे हो 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फुट क्यूपन अफोर्डेड टू यू बाय जींस लिटिल इंडिया, जहां पर आपको दिए जाएंगे शाही थाली फॉर द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. शुरू होगा उत्सव आज फ्रॉम 12 अगस्त 2026, चलेगा वो स्पेशल इवेंट 16 अगस्त तक एट SBICC पाई आज फ्रॉम 10 AM टू 9 PM, ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. तो यहां पर बिल्कुल जीत आपकी हो गई है और आपका जो नाम है एड्रेस है वो तो बिल्कुल इन हो गई है. कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल आवर टीम.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: एंड आज वैसे यहाँ पर जो गाने हैं इट्स लाइक एक के बाद एक आता है और हमने सोचा दुपट्टा वाला गाना के बाद हम लेकर आते हैं दिस वन चुनरी वाला गाना. अगर आप बस रेडी हो रहे हो, मे बी शाम के वक्त हल्दी है, शादी है, कोई खास ओकेजन है और आप इस समय रेडी हो रहे हो कि क्या पहनना है आज, सो मे बी यू आर गेटिंग सम आइडिया कि क्या आप आज कर पाएंगे इन योर आउटफिट. सो जस्ट बी विद अस, म्यूजिकल बनाएंगे आपको अब 4 PM जहां हंसनी है वहां पर है आज का प्लग एंड प्ले. एंड मे बी आप भी कुछ कहना चाहेंगे, सो विल बी वेटिंग, आपका इंतजार रहेगा ऑन 5499 1294.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती जस्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. यहाँ पर हम सब हम सफर बने हुए हैं. यहाँ पर टाइम हो चला है टू हैव सम मेडिकेशंस राइट. हेल टू जीना, कैसी हो, रेडी हो कि सब ठीक है आपके लिए. यहाँ पर प्लीज मेरे लिए एक गाना हो जाए फॉर मी एंड माय फियांसे कविराज के लिए. ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. गुड विशेस टू यू कविराज जी, हैप्पी बर्थडे आपको. लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस हमेशा रहे आपके जीवन में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं. तो गाना आपके लिए और सभी आपके अपनों के लिए भी चल जाएगा. हेलो टू सर्वेटा, हैप्पी अगस्त महीना फॉर एवरीवन. आप लेकर आई हो गेट गुड विशेस एंड गेट रेडी फॉर अ मैजिकल महीना. जी हाँ बिल्कुल, आपका जो मैसेज है हमने शेयर कर लिया है ऑन योर बिहाफ. यहाँ पर गाना है सभी राम सरन परिवार के लिए एंड फॉर योर ब्रदर प्रियेश के लिए जो यहाँ पर एंजॉय भी कर रही हैं. रियली एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंड वो तो कह रही है टॉप गाने. थैंक यू सो मच प्रियेश जी फॉर शेयरिंग योर अप्रिसिएशन. इसके बाद आएंगे सूरज भाई, यहाँ पर वो तो साथ निभा रही हैं फ्रॉम कैप मालेगुए. और गाना प्लीज मेरे लिए हो जाए एंड फॉर ऑल माय फ्रेंड्स वर्किंग एज सिक्योरिटी गार्ड्स इन अ कंपनी. और बस परिवार को मिस करते हुए यू वॉन्ट टू से हेलो टू एवरी वन एंड यू विल बी बैक होम कल सुबह. तो जो बना रहेगा साथ ही वो तो आपका रेडियो मस्ती है, पता है ना आपको. यहाँ पे आप अकेले तो नहीं है बल्कि साथ चलेंगे एंड विल विश एवरी वन सुपर सैटरडे जहाँ पर भी साथ जारी है. इट्स अ प्लग एंड प्ले विद अजय हंसनी टिल 4 PM. मैसेजेस टाइम ऑन 5491294 ये तो होने वाला है अब इन द नेक्स्ट आवर. लेकिन यू हैव द टाइम अगर शेयर करना आप चाहेंगे. समथिंग स्पेशल है सेलिब्रेटिंग फर्स्ट ऑफ अगस्त. So we are here.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: और यहाँ पर मस्ती के साथ कुछ फीलिंग्स सभी तो है रिलेटेड टू आवर सॉन्ग्स. थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द कलेक्शन फॉर प्लग एंड प्ले. यहाँ पर और एक गाना हो जाए और इसके साथ ना हम बढ़ेंगे ठीक 3 बजे के समाचारों की ओर. तो यहाँ पर प्यार है, ये दोस्ती है. वैसे दोस्ती कोई खास लोगों से नहीं होती, जिनसे हो जाती है वही लोग खास बन जाते हैं, जैसे आप लोग हो इस समय साथ निभाते हुए ऑन रेडियो मस्ती. थैंक यू फॉर लिसनिंग, अप्रिशिएटिंग आज का प्लग एंड प्ले. मिलेंगे उस पार, मिलेंगे इन द सेकंड आवर.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Good afternoon, everyone. I check your time. It's 3 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
6: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का समापन कल रात हुआ। मॉरिशस के आखिरी प्रतिनिधि मेयर क्लेयर ने इन खेलों का अंत ब्रॉन्ज पदक जीत कर किया। वे कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले दूसरे मॉरिशन खिलाड़ी बन गए हैं। कल रात खेले गए सेमीफाइनल्स में मेयर क्लेयर को वेल्स के ओलांडो हुलेई असतुमी ने हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस ने दो मेडल्स जीते हैं। नोएमी अल्फोंस ने 1500 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि

0: किमिया वैकल्या ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और राज मोर्शन समयानुसार रात के 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और बॉन्जी पेरिन 400 मीटर की रेस में भाग लेंगी। एनजीओ एंड एंजल की पहल पर आज आयोजित एक वनरोपण अभियान में स्वयंसेवकों, छात्रों, परिवारों और युवा आर्थिक सदन के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अभियान के दौरान हाल ही में हुई एक साधारण खोज भी सामने आई। स्थल पर मकाक नामक एक दुर्लभ स्थानीय पेड़ हाल ही में पहचाना गया है। ये प्रजाति केवल मॉरिशस में पाई जाती है। विदेश समाचारों में स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे स्वेता सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 तक पहुंच गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से हुई, जबकि कुछ समुद्री दीवार यानी ब्रेकवाटर बैरियर पार करते समय मची भगदड़ का शिकार हो गए। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Shok Samachar, Sunye. Route Royale Saint-Julien de Tmomé, Route Royale Saint-Julien de Tmomé, Choran Vesal, K 94 years old, K Shri Lakshmi Prasad Mohabir, Shri Lakshmi Prasad Mohabir, jo Vidya ke naam se zyada jane jate the, aur Dr. Vishwas Mohabir ke pita the, unki mrityu ho gayi hai, arthi kal din ke 1:30 baje unki patni विश्वानी मोहाबीर के मकान रॉयल रोड सेंट जूलियन दुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: You're listening to a Radio Masti.
3: RM2
2: Radio Masti.
3: Feel the Masti.
2: Plug and play.
3: RM2
2: Plug and play. Yeah.

0: तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
1: वैसे यहाँ पे जवाब को ढूंढने की कोशिश अगर आप कर रही हो तो मे बी समथिंग स्पेशल इन द हार्ट, जो दिल आज कहना चाहता है, उनकी कमी तो हर दिन महसूस होती है, काश वो अभी हमारे पास होते। दौरे सिर्फ रास्तों की नहीं, दिल को आज भी उनके पास ही है, उनके बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर यही मैसेज है फॉर एवरीवन जो अपने प्यार से इस समय दूर है। दूरियाँ जो है मिट जाए, जब दूरी होती है तो तकलीफ जो होती है वो कितनी गहरी होती है, ये तो जो जुड़ा हुई है वो तो आपको बस कह सकती हैं, बयां कर सकती हैं वो जज्बातें। लेकिन आई स्ट्रॉन्गली प्रे कि अगर किसी से आपने सच्चा प्यार किया है, जो आपका प्यार है वो एकदम सच्चा और गहरा है, ये जो जुदाई का आलम है वो कभी भी ना आए। काश दूरी मिट जाए और मैं बस इतना कह सकूं, बहुत याद आ रही हो। तो जो यादों का ये सफ़र है जारी हम रखेंगे, प्यार का ये सफ़र है, म्यूजिक का ये शो है एंड दिस इज प्लग एंड प्ले, जहां पर हम सब बने हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ हम साथी, और जहां पर भी यू आर लिसनिंग हैविंग अ वंडरफुल टाइम। चलिए आराम के साथ म्यूजिक का भी सुनना हो रहा है, एंजॉय योर टाइम, एंजॉय चाय, इट्स रियलिटी टाइम नाउ, और घर पर होके कीप एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ म्यूजिक। अच्छा लगता है कि कुछ गाने हम सुन लेते हैं अचानक से, कई दिनों से सुना नहीं और अचानक से चल जाता है ऑन द रेडियो, इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी फीलिंग कि हम रेडियो के साथ शो के साथ गुनगुना लेते हैं टू शेयर सम सुवेनियर्स। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस बचपन की याद दिला देते हैं, राइट? कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे प्यार की याद आ जाती है, ऐसा होता है कमाल म्यूजिक का, हमेशा ऑन रेडियो मस्ती। सो वेलकम यू इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, मुलाकात यहाँ पर होती रहेगी एंड होती रहेगी मुलाकात प्यार के इस जहान में। कुछ कहने वाली हो आप बातें, दिल की कुछ जज्बात जो है बयां होना चाहती है, सो व्हाई नॉट, ये जो सिलसिला है जारी है ना 1549 1294।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।
2: और यहाँ पर यही बेस्ट है जब ये बातें दिल से आती हैं, दिल की बातें। और हमें भी हमारे यहाँ पर जो शो है इससे आपको कुराज मिल रहा है। मे बी यू गेटिंग सम रीजंस टू स्टे हैप्पी। प्यार के साथ ही हमने गा रहे हैं द सॉन्ग्स। तो यहाँ पर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश हमेशा हम कर लेते हैं। जिंदगी को और भी रंगीन बनाने के लिए मैं भी यहाँ पे जिंदगी कुछ फीकी थी लेकिन एकदम से खिल उठी। और आपको तो पता है जब सूरज आती है, जब उनकी रोशनी आती है, तब जिंदगी खिल से जाती है। सो ऑलवेज ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि उन्हीं की मेहरबानी से ये जो हमारी जिंदगी है वो खिल जाती है। एंड वी आर हियर टू ऐड सम मोर कलर्स एंड टू मेक इट वंडरफुल। दिस इज आवर प्लग एंड प्ले शो जो चलेगा 4 बजे तक। यहाँ पर हंसनी है जो आपके साथ है। कीप एंजॉयिंग, स्टे वेल कनेक्टेड।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: राइट अभी के लिए टाइम हो चला है फॉर सम डेडिकेशंस। मुझे पता है इंतजार हो रहा है कि

0: कब आपका मैसेज पढ़ा जाएगा. सो वी हैव इट नाउ ऑन रेडियो मस्ती. हेलो टू सूरज भाई, कैसे हो? प्रणाम टू यू. हर हर महादेव. रियली होप कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक है. लिसनिंग टू द ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ प्लग एंड प्ले ऑल द वे फ्रॉम त्रियुले जो आप आए हो. सो आपका स्वागत यहाँ पर. गाना फॉर यू और सभी परिवार के लिए जो यहाँ पर कनेक्टेड है. थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन. गुड आफ्टरनून जी, थैंक यू. सेम टू यू. यहाँ पर गाना फॉर परिवार के लिए, फॉर पति लाल देव के लिए, फॉर बेटा विकी, बहू कीर्ति, अवनी, क्यूट वंश के लिए, फॉर बेटी श्वेता, दामन रोशन, रिद्धि, क्यूट सोनाक्षी फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा. थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद द रेडियो मस्ती माय डियर. और गाना आपके लिए भी हो जाएगा. नेक्स्ट वन फॉर बडवक बिदेसी के लिए जो यहाँ पर हम सफर बने हुए हैं विद रेडियो मस्ती. थैंक यू. एंड ऑल्सो आई गॉट ऋषभ जी, आपका भी साथ जारी है. सिंस द बिगिनिंग आप सुन रहे हो, रियली एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. ये तो अच्छी बात है, वेरी नाइस. और आज यू हैड अ स्पेशल वर्क इन द मॉर्निंग और इसके बाद कुछ फ्री टाइम और ऊपर से आया है प्लग एंड प्ले शो. तो और क्या चाहिए इस पल को और भी रोमांटिक स्वीट बनाने के लिए. तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें और तुम्हारा साथ सब कुछ बहुत प्रेशियस है. कभी कभी तुम्हारी एक आवाज़ सुनने का मन करता है, तुम्हारी बहुत याद आती है. मिसिंग माय स्पेशल वन वेरी मच. तो रियली होप कि जो अगला गाना चल जाएगा आप अपनी एडोरेबल डार्लिंग को ज़रूर मिस करते हुए उनको आप सुन पाएंगे. राइट, रियली हमारी स्ट्रॉन्ग विश है. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स हमारे यहाँ. इट्स लाइक प्योरली इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक को हम सुन लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं और ये तो है कनेक्शन ओनली विद रेडियो मस्ती. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आज का प्लग एंड प्ले.
1: प्लग एंड प्ले
2: RM2
1: प्लग एंड प्ले.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: और ये था एक स्पेशल गाना हमारे सभी एडोरेबल लिसनर्स के लिए जो यहाँ पर बस जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मस्ती जस्ट टू एंजॉय द म्यूजिकल शोस अभी द एंड ऑफ प्लग एंड प्ले. लेकिन अ न्यू बिगिनिंग भी तो आ रही है, एक नई शुरुआत फॉर आज का बॉलीवुड टकटकाटक. दिव्या वो तो आ रही है लेकर द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स अगेन. हम बस मिल जाएंगे हम सबको एंटरटेनमेंट फॉर दिस लवली डे यहाँ पर जो आपने बताया है बिताते रहेंगे. So, इसके लिए stay well connected for more. जाने का टाइम है ठीक 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद दिव्या विल बी हियर. मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए stay safe and have a wonderful time.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Good afternoon, everyone. Check your time. शाम के 4 बज चुके हैं. संडे है. संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार याचना.
7: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. कल रात राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस बिल सुधार के साथ पारित किए गए. इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट 2026-2027 के कदम अमल में लाए जा सकेंगे. बजट कदमों को कानूनी मान्यता देने वाले दोनों विधेयकों पर अपने समिंगक में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को गति देना तथा मॉरिशस को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है. राष्ट्रपति दफ्तर ने एक कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन सिडने पियर को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया गया है. राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर ये निर्णय लिया है. विदेश समाचारों में फेफड़ों के कैंसर के सबसे आक्रामक रूपों में से एक के इलाज के लिए चीन में विकसित की गई एक इम्यूनोथेरेपी अब इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस में उपलब्ध होने जा रही है. ये मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और चीन के तेजी से विकसित हो रहे दवा उद्योग के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सलेंस ने शंघाई में विकसित इस इलाज को योग्य मरीजों के लिए कीमोथेरेपी के साथ उपयोग करने की सिफारिश दी है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. हमें आ गया जी, नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
8: Music, Tactacata.
5: RM2, Radio Musti.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: क्या बात है 90s के ज़माने की गाने और साथ में ये बरसाती मौसम हाई क्या बात है इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा होता है और साथ में इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर एक चाय की प्याली हो जाए या फिर अगर आप कॉफ़ी लवर हैं या फिर अगर आप पकौड़े के साथ साथ अपनी चाय को एंजॉय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स द परफेक्ट मोमेंट जहां पर आप अपने चाय की चुस्कियों को एंजॉय करते करते पकौड़ों को भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ में हमारे ब्यूटीफुल गीतों का भी पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्चुअली बरसाती मौसम में कुछ और खूबसूरत गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एंड ट्रस्ट मी यू गोना लाइक दिस वाइब क्योंकि आज है सैटरडे आफ्टरनून बहुत ही रिलैक्सिंग होता है जहां पर लोगों का काम खत्म हो जाता है। कुछ लोग 12 बजे को काम खत्म कर लेते हैं और कुछ लोग अभी शायद आप लोग नाइट शिफ्ट करने वाले हैं। सो लेट मी विश ऑल ऑफ यू बोन कुराज। इट्स अ वंडरफुल सैटरडे और आज है अगस्त महीना का पहला दिन। यस इट्स द फर्स्ट अगस्त 2026। आई नो यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। एक्चुअली मैं भी इतनी मेंटली रेडी नहीं थी कि इस साल का अगस्त महीना भी आ गया। हो माई गॉड कैन यू बिलीव इट। बस अगर हम सोचें और कैलकुलेट करें तो 2027 के आने में ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं लेकिन इनके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अभी के लिए तो हम और आप साथ हैं टिल 7 PM। सो चलिए हर एक मोमेंट को हम यादगार बनाएंगे एंड ऑफकोर्स खाली हाथ बिल्कुल नहीं आए हैं क्योंकि आज है सैटरडे और हम मदर क्रिसमस बन के आए हैं और देंगे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स। तो कुछ ही देर में बिल्कुल गेम्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज पार्टिसिपेट विद अस। क्या पता आज आपका दिन है और आपका लक आपके साथ है। सो चलिए दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती एंड वी आर टुगेदर और साथ में आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294।
0: म्यूजिक टक टकाटा।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the musty.
2: डेफिनेटली यू गना एंजॉय दिस सैटरडे आफ्टरनून, क्योंकि गाने ही कुछ ऐसे हैं और साथ में हमने कहा ना, हम गिफ्ट्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. सो थोड़ी देर में गेम भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए. एंड साथ में 4:16 हो चुके हैं. टोल दोज लिसनिंग टू अस, थैंक यू सो मच, दिल से आपको शुक्रिया. वैसे वीकेंड में बहुत सारे लोग साथ देते रहते हैं और बाहर का जो नज़ारा है हमें बताते रहते हैं और उनके यहाँ क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में भी बताते रहते हैं और हम अपने दिमाग में घूम घूम कर इमेजिनेशन कर लेते हैं कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा होगा और इस खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं. वेल वेल, वी हैव विद अस ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी वेदिता जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ.

लाल माची के लिए. थैंक यू सो मच गाइस हमारा साथ देने के लिए. इट्स सैटरडे आफ्टरनून. फैमिली फ्रेंड्स के साथ जब बैठना होता है तो इतनी सारी बातें होती हैं, इट टर्न्स आउट टू बी मेमोरेबल. और साथ में आप घर जाकर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनको लेकर आप इतना हंसते हैं कि पेट दुख जाता है और नेक्स्ट डे आप उठते हैं तो इस मूड के साथ उठते हैं कि बस ऐसे ह्यूमर के साथ उठते हैं. और हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बताता है कि हम फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और रेडियो मस्ती सुन रहे हैं. आहा क्या नज़ारा है और क्या माहौल चल रहा है. साथ में विदिता एक और मैसेज आया है उनका और कहती है कि अभी गर्मा गर्म चाय पी रही है. क्या बात है, इस मौसम में तो चाय बनता ही बनता है. So, चलिए enjoy guys and thank you so much हमारा साथ देने के लिए. Once again, this गाना goes out specially for मामू मोहित रोबिन, मामी माला, इंदिरा कमला, मासी उत्तरा, मीरा भूषण, बाबू नेहा और लाल माची के लिए.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हयाहू क्या मस्ती क्या जादू अब क्या ही कहे कि क्या मस्ती और क्या जादू चल रहा है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. आप खुद ही इसको फील कीजिए और बस बाकी आपके मैसेजेस जब भी आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं हमारे खूबसूरत गीतों को और साथ में आपके यहाँ क्या चल रहा है, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर सैटरडे आफ्टरनून. हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं ऑन द मैजिकल नंबर विच इज़ 5499-1294. कहीं कहीं इलाकों पर बरसाती मौसम है तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर ड्राइविंग, ड्राइव सेफ एंड केयरफुली क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसे में बस रोड स्लिपरी हो जाता है. आपकी तरफ से थोड़ा प्रिकॉशन एंड मेंटेन योर डिस्टेंस बिटवीन कार्स और जब बारिश होती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेडलाइट्स को ऑन रखें. एंड चलिए यहाँ पर हम बात करते करते उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपको गिफ्ट देने का टाइम आ चुका है. यस, लेकिन गिफ्ट ले जाने के लिए आपको हमारे साथ खेलना बहुत ही ज़रूरी है और खेलने के लिए बस आपके मैसेजेस भी आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन इससे पहले आपको हम बता देते हैं दैट वी आर प्लेइंग विद आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागांजा सीजन 4 एंड अगर आपकी जीत होती है तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा मौका टू विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर्ड टू यू बाय इंडियन स्वाद रेस्टोरेंट. एंड लेट मी टेल यू दैट आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागांजा सीजन 4 ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इज बैक विद एक्साइटमेंट फॉर इट्स व्यूअर्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय मायोप एंड ऑल्सो स्टार्टिंग आज फ्रॉम 1st ऑगस्ट एट SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू जहाँ पर 6 टीमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. एंड वी ऑल्सो विल बी हैविंग कॉन्टिनेंटल चीता ऑल्सो AMG Panthers, Campus Abroad Lions, APP Leopards, One Health Jaguars and Thomas Cook Tigers. क्या बात है. और उनको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा at ground to support your team. Matches will be played on Saturday afternoon and Sunday morning and afternoon. So चलिए आपको हम बता देते हैं कि अगर आप हमारे साथ खेल रहे हैं और आपको मौका मिलता है तो हमारे साथ इस गिफ्ट वाउचर को जीतने के लिए सो ये वाउचर आप तक पोस्ट किया जाएगा. येस, वाउचर्स विल बी सेंड टू यू बाई पोस्ट. एंड हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको सिंपली अगला गाना सुनना है और हमें बताना है कि इस गाने में जो मेल सिंगर है उनका नाम क्या है. अगला गाना आपको सुनना है और हमें बताना है कि इसमें जो मेल सिंगर है उनका नाम क्या है. वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द बेस्ट.
0: Music, Dr. Gutter.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Such a beautiful गाना it was and actually already 4:31 और हमने बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था and सवाल ये था you had to tell me कि इस गाने में जो मेल सिंगर है उनका नाम क्या है and the right answer is कमरन अहमद. Yes, कमरन अहमद is the right answer. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए. Thank you so much हमारे साथ खेलने के लिए and आपको तो पता है कि गेम का एक रूल है और उसूल यही है कि बस एक ही लकी विनर को चुना जाता है and यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है Mr. Vijay Dharam Singh of Petit Riviera. Congratulations to you, Mr. Vijay Dharam Singh. And आपको हम बता देते हैं that you won this gift voucher worth 500 rupees offered to you by Indian Swad Restaurant. Actually, in Island Cricket Extravaganza Season 4 is organized by Mauritius Cricket Federation and they are back with excitement for its viewers in partnership with Indian Oil Servo and co-sponsored by Myop starting us from 1st August at SSR National Cricket Ground Mapu jahan par 6 teams participate karenge and they are Continental Cheetahs, AMG Panthers, Campus Abroad Lions, APP Leopards, One Health Jaguars, Thomas Cook Tigers. तो उनको जाकर आप विजिट कीजिएगा टू सपोर्ट योर टीम एंड मैचेस विल बी प्लेड ऑन सैटरडे आफ्टरनून संडे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. सो वंस अगेन आपको मिस्टर विजय धर्म सिंह मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि ये वाउचर आपको पोस्ट किया जाएगा. सो बस अगला गाना आपके नाम और वंस अगेन मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस.
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: देखिए यहाँ पर हमने प्रॉमिस किया था कि हम गेम्स लेकर आएंगे और गिफ्ट्स लेकर आएंगे, सो जाहिर सी बात है एक और गेम है और एक और गिफ्ट है जो हमें आपको देना है। वेल वी आर प्लेइंग विद मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल दिस टाइम एंड ये गेम बिल्कुल दिस गेम इज़ पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड और आपको खेलना है हमारे साथ एंड राजस्थान वर्क्स के साथ एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, स्टैंड अ चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LICS फ्रॉम 12 August 2026 टू 16 August 2026 एट SBICC आज फ्रॉम 10 AM टिल 9 PM। सो चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके लिए एक बार फिर से, क्योंकि वीकेंड है तो हमने सोचा आपको इतना हम थकाएंगे नहीं, इतना आपको नहीं सोचना है। सो बस अगला गाना सुनना है और हमें बताना है कि ये जो गाना है कौन सी मूवी से लिया गया है, अगला गाना कौन सी मूवी से लिया गया है, बस आपको मूवी का टाइटल हमें बताना है। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499 1294।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बस ध्यान से सुनिए इस म्यूजिक को, इस गाने को और हमें बताइए ये कौन सी मूवी से लिया गया है।

0: म्यूजिक चकचकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: सच अ ब्यूटीफुल स्वीट रोमांटिक गाना 4:50 हो चुके हैं और हमने पूछा था कि ये गाना आपको सिंपली हमें सुनना है और बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है. द राइट आंसर इज बर्दाश्त. यस, बर्दाश्त इज द राइट आंसर. बहुत सारे लोगों ने बोला इट्स मृत्युदाता. वो तो दूसरा गाना है ना, ना ना ना ना ना रे ना, ये वाला दूसरा ना ना ना रे है. ये वाला थोड़ा रोमांटिक है और वो वाला थोड़ा फन लविंग गाना है. और चलिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए, बट लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है शैलेन सनबोकस ऑफ मापुआता वाकुआ. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू शैलेन. आपको मिल रहा है क्या, ऑफकोर्स यू आर विनिंग एक्साइटिंग प्राइजेस. और आपको मिल रहा है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली आदि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC as from 12 August 2026 to 16th August 2026 at SBI CCPI जो शुरू होने वाला है सुबह के 10 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक. And let me tell you, आपको मौका मिलेगा to experience 5 days of shopping, entertainment and family fun featuring international home shopping, entertainment shows, magic shows, fashion show, live performance by Indian Idol singer Padinai Jain, special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh Sir, Canma show, blood donation camp, food festival organized by Event Works Limited. So, चलिए शैलेन, आप को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लेट मी टेल यू दैट आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड आपको फ़ोन करके और भी आपका डिटेल पूछा जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से यू आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव योर गिफ्ट. सो वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस.
0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती.

कर देखिए, खुद ब खुद आपको ये कहानी नजर आ ही जाएगी। वैसे कहा जाता है कि हर किसी का लव स्टोरी उनके हिसाब से बेस्ट होता है और उनके हिसाब से इट्स यूनिक, और हम तो यही चाहते हैं कि आप अपनी प्यार की कहानी खुद से लिखें और उसमें जो भी आपका राजकुमार है या फिर जो भी आपकी राजकुमारी है वो आपसे बेमतहा बेपनाह प्यार करे। वेल, बात करते करते गाने सुनाते सुनाते हम कैसे इस सेकंड आवर में पहुंच गए पता ही नहीं चला। यस, इट्स ऑलरेडी 5:13। एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है इन योर म्यूजिक टक टकाटक टिल 7 PM।

0: वेल वेल चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं. एंड वी हैव जनाब है फ्लाक से सादने के लिए, थैंक यू सो मच. आप बहुत ही प्यारी हैं और आपके मैसेजेस तो हमेशा प्यारे ही होते हैं. एंड चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर बेटी रीमा, जनीता, श्रेष्ठा, अंशिनी, सिल्विया, युविक, ऋषि, सुसरन, फैमिली ऑफ फ्लैक, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू टू एंड ऑलवेज ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती. यहाँ पर आप कहते हैं हेलो सिस्टर दिव्या, हाउ आर यू यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, आप कैसे हो? ललिता जीतन जी सादने के लिए थैंक यू, एंजॉइंग द शो अच्छी साइड हौसला आ गए राइट नाउ, वहाँ पर मौसम तो ठीक ठाक है ना. एंड यू विद ऑल योर फ्रेंड्स, नेक्स्ट गाना गोज आउट ऑल योर फ्रेंड्स फ्रॉम ललिता एंड जीतन फैमिली ऑफ लवेंचुआ. एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से डेडिकेट करेंगी आपके नाम, कहती हैं गुड आफ्टरनून दिव्या, नाइस सिलेक्शन ऑन रेडियो मस्ती. नेक्स्ट गाना गोज आउट especially for Yale Sham of Suriname, wishing everyone a happy, happy Saturday afternoon. And this is also specially हमारे स्वीट बॉय यलेश शाम के लिए ऑफ सुहिनाम. एंड थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर ऑल द वे फ्रॉम सेशेल्स वी हैव विद्या जी. विद्या जी ने दिव्या को बहुत ही प्यार से याद किया एंड दिल से आपको शुक्रिया. करंटली डूइंग सम हाउस होल्ड चोर्स एंड लिसनिंग टू ऑसम सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती. ये आपने हमें काफ़ी पहले भेजा था, आई गेस अभी आपके घर के कामकाज खत्म हो रहे होंगे या फिर हो चुके होंगे. एंड स्पेशल थॉट्स टू योर बेस्टी लीला फ्रॉम मोका हु सेलिब्रेटेड हर बर्थडे टुडे. तो लीला को भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, बहुत बहुत सारा प्यार. और ऐसे ही आपके मैसेजेस आते रहे तो बहुत खुशी होगी हमें. यहाँ पर किसी ने हमें कहा है हेलो हाउ आर यू डूइंग, जस्ट रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क एंड आई एम डूइंग वन वीक ऑफ हाउस होल्ड वर्क. क्या बात है, कभी कभी लोगों को मौका नहीं मिलता है घर को साफ करने के लिए और ये वीकेंड घर की साफ सफाई में ही चली जाती है. लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, थोड़ा बहुत टाइम आपके लिए भी निकालना, इतना बस आपको थकना नहीं है. चलिए आई जस्ट होप कि थोड़ा क्वालिटी टाइम आप खुद के साथ भी स्पेंड करेंगे. सो नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली आपके नाम, आई एम गोइंग फॉर अ वेडिंग एट नाइट. तो चलिए आप कहती हैं इफ़ यू कुड प्लीज़ प्ले तुम ही तुम हो मेरी निगाहों में फ्रॉम पूजा बैजनाथ ऑफ मेबर्ग. पूजा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. अगला गाना गुजार स्पेशली टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं.
1: म्यूजिक टक टक आता
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट ऑलराइट, हर सैटरडे की तरह बिल्कुल फैशन टिप्स लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे कुछ और कलर कॉम्बिनेशन आउटफिट्स के बारे में। एंड अगर कभी भी आपको कलर्स की से तकलीफ होती है तो बस आपको कलर व्हील को फॉलो करना है। एंड कभी भी वाइट के साथ आपको समझ में ना आए कि आप किसके साथ किस कलर के साथ इसका पेयरअप कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सो लेट मी टेल यू कि वाइट और नेवी का कॉम्बिनेशन एकदम क्लासिक होता है। और वाइट में आप अगर चाहे तो इसको पेयरअप कर सकते हैं कैमल के साथ भी। यस, वाइट एंड कैमल लुक्स एकदम बहुत ही क्लासी। एंड ट्रस्ट मी, ये कॉम्बिनेशन अगर आप डालेंगे तो सच में आप खुद को आईने में देखकर निहारते रहेंगे। एंड ये लुक बहुत ही आपको एक एक्सपेंसिव लुक देता है। यस, अगर आप वाइट और नेवी डालते हैं तो इट लुक्स वेरी क्लासिक, बट वाइट और कैमल के साथ इट गिव्स यू अ वेरी एक्सपेंसिव लुक। अब कैमल कलर के साथ अगर आप ब्लैक का कॉम्बिनेशन करते हैं सो इट गिव्स यू अ वेरी शार्प लुक, लेकिन वहीं पर अगर आप कैमल कलर को डार्क ग्रीन कलर के साथ इसको पेयरअप करें या फिर बॉटल ग्रीन जिसको हम कहते हैं, सो इट लुक्स वेरी अर्दी और ये आपको एक बहुत ही अच्छा लुक देगा। और कभी भी क्रीम कलर को इसका कॉम्बिनेशन करना है सो यू कैन कंबाइन इट विद एनी ग्रीन बॉटल आउटफिट, ये आपको एक बहुत ही एलिगेंट लुक देगा। और कभी भी आपको एक बार फिर से अर्दी लुक चाहिए तो आप ग्रीन और चॉकलेट कलर का कोई भी आउटफिट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप चॉकलेट कलर के साथ कोई भी जो कलर है आप कन्फ्यूज हैं कौन सा कलर इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, सो ट्रस्ट मी, जस्ट ट्राई चॉकलेट कलर विद ग्रे, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। चॉकलेट कलर विद एश ग्रे और ये आपको एक बहुत ही ग्राउंडेड लुक देगा। एंड कभी भी अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, यू वॉन्ट अ वेरी मैग्नेटिक लुक, तो इसके लिए आपको चूज करना है चॉकलेट कलर प्लस बर्गंडी कलर। ट्रस्ट मी, इट लुक्स वेरी वेरी ऑसम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कभी भी आपको इन कलर से लेकर कुछ कन्फ्यूजन है इस आउटफिट या फिर कलर से रिलेटेड, तो आप इन कलर्स को जरूर ट्राई करिएगा और देखिएगा कमाल।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Music, Tak Tak Tak. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2

0: म्यूजिक टकटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Well, it's already 5:55 5:55 हो चुकी हैं. के सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ब्यूटीफुल सही गाना फ्रॉम द मूवी नो एंट्री. लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी क्योंकि हमारा और आपका साथ रहेगा टिल 7 PM इन योर म्यूजिक टकटकाटक. स्टे वाइड कनेक्टेड. इस गाने के बाद हम बढ़ने जा रहे हैं 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर और हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द.

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: सभी को नमस्कार। शाम के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कल रात राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस बिल सुधार के साथ पारित। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट तक कदम अमल में लाए जा सकेंगे। राष्ट्रपति दफ्तर ने कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन सिडनेपिया को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया गया। सरकार साल के अंत से पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल 2026 को पारित कराने की योजना बना रही है। ये नया विधेयक 28 वर्ष पुराने कानून की जगह लेगा। विदेश में फेफड़ों के कैंसर के सबसे आक्रामक रूपों में से एक के इलाज के लिए चीन में विकसित की गई एक इम्यूनोथेरेपी अब इंग्लैंड की NHS में उपलब्ध है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार अब विस्तार से। कल रात राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस बिल सुधार के साथ पारित किया गया। इन दोनों विधेयकों के पारित होने से अब बजट 2026-2027 के कदम अमल में लाए जा सकेंगे। बजट कदमों को कानूनी मान्यता देने वाले दोनों विधेयकों पर अपने सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्त को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को गति देना तथा मॉरिशस को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उनको सुनते हैं।
6: फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल पर अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य सरकारी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये दोनों विधेयक एक ऐसी आधुनिक, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय तथा नियामक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, कमजोर वर्ग की रक्षा करेगी और साथ ही

0: मॉरिशस की एक स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी। ये दोनों विधेयक केवल कानून में तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये सुशासन और वित्तीय प्रबंधन के प्रति हमारी सोच में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। हम ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पहले अक्सर केवल कुछ लोगों के हितों की सेवा करती थी। अब हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो पूरे समाज, कर्मचारियों, व्यापार जगत और आने वाली पीढ़ियों सभी के हित का ध्यान रखेगी। उनके संबोधन का मुख्य केंद्र पेंशन व्यवस्था में सुधार रहा। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने महंगाई के आधार पर हर साल होने वाले पेंशन समायोजन और मीन्स टेस्ट को समाप्त करने का उल्लेख किया। उन्होंने कठिन और शारीरिक रूप से मेहनत वाले काम करने वाले कर्मचारियों को ये भरोसा भी दिलाया कि यदि वे चाहें तो उन्हें 60 साल की आयु से ही पेंशन मिल सकेगी। जब हमने हो सकता है शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका कारण ये है कि ये महंगाई के आधार पर तय होने वाली दर पर निर्भर करेगा। इस समय हम कोई निश्चित राशि नहीं बता सकते। हमने हमेशा ये फैसला किया है कि महंगाई के अनुसार आवश्यक एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। जहाँ तक मीन्स टेस्ट को समाप्त करने की बात है, इसकी अतिरिक्त लागत 6.2 बिलियन रुपए होगी। ये धन हमें कहीं न कहीं से जुटाना पड़ेगा। अगर हम जरूरी कदम नहीं उठाते और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार नहीं करते तो ये व्यवस्था सफल नहीं हो पाएगी। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई तथा यूक्रेन में जारी युद्ध का मॉरिशस की अर्थव्यवस्था पर अभी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
1: डॉक्टर नवीन रामगुलाम के अनुसार सरकार ने जनता के हित में कठित और साहसिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि परचेसिंग पावर शील्ड योजना पहले ही प्रभावी साबित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दैनिक उपभोग की 19 श्रेणियों के उत्पाद की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने मीठे उत्पादों पर लगाए गए कर का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार ये कदम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: वित्तीय साल 2026-2027 के बजट में जनता की प्रमुख मांगों को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि लोगों की खरीद शक्ति में आई कमी के प्रभाव को कम करने के लिए परचेसिंग पावर शील्ड शुरू किया गया है। फिलहाल हम प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में फिर से 2 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड की स्थापना के बाद से हम 19 प्रमुख उपभोक्ता सामानों की श्रेणियों की कीमतें कम करने में सफल रहे हैं। इस योजना के तहत 2400 वस्तुएं शामिल हैं, जिनका उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने चीनी वाले उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त कर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में मधुमेह के मामलों की अधिकता को देखते हुए ये फैसला जनता के हित में लिया गया है। जब किसी व्यक्ति का अंग काटना पड़ता है या कोई लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहता है या किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसका खर्च कौन उठाता है? इसका खर्च करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के पैसे से पूरा किया जाता है। चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता हो या नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च सभी करदाताओं को चुकाना पड़ता है। इसलिए पूरे समाज को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य और पेय पदार्थों पर होने वाले खर्च का बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा की लागत आखिरकार टैक्स पेयरों के धन से ही पूरी होती है। हम लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। उन्हें जितना चाहे उतनी चीनी खाने या मीठा पेय पदार्थ पीने का अधिकार है, लेकिन उस पर लगाया गया कर उन्हें स्वयं देना होगा। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित 500 से ज्यादा कदमों को मौजूदा कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के तहत ही लागू किया जा सकता है।
1: बजट कदमों को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले दोनों विधेयकों पर बोलते हुए वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जितन ने राष्ट्रीय फिनटेक रणनीति नेशनल फिनटेक स्ट्रैटेजी पर विशेष जोर दिया। रोड्रिग्स के सांसद फ्रांसिस्को फ्रांसवा ने मांग की कि 12 अक्टूबर को रोड्रिग्स डे घोषित किया जाए और उस दिन को पब्लिक हॉलीडे घोषित किया जाए। विपक्ष के सांसद चेतन बाबूलाल ने कहा कि पेंशन प्रणाली में मीन्स टेस्ट रद्द किए जाने के बाद होने वाले घाटे की भरपाई के लिए

0: सरकार अब तक कोई ठोस समाधान नहीं खोज पाई है। मंत्री अशोक सुभों के अनुसार ये सुधार एक प्रगतिशील पेंशन प्रणाली की नींव रखता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है ताकि इससे संबंधित सभी पक्षों के साथ उचित परामर्श किए जा सके। पल बेहौशे ने पेंशन सुधार शुरू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ सलाह मशवरे नहीं किए जाने पर खेद जताया। मंत्री शकील मोहम्मद ने मुख्य रूप से बैंकिंग एक्ट और वक्फ एक्ट में किए गए सुधारों पर बात की। राष्ट्रपति दफ्तर ने कम्युनिके के जरिए घोषित किया कि जॉन्सिड नेपिया को पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री पद से राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया गया है। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर ये निर्णय लिया है। बजट में घोषित प्रिसिशन फार्मिंग स्कीम की धारणा आकार ले रही है। इस सहायता योजना का मकसद है आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर स्मार्ट खेती प्रोत्साहित करना ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत हो। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद के लिए डीबीएम के जरिए रियायती दरों पर लोन और फारे की तरफ से जरूरी तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: लिस्कालिया स्थित ये ग्रीन हाउस पिछले एक साल से कुछ ज्यादा समय से काम कर रहा है। इसके मालिक बिरजू राव जी अब अपने कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी उद्देश्य से फागई के एक अधिकारी ने उनके ग्रीन हाउस का दौरा किया। जैसा कि बजट में घोषित किया गया था, कृषि उद्योग मंत्रालय जल्द ही प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम शुरू करेगा। ये एक सहायता योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक और सटीक कृषि तकनीक अपनाने में मदद करना है। फागई में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट अमुदा लिंगम इलापेन कहते हैं, इस स्कीम से खेतीहरों को टेक्नोलॉजी में निवेश करने में मदद मिलेगी। अपने ग्रीन हाउस में इन्हें शामिल कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। इन टेक्नोलॉजियों में भारी निवेश करना पड़ता है। फागई का उद्देश्य है खेतीहरों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी उचित रहेगी। आज कामगारों की समस्या है, किस तरह पैदावार बढ़ा सकते हैं और कामगारों की संख्या कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में निवेश करने से ऐसा किया जा सकता है। इस स्कीम में हम 50% रकम देंगे, खेतीहर 50% लगाएगा।
2: C'est évidemment un investissement dans la technologie. Nous pouvons finaliser les paramètres dans cette scheme-là. Nous pouvons subventionner 50%, planter là, mettre 50% sur l'argent.
1: विरजू राव जी इस योजना के योग्य हैं। इसके तहत उन्हें अपने ग्रीन हाउस के लिए आधुनिक प्रेसिजन फार्मिंग उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। वे कहते हैं, आधुनिकीकरण लाने के लिए इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे उपकरण हैं जो रिमोट से चलते हैं, सिंचाई प्रणाली पर नियंत्रण रख सकते हैं।
3: Et vous êtes capable de contrôler le système d'irrigation, vous capable, si vous pouvez trouver un problème et un issue avec vos plantes, vous êtes capable de régler le problème avec, à distance, c'est-à-dire.
2: Comment nous capable d'investir? C'est investir dans l'acier qui n'a pas ouvrant, qui est automatisé, comme à une certaine température, l'acier-là ouvert en haut, il va qu'il s'en salir là.
1: Amudalinga me la peine qu'il y ait ainsi greenhouse mais nivez car sacté hein, jo automated hein, ou par se vo khula hein. ये सभी प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम में शामिल होंगे। जो व्यक्ति अपने खुले खेत में निवेश करना चाहता है, जमीन के तापमान की जांच करना चाहता है या नमी की, कब सिंचाई करना चाहिए, ये सभी प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम में शामिल होंगे। विरजू राव जी अपने ग्रीन हाउस में दो तरह की फसलें उगाते हैं जिनमें खीरा भी शामिल है। अपने पहले ग्रीन हाउस में उन्होंने तापमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए पहले ही एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है। प्रेसिजन फार्मिंग स्कीम की मदद से वे अपनी पैदावार को और बेहतर बना सकेंगे और इस तरह देश की खाद्य आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में भी योगदान देंगे।
0: और विपक्ष नेता के अनुरोध पर नेशनल पेंशन एक्ट में किए गए संशोधन पर राष्ट्रीय सभा में मत विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वोट्स कराया गया। मतदान के परिणाम स्वरूप 55 सांसदों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया जबकि 6 सांसदों ने इसके विरोध वोट दिया। वहीं 5 सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। राष्ट्रसभा में गौरतलब है कि जूनियर मंत्री सिडनी पियर ने भी विरोध में मतदान किया था। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।

शुक्रवार शाम को फाइनेंस बिल के कमेटी स्तर पर अध्ययन के दौरान विपक्ष नेता जोले जोंगाव ने विधेयक के क्लोज 12 पर वोटों के विभाजन की मांग की, जो नेशनल पेंशन एक्ट में बदलाव से जुड़ा था। मौजूद सरकारी पक्ष के सभी सदस्यों ने इस प्रावधान के पक्ष में वोट किया, सिवाय जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया के, जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया। बाद में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल की तरह ही फाइनेंस बिल भी बजट 2026-2027 में

0: पारित किया गया। हालांकि संसदीय सत्र के बाद प्रधानमंत्री ने संविधान की धारा 66 के तहत निर्वाचन क्षेत्र नंबर 19 स्टैनले रोजिल के निर्वाचित प्रतिनिधि सिडनी पिया को जूनियर मिनिस्टर के पद से हटाने का अनुरोध किया। एक प्राइवेट रेडियो पर बोलते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू किया है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम से आए इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के सभी सदस्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेते हैं और सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। संविधान द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति को दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्म गोकुल ने 31 जुलाई की शाम को जूनियर पर्यटन मंत्री के तौर पर सिडनी पियर की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। ये बात उल्लेखनीय है कि मॉरिशस के संविधान के तहत जूनियर मिनिस्टर्स की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का काम देश के राष्ट्रपति करते हैं और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है।
1: विदेशी खबरों में जो आज सुर्खियों में है, उनमें स्पेन और मोरक्को के बीच चल रहे स्वेता सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। स्पेन की सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी कि मारे गए लोगों में से कुछ की मौत समुद्र में डूबने से, जबकि कुछ समुद्री दीवार यानी ब्रेक वाटर बैरियर पार करते समय मची भगदड़ का शिकार हुए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: स्पेन का कहना है कि उसने सियोटा सरहद पर दोबारा काबू हासिल कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर हुई सीमा पार गतिविधियों के बाद 48,000 से ज्यादा प्रवासियों को वापस मोरक्को भेज दिया गया है। मैड्रिड ने सिविल गार्ड और फौज की तैनाती बढ़ा दी है, जबकि नए समुद्री प्रवेश को रोकने के लिए एक फ्लोटिंग बैरियर लगाया जा रहा है।
3: I would like to define what happened as an attack, a violation of the territorial integrity of Spain. Ceuta is a Spanish city and what happened deserves all of our rebuke, all of our condemnation in the strongest possible way.
2: सिर्फ दो दिनों में 50,000 से 60,000 के बीच लोगों ने उत्तर अफ्रीका में मौजूद स्पेन के इस घिरे हुए इलाके की सरहद को पार किया या पार करने की कोशिश की। रिसेप्शन केंद्र बहुत जल्दी भर गए और बचाव कार्रवाइयां भी तेजी से बढ़ गई हैं। इंसानी नुकसान भी काफी ज्यादा रहा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 57 प्रवासियों की मौत हुई है, जिनमें लोग डूबने या भीड़ भाड़ के दौरान जान गंवा बैठे। ये संकट अब सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस ने स्पेन के साथ अपनी सीमा पर सुरक्षा निरीक्षण सख्त कर दिए हैं, ताकि प्रवासियों को अपनी सरजमीन की तरफ आने से रोका जा सके। ये कदम दिखाता है कि इस अप्रवासन संकट का असर पूरे यूरोप पर पड़ रहा है।
1: जानते हैं मौसम का हाल। पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात देश के पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान भी बादल घिरे रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:39 पर, शाम को सूर्यास्त 5:52 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर काविश का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। हॉस्पिटल रोड बाहुश मॉप्लेमिसेस में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्डर के श्री जीवन झारी जो जीवन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे

0: रवि झरी के मकान हॉस्पिटल रोड बाहूश पॉम्पलोमिसिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। मौसलमान राफ्रेलू ओशेतिया रूज में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जियानाकामा नायडू जो वासन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे दुर्गेश वेंकटासाधु के मकान मौसलमान राफ्रे ले ओशेतिया रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। रॉय रोड सेंट जूलियन डुतमो में 94 साल के 94 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी प्रसाद महाबीर जो विद्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और डॉक्टर विश्वास महाबीर के पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी विश्वानी महाबीर के मकान रॉय रोड सेंट जूलियन डुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। एवेन्यू ला सेरेंग लेन पाल्मा 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री बुधन रामबन जो बुलों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी मंगलवार को दिन के 1 बजे उनकी पत्नी कमला रामबन के मकान एवेन्यूला सुरैग लेन पाल्मा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन ट्यूसडे एट 1 PM। फैब्रिक्स लेन मोडालबेयर में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री नरदेव गुदुरी जो सुरेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे वीरेन गुदुरी के मकान फैब्रिक्स लेन मोडालबेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। एवेन्यू द्रा पेयर बेल रोज में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भाग्या बुलका जो भाग्या भाभी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनके मकान एवेन्यू द्रा पेयर बेल रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगार्ड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3 PM। नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पिटो में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नंदिनी देवी सिंह पैदाशी नाम दुबुरी और जो सीमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके पिता रमेश दुबुरी के मकान नंबर 17 बुलवा विक्टोरिया वाली पिटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबॉ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti.

0: Well, that's Roop Dirani for you, Guru Randhawa aur Raheer ki awazon mein. Umeed karte hain that you're having a great, great Saturday evening. Radio Masti ke saath.
1: Music, tuk tuk tuk.
2: RM2, Radio Masti.
0: कुछ और टाइम हमें मिल गया है आपको एंटरटेन करने के लिए सो ऑफ कोर्स जितना हो सके हम खूबसूरत गीतों को समेटने की कोशिश करेंगे टिल 7 PM चलिए यहां पर आप कहती हैं हाय नमस्ते दिव्या जी आई एम पूना मोबिलक फ्रॉम मिडलैंड सब ब्यूटीफुल गाने चल रहे हैं थैंक यू सो मच नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर योर फ्रेंड्स मालदिनी तुसें यादव कबीर चाचा अनिल अनुषा एंड बेटी परी के लिए बॉस ऋषि वर्किंग एट सुपर मार्केट एट से मिडलैंड एंजॉयिंग द नाइस सॉन्ग्स आप सभी टीम को पोंकुआज और बस काम रहिए और हमारे गीतों को एंजॉय करते रहिए हाय नमस्ते जी प्लीज प्ले रोमांटिक सॉन्ग फॉर माय वाइफ बेबी रामदो विशिंग हर अ हैप्पी एनिवर्सरी फ्रॉम हबी संजीव रामदो फ्रॉम प्लेंडी पापाय तो चलिए आपकी प्यारी वाइफ बेबी को हमारी तरफ से भी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और हमारी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार हेलो रेडियो मस्ती विना जगेसर फ्रॉम बिल्वी मोखैल एक गाना मेरे सभी परिवार मेरे सभी दोस्तों के लिए और सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू एंड चलिए के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर एंड यहाँ पर किसी ने कहा है लोट्स ऑफ लव टू माय हस्बैंड विशाल कोहली जो इस वक्त अभी खाना बना रहे हैं आपने कहा जो इस वक्त खाना बना रहे होंगे शायद उस वक्त को शायद आप लोग साथ में नहीं थे एंड आई गेस अभी आप घर पहुंच चुके हैं होंगे एंड आपके लिए बना बनाया खाना तैयार है क्या बात है

0: पति हो तो ऐसा। चलिए, इससे प्यार और भी बढ़ता है। और हमेशा हम कहते हैं ना कि वीकेंड में जब आप की पत्नियों को आप देखते हैं किचन में, तो आप एक जेंटल सा जेस्चर कर सकते हैं, जेंटलमैन वाला जेस्चर। वो ये है, आप किचन में जाइए और वाइफ को पूछिए कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और जो छोटे छोटे वेजिटेबल्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उनको हेल्प कीजिए। इससे आपका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा टास्क है। और आपस में किचन में बातें करना, गाने सुनना और साथ में एक गुड कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। और इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप आप ज़रूर, ये कदम आप उठाएंगे। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी की तरफ से और प्यार की तरफ अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं, तो प्यार और ज़िंदगी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाती हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं उसी प्यार के साथ आप हमें सुन रहे हैं। इट्स योर म्यूज़िक टक टकाटक, जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM।
1: म्यूजिक टक टकाटक, RM2 रेडियो मस्ती।

वेल फ्रेंड्स 6:55 होने को हैं और चलिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. विकास ऑल सेट है आपको एंटरटेन करने के लिए इंडियन कार बीट्स विद द लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड और साथ में ब्यूटीफुल गाने. सो उनका साथ जरूर देना. फिलहाल के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड अहेड. टेक केयर. कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए जाते जाते यहाँ पर ये गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे सुनील जी, आप हैं तुगयुले से हसादने के। थैंक यू सो मच, बार बार आप आपके मैसेजेस हम तक पहुँच जाते हैं और बस आपके मैसेजेस पर कि हमेशा हम यही कहते हैं कि आपकी वाइफ तो इतनी खुश होगी, हम तो वेट ही कर रहे हैं कि कब आपकी वाइफ से मुलाकात होगी और हम पर्सनली आपके मैसेज उनको दिखाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। चलिए ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू सुनील जी और आपकी वाइफ शालिनी के लिए, और साथ में आपने ये गाना मांगा हुआ है स्पेशली विदुषी के लिए। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए।

0: यादें याद आती हैं।
1: अब तो आदत सी है मुझको,
0: बस बातें भूल जाती हैं।
2: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
3: RM2, Radio Musti.
0: रात्रि के 7:06 और 12 सेकंड ऑन रेडियो मस्ती। शनिवार का दिन, अगस्त महीने की पहली तारीख, पहला दिन, पहली रात। नमस्कार आदाब, एंड ग्रेट इवनिंग टू यू ऑल। सैटरडे 7 to 9 एज यूजुअल, हमेशा की तरह इट्स योर स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक प्रोग्राम हमारे साथ झंकार बीट्स में, एंड ऑन द मिक्स हमारे साथ मैं हूँ विकास रामथनी, आपके साथ हूँ रात के 9 तक। हाई हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस खेल और संगीत के अद्भुत संगम में। सो एक मिक्सचर है खेलों का, स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, संगीत का, एंड फॉर टू आवर्स 5499-1294-5499-1294 पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। वैसे ये सेगमेंट जो है स्पोर्ट्स के लिए है, स्पोर्ट्स की भाषा में, लेकिन साथ ही साथ ग्रेट म्यूजिक भी। सो रेमी फिये जूडो के लेस 90 kg कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गया। ब्रावो टू रेमी फिये, बधाई हो। आज दिन के दौरान उसने सेमीफाइनल में, यानी कि ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल जारी रखे जा रहे हैं, उसमें वो फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के डैनी वोजनिकोविच को उसने सेमीफाइनल में हराया। सो बधाई टू रेमी फिये, अनदर मेडल इन द वेटिंग। और मेडलों की बात हुई तो बता दी कि राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, कल मॉरिशस ने 2 मेडल्स जीते, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल, कर्टिसी ऑफ मेवे क्लेयर बॉक्सिंग में और नोएमी अल्फोंस रेसिंग में। और आज रात 10:28 पर, सेव द टाइम, 10:28 यानी कि 10:28, आज रात नोएमी अल्फोंस फिर अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है रेस कोर्स पर, 400 मीटर T54 रेस में। और नोएमी के साथ ब्रैंडी पेरिन भी होगी इसी रेस में। सो कम ऑन मॉरिशस, राष्ट्रमंडल खेलों में कल इसका समापन समारोह है, कल आखिरी दिन है, सो क्लोजिंग सेरेमनी। कल भी जूडो में कुछ फाइनल रखे गए हैं। और बता दें कि आज अभी से कुछ ही मिनट पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से परास्त किया।
3: RM2 Radio Musty.

समा को बनाते हैं मस्ती भरा. इट्स सैटरडे इवनिंग, सो वेलकम वेलकम. मैं विकास एंड दिस इज योर शो.

तालिका में मेडल टेबल में। सो मॉरिशस अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 27वें 27 स्थान पर है विद टू मेडल्स अब तक, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। आज रात शायद कुछ और मेडल हाथ लग जाए। रेमी फे ये बता दे कि जूडो के लेस 90 केजी कैटेगरी में वो फाइनल में पहुंच गया है एंड आज रात 10:28 पर नोएमी अल्फोंस और ब्रांडी पेरिन दोनों हिस्सा ले रहे हैं अभी 400 मीटर T54 रेस में। सो इन सबको हार्दिक बधाई एंड चलो चले चलो मॉरिशस कमन मॉरिशस और मेडल। कल समापन समारोह है। सो बात कर रहे थे फुटबॉल की, बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है भी फुटबॉल वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल को लेकर पिछले 3-4 दिनों से। गुरुवार से जब से ज्ञानी इन्फांटिनो जो फीफा का अध्यक्ष है, फीफा का प्रेसिडेंट है, उसने अज्ञानी बनकर जो वर्ल्ड फुटबॉल को किसी का कहना है कि बेचना चाहा, सो ऑल दिस हैपनिंग। लेकिन आज सुबह ही उसने एक ज़बरदस्त यूटर्न मारते हुए कहा कि द प्रोजेक्ट हैज़ बीन शेल्व्ड। तो इतने सारे ताने विरोध के सामने उसको शेल्व करना ही पड़ा। बात करेंगे इस पर ऑन 5499-1294-5499-1294 पे। मैं हूँ विकास और हूँ आपके साथ रात के 9 तक। वी हैव टू मैसेजेस ऑन 5499-1294। सबसे पहले ये है ये ऑल योर फेवरेट सॉन्ग्स हाई वॉल्यूम इन द किचन। अगला जो है आपके हब्बी जान के लिए किड्स इंक्लूडिंग योर स्वीट हैप्पी फैमिली एंड ऑल योर लव वंस टेक केयर स्टे सेफ। ये है आपका मैसेज। सो ये वाला किसकी ओर से है, ये रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल मूवी ये है और नंदिनी का ही मैसेज ऑन 5499-1294-5499-1294 पे। बात कर रहे थे फुटबॉल की। सो फुटबॉल में भी लॉट्स ऑफ हैपनिंग, खासतौर पे फ्रेंडली मैचों में। आज दिन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एथलेटिको मैड्रिड को 2-1 से परास्त किया, 2-1 एंड गोल कर्टेसी ऑफ ब्रायन एम्बेमो। दोनों ही गोल ब्रायन एम्बेमो ने स्कोर किया। माइकल कैरिक के लिए इट्स गुड ओमेन। अभी हाल में रोजेनबर्ग को उसने 5-0 से हराया। पहले मैच में रेक्साम से रैक उनकी हार हुई थी, देन सेकंड में 5-0 की जीत, अब 2-1 से एथलेटिको मैड्रिड को हराया। मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान ने आज मैच ड्रॉ किया 1-1। पेनाल्टी शूटआउट सत्र के बाद इंटर मिलान की जीत हुई 3-1 से एंड टोटनहम हॉटस्पर बीट चेल्सी बाय 2-1 इन ए लंडन डर्बी। एंड कल बता दें कि लिवरपूल के लाल कल खेलेंगे लीड्स यूनाइटेड के विरुद्ध। ये मैच उसके US2 का आखिरी मैच होगा शिकागो में।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jamka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: थोड़ा सा मोरशेस का की रैंकिंग देख रहा था अभी मेडल

0: मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूं। 1549912945499 1294 पे कमिंग नेक्स्ट अबाउट द विश और आपके मैसेज।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats. RM2, Radio Musti.
0: So this one coming from Tisha. Tisha ki aur se Triyoli se keh rahe ki aaj unke papa ka happy birthday hai, Satyam Pradeep papa ji sahab ko. A very happy birthday, wishing you lots of love, happiness, aur khas taur pe acha swasthya, good health from my Padu family and all your relatives. जो दोस्त हैं, परिवार हैं और ख़ासतौर पे आपकी बेटी जो है, आपके लिए उन्होंने ये अगला गीत मांगा है। ऑन योर हैप्पी बर्थडे ढेर सारी बधाई है। 1549912945 एंड दिस वन आपकी बेटी स्वीति के लिए, दामाद है कमलेश, ग्रैंड चिल्ड्रन शेषना, योहान एंड रोहान फ्रॉम रागिनी ऑफ मोसेलम सांस सुसी। फुटबॉल में बात कर रहे थे ज्ञानी इन्फांटिनो जो फीफा का प्रेसिडेंट है, एंड पिछले गुरुवार से उसने जो ऐलान किया कि फुटबॉल जो है, ख़ासतौर पे जो ग्रेट इवेंट्स हैं, वर्ल्ड कप आदि, उन सब को लेकर एक शेयर जो है, एक भाग उसका एक प्राइवेट कमर्शियल सब्सिडियरी कंपनी को उसका आयोजन, उसका ऑर्गेनाइजेशन दिया जाएगा। तब से लेकर हाहाकार मच गया। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा में एक प्रकार से आग लग गई और ज्ञानी इन्फांटिनो जो है अज्ञानी बन गया, इन्फेंट बन गया, और रात भर उसको नींद नहीं आई। क्या कि आज सुबह जाकर जब इतना सारा विरोध आया, सबसे पहले यूईएफए की ओर से, यानी कि यूरोपियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी जिसमें 55 देश हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि फुटबॉल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ फॉर फुटबॉलर्स, फुटबॉल फॉर द लव ऑफ फुटबॉल, कोई भी धंधा नहीं इसमें। एंड उसके बाद 55 देशों के बाद वी ऑल्सो हैव द कॉन्काकाफ रीजन, लैटिन अमेरिकन जो देश है उसमें, नॉर्थ अमेरिका भी, और जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने भी, कल ही उन्होंने भी विरोध किया। रिमेनिंग जो अफ्रीकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है और ओशानिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, उन्होंने कहा कि अगस्त महीने में सभी फेडरेशन से उनकी मुलाकात होती, तब जाकर वो एक फैसला लेते। लेकिन आज सुबह ही ज्ञानी इन्फांटिनो ने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि दिस प्रोजेक्ट इज डिवाइडिंग रादर देन यूनाइटिंग, इसलिए शेल्व्ड प्रोजेक्ट हैज़ बीन शेल्व्ड, मतलब कि एम्ब्रायो में ही उसको मार दिया, सामने आया, आ ही नहीं पाया। सो इस प्रस्ताव को यदि बहुमत मेजोरिटी वोट प्राप्त होता तब जाकर वो आगे बढ़ता, लेकिन 211 फीफा के सदस्यों में 211 देश शामिल हैं, उनमें से 136 देशों ने ना कह दिया, इंक्लूडिंग यूएफए, एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड कॉन्काकाफ टीम्स, दे से नो टू फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज, जिसका मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दामाद बताया जा रहा है। थ्राइव इटर्नल इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला था, जिसका फाउंडर है जोशुआ कुशनेया, और जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेद का भाई है। सो इट्स कनेक्शन, करप्शन नहीं कहेंगे, कनेक्शन कहेंगे। इसलिए सबसे पहले यूएफए ने विरोध किया, फिर बाकी सब ने। इन्फांटिनो के एक वरिष्ठ सलाहकार, सीनियर एडवाइजर ने भी, कार्लोस कोडेरा ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने भी जले पर नमक छिड़कते हुए इन्फांटिनो के रेजिग्नेशन की मांग की। बर्नहम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा बेहुदा ख्याल आना ही साबित करता है कि इन्फांटिनो इज द रॉन्ग मैन।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Dhanka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: हैप्पी तो हमेशा होनी चाहिए क्योंकि फाइनली अल्टीमेटली जब सब कुछ हमने कर लिया तो खुशी की तलाश होती है, इसलिए खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती और RM2 एवरी सैटरडे 7 to 9 चंकर बीट्स। हमारे साथ मैं हूँ विकास और 5499-1294-99-1294 फॉर योर मैसेजेस। कुछ बातें करें लोकल स्पोर्ट्स की। हमने आज सुबह बताया था कि आइलैंड क्रिकेट एक्सट्रावेगांजा ICC का सीजन 4 आज ही आरंभ हुआ मापू के SSO क्रिकेट ग्राउंड में। सो आज का जो पहला मैच था उसमें कैंपस अब्रोड लायंस का मुकाबला था AMG पैंथर्स से, एंड उम्मीद के मुताबिक कैंपस अब्रोड की जीत हुई बाय 32 रनों से। अपनी पारी में कैंपस अब्रोड ने 141 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में। तो जवाब के तौर पर AMG पैंथर्स 17वें ओवर में आउट हो गए विद ओनली 109 रनों के साथ। सो कैंपस अब्रोड लायंस वन बाय 32 रन्स। अब उनको हार्दिक बधाई। अब इस मैच में प्ले ऑफ द मैच बना है दिलजीत कैंपस अब्रोड लायंस का ये खिलाड़ी है। एंड कल अब मैच डे 2 इसके लिए एक और मैच रखा गया है कल सुबह 9 बजे वहीं पर मापू में ही कंटिनेंटल चीटास का मुकाबला APP लेपर्ड से होगा। और चूंकि

0: लोकल स्पोर्ट्स की बात करें तो बता दें कि रोशनवाय स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित दुदला बीमा सुवेनियर कप का 22nd edition शुरू हो चुका है कल संडे को वहीं के मैदान पे। संडे को शाम 3:30 एक और मैच खेला जाएगा बिटवीन प्लेन दे रोश एंड ट्रियोले कैडेट्स। इतना सब कुछ लोकल स्पोर्ट्स को लेकर। आप भी हमें फोन करके टेक्स्ट कर सकते हैं 5499-1294-549-9124 पे। आपके के शहर में, आपके गांव में, आपके इलाके में जहां भी कोई स्पोर्ट्स गतिविधि, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम अखा मॉरिशस तक रेडियो मस्ती के जरिए और एमबीसी रेडियो के जरिए पहुंचा सकते हैं। सो सुनते रहिए और बात फिर से करेंगे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की, राष्ट्रमंडल खेलों की। मॉरिशस अभी 27वें स्थान पर है 27 पोजीशन पे और ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकल चुका है विद लॉट्स ऑफ गोल्ड मेडल्स।
1: RM2 रेडियो मस्ती झंकार बीट्स।

0: क्या बात है भैया, चोरों का सचिन तेंदुलकर निकला रे तू, का फटका मारा और वो भी कितनी सफाई से। वाह वाह,
1: एक बात बोलूं,
0: अगर हम तीन जवान लोग मिलकर ऐसी चोरियां करते रहे ना, पूरा दुबई साफ हो जाएगा, सिर्फ ऊंट और खजूर बचेगा बस।
2: ओ उम्र मेरे उम्र में।

0: कमर में लचक आ जाएगी। अभी मॉस्को चिकना के पास जा और उसका पूरा पैसा वापस कर और उसका कर्जा चुका। और सुन, ये तेरे लिए आखिरी बार काम कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तू टीना का मामा है।
1: तो मुझे भी अपना मामा बना लेना।
0: अरे उसी का तो इंतजार है।
1: अरे इंतजार का है का? अभी टीना को बुलाए देता हूँ।
0: नहीं
1: हाँ, तू उसका हाथ थाम ले, वो तेरा हाथ थाम ले, हाथ पे राखी बंधवा ले, फिर मामा ही मामा।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
3: Radio Musti.
4: North, South,
3: 103.5.
4: East, West,
3: 96.4.
4: Center,
3: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Check your time. Exactly 8 p.m.
3: Jhankar Beats.
5: RM2 Radio Musti.
3: Jhankar Beats.

0: रास्ता पकड़ के हमारी भाभी स्विट्जरलैंड पहुंच गई है.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: आठ बजकर चार मिनट और 45 सेकंड. यू आर ट्यून टू रेडियो मस्ती और RM2 विद मी विकास रामधनी और आप सुन रहे हैं झंकार बीच हर शनिवार की रात 7 से 9 के बीच. सो वी हैव अनदर आवर आपका मनोरंजन करने के लिए. और स्विट्जरलैंड में अभी पहुंच गई है हमारी भाभी सुरेखा. हाय भाभी, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती पर. वहाँ से आप हमें याद कर रही हैं और अज्ञानी इन्फेंटिनो को कहीं आप ज्ञानी बनाने तो नहीं गई है, क्योंकि इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के ही है और उन्होंने काफ़ी घबला उबला किया हुआ है फीफा के आयोजन को लेकर. सो वहाँ पर आपके साथ हैं भैया सूरत, फिर आपके दो बेटे भी होंगे हंस और हर्ष, और पूरी फैमिली को हमारी उसे हार्दिक बधाई. और घूमते रहिए, घुमाते रहिए और कीप एन्जॉइंग. ये समाज जो है फैमिली के साथ, फैमिली टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. सो आप कह रहे हैं कि अभी आपकी बहन जो है आपकी सिस्टर इन लो देविका जो है वो हमें सुन रही है, और उनके किसके लिए, फॉर हर शी सेइंग हेलो टू ऑल ऑफ अस. देविका जी को हाय हेलो, एंड दिस वन गोइंग फॉर यू एज वेल. 5499-1294-5499-1294 पे. और ज्ञानी इन्फेंटिनो की बात हुई तो बता दें कि उसकी जगह अब काफ़ी खतरे में है, क्योंकि जो कारनामा उसने किया पिछले कुछ दिनों से वो माफ़ी के लायक नहीं है. सब ने उसका विरोध किया, इसीलिए आज सुबह ही उसने एक ज़बरदस्त यू टर्न किया और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से हराया. बात करेंगे, सिटी ने अपना मैच ड्रॉ किया 1-1 इंटर मिलान के खिलाफ, एंड इंटर मिलान 1-3-1 ऑन पेनाल्टीज. चेल्सी की हार हुई, टोटनहम हॉटस्पर ने उसे 2-1 से परास्त किया. कल रात 12 बजे लिवरपूल प्लेइंग अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड, दिस वन फॉर यू.

RM2 के सभी खूबसूरत लिसनर्स के लिए हम सब साथ साथ हैं. Such a lovely evening.

0: जान ले लो, दिल दे दो।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
0: और ये अगला गीत 5499-1294-5499 1294 पे शानिया की ओर से फ्रॉम रेनियन टापू उनकी बहन करिश्मा के लिए हु सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ड्यूरिंग द वीक सो ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू करिश्मा ऑफ कोर्स पापा और मम्मी की ओर से साथ में मौसी मामी मामू अक्षय अभिषेक भी हैं ऑल कजिन्स विशिंग करिश्मा ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे Next message from Motai Blanche, Medha, Manish, Shriya, Aryan, Neil, Sheetal, Vicky, Ritina, Nitin and Sangeeta कह रहे हैं कि ये अगला गीत उनके लिए और शुभ रात्रि आपको भी सुनते रहिए बहुत सारी खबरें अभी विश्व भर से और खासतौर पे स्पोर्ट्स वर्ल्ड से आपको हम देंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या चल रहा है बात बता दें कि रात के 10:28 पर भूलेगा नहीं 10:28 आज रात रेस 400 मीटर रेस T54 लगने वाली है जिसमें हमारी दो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं नोएमी कैम्बेल एंड वांडी पेरिन सो उसमें भी मेडल की उम्मीद है और रेमी फिये जो है जूडो के फाइनल में पहुंच गया है सो अभी भी मेडल्स की उम्मीद की जा रही है 5499-1294-5499-1294 पे आप मैसेज भेजते रहिए बता दें कि प्री सीजन 2 जो है आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत हुई सिटी ने मैच ड्रॉ किया फिर पेनाल्टी शूटआउट में हार गए और आर्सेनल आज खेलेगा 1 अगस्त को अगेंस्ट जिरोना ये मैच एस्टाडी मोंटेलिवी जिरोना में खेला जाएगा सो आर्सेनल अपना ये मैच खेलने वाला है फिर 5 अगस्त को आर्सेनल वर्सेस रियल बेटिस डबलिन में
1: झंकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झंकार बीट्स

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: All-time great, evergreen hit. Lata Mangeshkar, Udit Narayan. This one was for you. Hamari aur se.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: 50 सुबह यूएफए के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ने भी इस्तीफा दे दिया और ज्ञानी इन्फांटिनो को बहुत भला बुरा भी कहा और बाद में कहा कि चाहे उसकी नौकरी चल जाए कोई बात नहीं लेकिन चैन की नींद तो कम से कम वो सो तो पाएगा और उसने कहा कि दिस वाज द प्रोजेक्ट ऑफ वन पर्सन ओनली. नाम है उसका केविन लामू यानी प्रेम प्यार. सो इंग्लिश फुटबॉल से भी हमें काफ़ी प्रेम है मोहब्बत है प्यार है और आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत हुई. ब्रायन एम्बुमो ने दोनों ही गोल स्कोर किए फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और आज सिटी और इंटर मिलान के बीच मैच ड्रॉ रहा 1-1. देन 3-1 से शूट आउट के बाद पेनाल्टी शूट आउट के बाद इंटर मिलान की जीत हुई. टोटेनम हॉटस्पर ने चेल्सी को 2-1 से हराया. आर्सेनल आज रात खेलेगा जिरोना के विरुद्ध. आर्सेनल के फिक्चर्स आपको बता दे अभी वो अपने फ्रेंडली टू पे गया हुआ है. 5 अगस्त को आर्सेनल वर्सेस रियल बेटिस डब्लिन में. 9 अगस्त को उसका मुकाबला बोरुशिया डॉर्टमुंड से एमिरेट्स स्टेडियम में. 12 अगस्त को अंतिम फ्रेंडली मैच अगेंस्ट कोमो एमिरेट्स में ही क्योंकि 16 अगस्त को इट्स गोइंग टू बी द कम्युनिटी शील्ड बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी एट द प्रिंसिपालिटी स्टेडियम कार्डिफ शाम 6 बजे 16 अगस्त को द कर्टेन रेजर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग. ये तो रहा आर्सेनल के लिए. चेल्सी की आज

0: हार हुई 2-1 से टोटनहम हॉटस्पर के विरुद्ध 5 अगस्त को चेल्सी वर्सेस यूवेंटुस 8 अगस्त को अगेंस्ट एसी मिलान जकार्ता में ये मैच खेला जाएगा और 11 अगस्त को चेल्सी वर्सेस जोहोर दारुल ताजिम ये सुल्तान इब्राहिम स्टेडियम जोहोर में खेला जाएगा So, जो बाकी टीमें हैं we have Liverpool जो आज रात अपना मैच खेलने वाला है आज नहीं बल्कि कल संडे को अपना एक और फ्रेंडली मैच खेलेगा Liverpool against Leeds United ये शिकागो के Soldier Field स्टेडियम में खेला जाएगा इससे पहले बता दें कि Liverpool ने 30 जुलाई को Wrexham को 1-0 से हराया फिर 25 जुलाई को Liverpool 4 Sunderland 2 और कल के इस मैच के बाद against Leeds कल के बाद 9 अगस्त को Liverpool versus Monaco ये मैच एनफील्ड में खेला जाएगा और 16 अगस्त को फाइनल फ्रेंडली मैच अगेंस्ट कोमो ये भी एनफील्ड में ही होगा मैन सिटी अगले 5 अगस्त को वर्सेस के लीग ऑल स्टार्स यानी कोरिया दक्षिण कोरिया में ये मैच होगा फिर 9 अगस्त को सिटी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड एंड देन ऑफ कोर्स 16 अगस्त कम्युनिटी शील्ड मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल जहां तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का सवाल है तो उसका आज का जो मैच था उसने जीत लिया 2-1 से अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड 8 अगस्त को वर्सेस पेरिस सैं जर्मेन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस पेरिस सैं जर्मेन 8 अगस्त को गोथेनबर्ग में ये मैच खेला जाएगा 12 अगस्त की रात अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड डबलिन में और 15 अगस्त को लास्ट फ्रेंडली मैच अगेंस्ट एसी मिलान ये मैच होगा वीरोक्लो अरेना में सो इतना सब कुछ फ्रेंडली मैचों को लेकर आपके मैसेज ऑन 54991294549912994 पे ये ब्यूटीफुल बर्थडे सॉन्ग की मांग है फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेटी वाइफ बाबिनी ऑफ मेडागास्कर सो हाय सभी हमारे मलागास्ती दोस्तों का स्वागत है रेडियो मस्ती RM2 पर ऑल्सो टू बाबिनी आपके लिए बर्थडे विश है ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू किसकी ओर से आपके पतिदेव की ओर से विशिंग यू गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य प्रोस्पेरिटी समृद्धि हैप्पीनेस खुशी और मे गॉड गिव्स यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रे आपका पति प्रे कर रहा है कि यू हैव हैप्पीनेस इन योर लाइफ टाइम और ये वो वेदानंद की ओर से आपकी बेटियां हैं श्वेता ऑफ ऑस्ट्रेलिया शिखा दर्शिनी बेटे हैं तिशान वो भी ऑस्ट्रेलिया में है अनिकेत प्रशान शुभम सिस्टर इन लॉज रूपा कविता सावित्री शांता ब्रदर इन लॉज देवन राज संजय दयानंद और दो तीन लोग भी हैं दिशा करिश्मा आपकी डॉगी भी है That's cute. Doggy Snow, missing you a lot. All family, Baji of Apadaguchia and Hiru Parivar bhi hain, because they were here. Parasram Parivar, Katre Bonse, and a very, very happy birthday to you.
1: Jhankar Beats.
2: RM2, Radio Musti.
1: Jhankar Beats.

चलिए फिर बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। अब आज पूर्वांतिम दिन है, यानी कल समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी। कल दिन के दौरान सुबह जो है जूडो में एक दो इवेंट्स रखे गए हैं, लेकिन बाकी सब आज समाप्त हो जाने चाहिए। कल इसका क्लोजिंग सेरेमनी और ग्लासगो, रोड टू ग्लासगो कल बंद हो जाएगा। लेकिन बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर अब तक 59 स्वर्ण पदक फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड एक 143 इतने सारे मेडल। इंग्लैंड ने केवल 22 गोल्ड मेडल्स जीते। कनाडा जो है 18। भारतीय टीम चौथे स्थान पर आ गई है। आज भी उसने कुछ और मेडल जीते, कल तक 5 स्वर्ण पदक थे, अब और 6 मेडल आज उसने जोड़े हैं। कुल मिलाकर 11 स्वर्ण पदक टीम इंडिया के पास। और

0: इन टोटल टोटल ऑफ 35 इंडिया के की झोली में है 34 और पांचवें स्थान पर है मेजबान देश स्कॉटलैंड 11 गोल्ड मेडल्स छठे पर है नाइजीरिया अफ्रीका का ये टीम है 10 स्वर्ण पदकों के साथ जहां तक मॉरिशस का सवाल है तो कल तक वो आज सुबह तक वो 27वें स्थान पर था अभी तक उसी स्थान पे है 27th पोजीशन पे विद 1 सिल्वर मेडल एंड 1 ब्रोंज मेडल आज रात 10:28 पर 10:28 याद रहे कि रेस 400 मीटर T54 रेस में हमारी दो एथलीट जो हैं पर एथलीट नोएमी अल्फोंस और ब्रांडी पेरिन हिस्सा ले रही हैं इस रेस में सो यहां पर भी मेडल की उम्मीद रखी जा रही है और बता दें कि रेमी फ्रिये जो है आज जूडो के सेमीफाइनल में लेस 90 केजीज की कैटेगरी में वो फाइनल में पहुंच गया है सो वहां पर भी बहुत सारी उम्मीदें रखी गई हैं इतना सब कुछ अभी एक और खुशखबरी आनी है भी वुमेन्स टूर डी फ्रांस साइकिलिंग प्रतियोगिता को लेकर स्टे ट्यून टू रेडियो मस्ती और एम ट्यू
1: RM2 Radio Musti
2: Jhankar Beats

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2, Radio Musty.
2: बात कर रहे थे साइकिलिंग प्रतियोगिता की टू डे फ्रांस वुमेन्स टू डे फ्रांस प्रतियोगिता साइकिलिंग प्रतियोगिता आज ही शुरू हुई स्विट्जरलैंड के लोजान शहर में और बहुत अच्छी खबर मॉरिशियन साइकिलिंग के लिए मॉरिशस की किमलेकू पिना दूसरे स्थान पर आई एकदम कह सकते हैं फॉल लेक्सप्लो और वो उसने एक सुपर्ब सेकंड पोजीशन हासिल किया आज हार्दिक बधाई टू किमलेकू पिना उन्होंने एक बार फिर सबको चौंका दिया हालांकि शी वाज नॉट ए मेन कंटेंडर जब रिपोर्ट देख रहे हैं तो किसी ने उसको रखा भी नहीं था टॉप टेन में लेकिन

फर्स्ट रेस में ही सेकंड पोजीशन पर, दैट्स हैट्स ऑफ टू किमले कुपिना। और पहले स्थान पर आई है नेदरलैंड्स की एक साइक्लिस्ट, आज ये रेस पहली थी, एंड हैट्स ऑफ टू किमले कुपिना जिसकी एंट्री कमाल की रही। सो 5499-1294-5499-1294 पे आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू। आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है, बस कुछ एक दो मिनट अभी बचे हुए। बता दें आपको कि जस्ट टू रिकैप, आज रात 10:28 पर रेस देखना मत भूलिएगा ऑन MBC 11 लाइव, 400 मीटर 30:54 रेस, जिसमें नोएमी अल्फोंस और ब्रांडी पेरिन हिस्सा लेंगे, मेडल फिर लाने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव सम, अच्छा पूनम जी आ गई है आपका साथ देने के लिए, हमारे बाद क्या पूनम आ रही है, नहीं कोई जो भी है, पर 24 आवर्स ए डे 24 घंटे आपकी सेवा में रेडियो मस्ती और एम क्यू और क्या है, और कल रात जो है लिवरपूल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड। जाने से पहले बता दें आपको कि फुटबॉल में क्या चक्कर है, आज रात कौन कौन से मैच खेले जा रहे हैं, थोड़ी सी एक नज़र इस पर भी। डैनी वेलबेक लगता है कि चेल्सी में वो भी आ गया है। सो आज जो चैम्पियनशिप में, स्कॉटिश चैम्पियनशिप में सिन मिरेन ने फाल्किया को 2-0 से हराया, एंड वी हैव ऑल्सो इंग्लिश लीग कप में आज एक मैच समाप्त हो गया, ट्रानमियर रोवर्स 2 रॉकडेल 2। और जहां तक फ्रेंडली मैचों का सवाल है तो उसमें आज बोरुशिया डॉर्टमुंड ने आज टोक्यो को 1-0 से हराया, मैन सिटी 1 इंटर मिलान 1, मिलान विन ऑन पेनाल्टी 3-1। फिर रियल मड्रिड आज रात खेलेगा फ्योरेंटिना के विरुद्ध, एंड आर्सेनल प्लेइंग अगेंस्ट जिरोना, कल रात 12 लिवरपूल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, साथ देने के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, सबाल खैर, सुनते रहिए और हम आपको सुनाते रहेंगे कल सुबह 7:30 AM शॉप ऑन रेडियो मस्ती, और उससे पहले रेडियो मोशस पर विद मोर न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज। तब तक के लिए विकास रामधनी की ओर से शुभ रात्रि, बाय बाय।

0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: झंकार बीट्स
1: वेलकम टू RM2
0: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
0: 103.5
2: ईस्ट वेस्ट
0: 96.4
2: सेंटर
0: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: रात का ठीक 9 बजे हैं.
0: RM2 Radio Musti.

लो भाई आ गया सैटरडे वीकेंड में मस्ती करने का टाइम आ गया. गुड आफ्टरनून अरे गुड इवनिंग नमस्कार कैसे हो मेरे दोस्तों. ऐसा ही होता है जब इंसान खुश होता है तो भूल जाता है आज कौन सा दिन है कौन सी तारीख है. अभी फिलहाल आपको मैं याद दिला दूं कि आप विदिता के साथ हैं और प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे लेट नाइट ग्रूव्स. मैं विदिता आपका वेलकम करती हूँ और हम साथ साथ होंगे अभी 3 घंटे तक. मुझे बर्दाश्त कर सकते हो तो गॉड ब्लेस यू.

वाह वाह वाह क्या बात है। सैटरडे का मूड हो ऐसा मूड होना चाहिए, अगर आप घर पर हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं, या तो फिर बैठ के बस रेडियो मस्ती सुन रहे हैं, आप में दम है भाई। चलो कोई नहीं, कोई भी नहीं होता तो हम साथ होते हैं, रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ। चलिए धमाकेदार बॉलीवुड रिमिक्सेस के साथ साथ दे रही हूँ मैं वेदिता, साथ रहूंगी आपके, बस आप झूमते चलिए।

दोस्तों वीकेंड का मजा तो तभी आता है ना जब कोई टेंशन नहीं होती है और हम चाहते हैं ना कि कोई टेंशन नहीं हो। संडे में सभी घर पे रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि देर से उठना होता है और घर पे ब्रंच होता है, बिरयानी बनती है, दाल पूरी बनती है, लेकिन हम उसके बारे में क्यों सोचें, हम अभी के बारे में सोचते हैं ना। अभी आप किसके साथ हो मायने नहीं रखता, बस रेडियो मस्ती पर गाने हो और क्या चाहिए।

चलो जी, अभी तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, हमारे गाने एंजॉय करते रहें। बॉलीवुड के जो रिमिक्सेस हैं वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए भाई, हमारे सैटरडे में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप चाहे काम पर हो, ड्राइव कर रहे हो, घर पे हो, पार्टी कर रहे हो, बस मूड अच्छा होना चाहिए।

यूहू, आज है सैटरडे और सैटरडे सैटरडे ऑटोमेटिकली हमारा जो मूड होता है ना ऐसे होता है, हमारी 32 बार होती है. क्यों? क्योंकि सैटरडे दिन ही कुछ ऐसा होता है. सबको पता है कल संडे है, सर घर पे रहेंगे. लेकिन हाँ, कुछ लोगों को शादी में भी जाना होता है, कुछ लोग शादी से निकल कर अभी घर भी जा रहे होंगे. अगर आप हमें सुन रही हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हमारे रेडियो मस्ती के साथ. आप भी खुश हो जाइए और झूमते चलिए.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सन।

स्माइल करो स्माइल, क्योंकि बस खुशी का तो ठिकाना नहीं हमारा। इतना डांस कर रहे हैं हम, इतना डांस कर रहे हैं हम, तो सब यहाँ पे मिलके डांस कर रहे हैं। किसके साथ? अरे कभी मिथुन के साथ, कभी जितेंद्र के साथ, कभी हम ये कहाँ से आए, कोई नहीं, यहाँ पे हम पोस्टर्स लगाए हुए हैं तो हम डांस करें उनको देख देख के। ये भी अपने ज़माने के राजा थे भाई। चलो तो आप अगर अपना यहाँ पर कुछ मूड चेंज करना चाहते हैं ना, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ प्लीज़ बी विद अस, क्योंकि ये गीतों का सिलसिला अभी नहीं रुकने वाला।

सोचो अभी आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, मैं सोचू क्यों, ये बाकी लोग तो ड्राइव कर ही रहे हैं, नहीं जो बैठे हैं ना घर पे उनको बोल रही थी। हाँ तो अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लिए बस इतना है कि आप लोग गाड़ी संभाल के चलाएगा, म्यूजिक लाउड चलाइए, इंजॉय कीजिए, लेकिन इतना भी लाउड मत कीजिए कि पीछे से पीप पीप करे तो सुनाई ना दे, ठीक है। लेट नाइट ग्रूव्स वेदिता के साथ चलिए हमारे नेक्स्ट गाने के साथ आगे बढ़ते हैं।

हाँ जी, तो चलो ब्रीद इन ब्रीद आउट म्यूजिक को फील करो, म्यूजिक में ढल जाओ, म्यूजिक को फिर फील करो, म्यूजिक में ढल जाओ. यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती वेदिता के साथ, ये है आपका लेट नाइट क्रू.

म्यूजिक का जो मैजिक होता है ना, ये अलग ही होता है। एक मिनट में इंसान का मूड बदल देता है, और सैटरडे हो और सेलिब्रेशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर सैटरडे का आने का फायदा ही क्या है? हम तो कहते मत आओ, आपको चाहिए कि आपके वीक में सैटरडे जो है गायब हो जाए? नहीं ना, तो फिर ऐसे गुमसुम मत बैठो, रेडियो मस्ती के साथ हो, मस्ती तो करो।

0: चलो सैटरडे यानी कि कल मॉर्निंग में नो अलार्म, सब आराम से जागेंगे और साथ ही साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अभी के लिए आप पहले अकेले हो, लेकिन आप याद रखना रेडियो मस्ती जिसके साथ होता है ना तो वो कभी अकेला नहीं होता, उनके साथ हम होते हैं, हमारी पूरी टीम होती है। सो हमारी पूरी टीम की तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार एंड स्वागत है आपका इन लेट नाइट ग्रूव्स।
1: The Music Maker.

हेलो भाई, उसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया। आई होप यू लव्ड इट, यू एंजॉयड इट। अब आपसे मुलाकात करूंगी मैं अगले फ्राइडे को लेट नाइट ग्रूव में, अदरवाइज आपसे मुलाकात करूंगी मंडे को 7 बजे आपके रेडियो मस्ती पर। मॉर्निंग में आऊंगी जगाने, चिल्लाने, कुछ और मस्ती करने। अभी फिलहाल के लिए टाइम फॉर मी टू से बाय बाय। आप एंजॉय करते रहिए, घूमते रहिए, झूमते रहिए, रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिए। दिस इज वेदिता सिंह, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: मन का रेडियो बजने दे जरा गम को भूल कर।

0: समझने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा।
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बलोल स्टेशन।
2: Welcome to RM2
3: Radio Musti,
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
2: RM2 Radio Musti,
3: Radio Musti,
2: the latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिज गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद

आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

0: राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।